मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और

अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इसके अंतर्गत मिट्टी की जांच का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इसके अंतर्गत मिट्टी की जांच का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
1: किसान भाइयों, मिट्टी में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हों तभी हमारी फसल बिल्कुल स्वस्थ एवं अधिक उपज देने वाली हो सकती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और वह बीमार ना होने पाए, इसीलिए हम मिट्टी की जांच करवाते हैं ताकि यह निश्चित हो जाए कि जमीन में किस तरह की कमी है। मिट्टी की जांच के लिए सबसे पहले जिस खेत की मिट्टी की जांच करवानी हो उससे नमूना लेते हैं और फिर इस सैंपल को जांच के लिए भेजा जाता है। मिट्टी की जांच का सबसे उपयुक्त समय क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। मिट्टी की जांच कराने का सबसे अच्छा समय फसल काटने के बाद या बुआई से पहले है, लेकिन यदि परती या ऊसर जमीन है तो मिट्टी का नमूना किसी भी समय ले सकते हैं। वैसे इसके लिए मार्च से लेकर के जून तक का समय उपयुक्त रहता है। अगर खेत में फसलें खड़ी हैं तो फसल की दो लाइनों के बीच से भी नमूना ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि बुआई के कम 30 दिन पहले आप नमूना जांच के लिए अवश्य भेज दें ताकि समय से रिपोर्ट प्राप्त हो जाए और उस अनुसार आप उर्वरकों का प्रयोग करें। ये तो कुछ बातें हुई कि कब मिट्टी का नमूना भेजना है, और अब कुछ मुख्य बातें नमूना लिया कैसे जाए। चूंकि मिट्टी के परीक्षण की सफलता मिट्टी के नमूना की प्रकृति पर निर्भर करती है, अतः यह आवश्यक है कि जिस खेत की मिट्टी का परीक्षण करना है उसका ऐसा नमूना एकत्र किया जाए जिसमें उस पूरे खेत की प्रमुख किस्म की मिट्टी का अंश आ जाए। अब बात यह आती है कि किसी खेत से कितने नमूने लिए जाएं। यद्यपि नमूनों की संख्या, किसानों की जोतों के आकार, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता तथा विशेष प्रकार की मिट्टी की समस्याओं पर निर्भर करती है, फिर भी मोटे तौर पर 5 एकड़ तक के खेत से हमें एक सैंपल ही लेना चाहिए। फसलों की जड़ें प्रायः मिट्टी में 6 इंच की गहराई में ही होती हैं, अतः ज़्यादातर नमूने इसी 6 इंच की गहराई में ही लिए जाते हैं। हाँ, यदि गन्ने का खेत है या ऊसर जमीन है तो 9 इंच की गहराई तक तथा वृक्षारोपण के लिए आवश्यकता अनुसार 1 मीटर की विभिन्न गहराई तक, जैसे 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर की गहराई तक भी नमूना ले सकते हैं। पहले जिस खेत का नमूना लेना हो उसे ढाल, संरचना, रंग को ध्यान में रखकर अलग अलग खंडों में बांट लेते हैं तथा वहाँ प्रत्येक खंड से अलग अलग मिट्टी लेना चाहिए। जहाँ की मिट्टी लेना हो वहाँ की घास फूस साफ करके 6 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा एवं 6 इंच गहरा गड्ढा खोदना चाहिए और उसकी मिट्टी अलग कर देनी चाहिए। फिर इस गड्ढे की लंबवत दीवारों से 1 इंच मोटी परत खुरपी से काट लेते हैं और इस प्रकार इस मिट्टी को ले लेते हैं। इसी प्रकार 8-10 स्थानों की मिट्टी पॉलीथीन पर रखकर मिला लेते हैं और फिर इसे गोलाई में फैलाकर 4 हिस्सों में बांटकर आमने सामने के 2 हिस्सों को लेकर बाकी मिट्टी को फेंक देते हैं। अब इस मिट्टी को फिर गोलाई में फैलाकर 4 हिस्से में बांटकर आमने सामने की आधी मिट्टी ले लेते हैं। ये क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि मिट्टी 500 ग्राम तक नहीं रह जाती। अब यही 500 ग्राम मिट्टी ही नमूना है। इसे पॉलीथीन की थैली में भरकर कपड़े की थैली में बंद कर देते हैं। फिर पहचान के लिए थैली के अंदर एवं थैली के ऊपर अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, विकासखंड, जनपद, खेत का नंबर तथा बोई जाने वाली फसल का नाम लिखना चाहिए और जांच हेतु जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। नमूना लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि खेत की मिट्टी गीली ना हो। नमूना लेने की जगह कंपोस्ट या खाद के ढेर नहीं होने चाहिए तथा मेड़ के पास से भी मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। सड़क, नाली तथा पेड़ के पास से भी नमूना नहीं लेना चाहिए।

0: चाहिए। मिट्टी की जांच के बाद उसकी संस्तुतियों के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ती है तथा फालतू उर्वरक देने से बचा जा सकता है। संतुलित उर्वरक देने से पौधों की बढ़वार सुचारू रूप से होती है, उसमें किसी प्रकार की बीमारी आदि नहीं होती तथा फसलों से अच्छी पैदावार मिलती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज इसके अंतर्गत मिट्टी की जांच का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

कहते हैं कि अगर बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सब भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा, तो प्रभु जल्द प्रसन्न भी होते हैं और अपने कृपा का हमें पात्र भी बनाते हैं।

माँ का कोई भी रूप हो, माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए अपने ममतामयी रूप के साथ खड़ी रहती है। और हम सबका यही तो सौभाग्य है कि माँ की कृपा और उसकी ममता का हम सभी बराबर के भागीदार होते हैं।

भावे विद्यते देव, भाव में वो शक्ति है कि वो अविदित परमात्मा को भी विदित कर देता है। तभी तो भगवान कहते हैं कि जहां भगत मेरु पग धरे तहां धरू मैं हाथ, पीछे लागा सदा रहूं कबहू न छाड़ू साथ।

जित देखूं उत तुम ही तुम हो, और न देखन चाहूं। इन चरणों में पड़ा रहूं मैं, यहीं जीऊं मर जाऊं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज के कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल, पंडित भीमसेन जोशी और शीला वर्मा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु।
1: हमारे चार पुरुषार्थों में धर्म एक प्रधान और मुख्य पुरुषार्थ है। धर्म की सिद्धि से ही अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। हमारे जीवन में जितने हमारे कर्तव्य हैं वे सभी धर्म मूलक हैं। माता पिता और गुरु के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वे सभी धर्म से समन्वित हैं। महर्षि कशाद कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्चयस सिद्धि सधर्मा। जिससे हमारा अभ्युदय हो, हमारी चहुमुखी उन्नति हो और जिससे हमारा कल्याण हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, वही धर्म है। सबके आचार विचार का, आहार और लोक व्यवहार का, हमारे सदाचार का नियामक धर्म ही है। ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति धर्म से ही होती है। इसीलिए कहा गया है, धर्मम चर धर्मान्न प्रमद्यम। धर्म का पालन करो, धर्म पर चलो, धर्म का पालन करने में आलस्य मत करो। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि सब प्राणियों में कल्याण की भावना ही सच्चा धर्म है। स्वामी रामदास का कथन है, सभी धर्म एक ही प्रभु की ओर ले जाने वाले हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण ही धर्म है। इसलिए मनुस्मृति में भी कहा गया है, धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयम् शौचम् इन्द्रियः निग्रहः धीवीर्या सत्यम् क्रोधः दशकम् धर्म लक्षणम्। श्री ब्रह्म चैतन्य का कथन है, धर्म वो है जिससे शांति और समाधान मिले। विलियम ला का यहां तक कहना है कि धर्म है प्रेम भावना में। बर्नार्ड शाह का कहना है कि धर्म एक ही है, भले ही रूप उसके 100 हों। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में सुख का आधार धर्म है। परिवार, समाज और राष्ट्र की सुख शांति और समृद्धि का आधार धर्म है। हमारे सदाचार में जीवन की मूल आत्मा है धर्म। धर्म मानव को परस्पर में जोड़ने वाला है, हमारे जीवन में शीतलता और शांति प्रदान करने वाला है। धर्म एक ऐसी दवा है, औषधि है, जिसके सेवन करने से वैमनस्यता और वैर विरोधों की आग बुझती है। संकीर्णता, कटुता का रोग धर्म की औषधि के सेवन करने से ही दूर होता है। इसीलिए कहा है, नहिम वैरेण वैराणी शाम्यंती कदाचन अवैरेण च शाम्यंती ऐश धर्म सनातना। हम सभी लोग विभिन्न मजहबों और संप्रदायों में रहते हुए भी परस्पर प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और शांति से तभी रह सकते हैं जब जीवन के मूल रहस्य को, धर्म को समझें और उसे जीवन में उतारें। धर्मेण हन्यते व्याधे, धर्मेण हन्यते रिपु, धर्मेण हन्यते रोगा, यतो धर्म इस्ततो जया। सांप्रदायिक सद्भाव धर्म में जीवन अर्थात सदाचार में जीवन से ही बना रह सकता है। हमारी संकीर्णता या तंगदिली धर्म के इस रहस्य को जानकर उसे जीवन में उतारने से ही दूर होगी। धर्म सुख का मार्ग है। धर्म की शीतल छाया में ही सभी सुखपूर्वक रह सकते हैं। धर्म से ही जीवन में श्रेष्ठता, नैतिकता और व्यवहार कुशलता आती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर चलें।
0: अभी आप सुन रहे

0: बातें कार्यक्रम विचार बिंदु। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत इस मौसम के आहार विसार विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे।
1: नमस्कार, मैं चंद्रशेखर पांडे। मैं आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूं और आज हम चर्चा करेंगे ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार। ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार उस काल उस देश में उत्पन्न हुए फल अन्न पदार्थों का सेवन करना है। दूसरी चीज है कि जो जिसके लिए साथ में है, सुटेबुल है, कंपेक्टेबुल है, उसी का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरी चीज, जैसे कभी मौसम बदल गया, जैसे आजकल चल रहा है ऋतु विपर्य, गर्मी के दिन में ठंड लग रही है, लोग पंखा बंद कर दिए हैं, एसी से ज्यादा ठंड बाहर है, बरसात हो रही है, तो उस समय का नियम है कि जिस ऋतु का उस समय प्रयोग हो चुका है, प्रकृति ने जैसा परिवर्तन कर दिया है, उस ऋतु के अनुसार आहार विहार करना चाहिए। जैसे इस समय गर्मी के दिन में भी ठंड लग रही है, जल की वृष्टि हो रही है, तो हम लोगों को वर्षा ऋतु के, शीत ऋतु के अनुसार भी आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य रूप से गर्मी के समय में प्रयोग होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उनको अगर बांटा जाए तो अन्न वर्ग, जो हम अन्न खाते हैं, चावल है, दाल है, इनमें हमको कोशिश करना चाहिए पुराना चावल का सेवन करें, पुराने गेहूं का सेवन करें, नवान्न सेवन कम करें। विशेष रूप से जो लोग किडनी के बीमार हैं, डायबिटीज के रोगी हैं, जिनमें मेटाबॉलिक इस तरह के सिंड्रोम्स हैं, उनको पुराना चावल, पुराने अन्न का सेवन करें, मूंग की दाल का सेवन करें, लौकी, नेनुआ, इस तरह की सब्जियों का प्रयोग करें। जो अधिक जिनमें मसाले पड़ते हैं, ऐसी सब्जियों का कम प्रयोग करें। भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश रहा है जहां अन्य क्षेत्रों की तरह से भोजन बनाने की विधियों पर भी एक लंबा रिसर्च हुआ है और ये चीज कहीं दिखाई नहीं पड़ती, वो है यहाँ के मसालों का प्रयोग। इतना समुचित प्रयोग है कि लौकी जीरे से छौंकी जाएगी, कद्दू है तो मेथी डाला जाएगा, अरवी है तो अजवाइन डाली जाएगी, यानी ऐसे कंटेंट्स के साथ उसका संयोग करना जिससे उसके बुरे प्रभाव समाप्त हो जाए, अच्छे प्रभाव बने रहें। इसी तरह से दुग्ध वर्ग है, अधिक दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए छाछ बना के लें, दूध केवल शाम को लें, घी का प्रयोग करें लेकिन अधिक घी का प्रयोग न करें। जल वर्ग में शुद्ध साफ जल लें। आरओ के पानी को मैं आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं समझता, लेकिन अगर गंदा पानी है तो उसको उबाल के, छान के या फिल्टर करके ही पीना उचित है। इसी तरह से फल वर्ग है, फल वर्ग में जो भी फल इस ऋतु में उत्पन्न हो रहे हैं, जो कोल्ड स्टोर से नए आए, आसानी से प्राप्त हो, उस फल का और प्राकृतिक अवस्था में और स्वस्थ हो, दो चीजों का ध्यान रखना है। प्राकृतिक अवस्था के हों, जबरदस्ती पकाए न गए हों, जबरदस्ती बढ़ाए न गए हों, और स्वस्थ हों, स्वयं में धूप से हवा से प्रीणित हों। इसी तरह से आमिष वर्ग, इस समय जितने आमिष यानी मछली मांस इत्यादि का कम से कम प्रयोग करें, अगर करना है तो बहुत पतला सूप बना करके बहुत अच्छे तरह से करके प्रयोग करें। इसी तरह से कृतान्न वर्ग में, जो हम फूड को प्रोसेस करते हैं, जो उनको संस्कारित करते हैं, उनमें ऐसी प्रोसेसिंग कम करें जो अधिक गरिष्ठ हो जाए। भोजन को इस तरह से प्रोसेस करें कि उसके पचने की क्षमता अच्छी हो, लघु बने और न्यूट्रिशन दे। गर्मी की ऋतु में अगर एक सूत्र में हमको कहा जाए किस प्रकार के आहार का सेवन करना है, तो शब्द है लघु संतर्पण आहार। लघु माने जो पचने में आसान हो, संतर माने जो न्यूट्रिशन कैपेसिटी जिसकी बहुत अच्छी हो। तो इस तरह से ऐसे आहार विहार का हमको सेवन करना है और एक चीज का सेवन नहीं करना है। जो शब्द हम लोगों के यहाँ कोई चीज अच्छी है, अपने लिए सुटेबल है, तो एक शब्द लोग कहते इसका खूब सेवन करें। ये एक बड़ा गलत कंटेंट लोगों के बीच में जाता है कि खूब सेवन का तात्पर्य नहीं है, हमारी जितनी क्षमता है, जितनी हमारे लिए साथ में है, जिसको हम आसानी से पचा सकते हैं, वही मात्रा आहार की, वही आहार, वही मात्रा और वही प्रयोग विधि हमारे लिए सुटेबल है, जो हमारी धातुओं को कोई विषमता उत्पन्न किए बिना ही हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण रखे और धातुओं का पोषण करे। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इसके अंतर्गत इस मौसम के आहार विहार विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रीरामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायन स्वर है हरिहरन का।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रीराम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्रीराम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

0: संगीतमय पाठ, गायन स्वर था हरिहरन का। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अब आइए हम आपको जानकारी दे दें आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर चितरंजन ज्योतिषी का गायन। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन में 12:45 पर आप सुनेंगे सारंगी वादन, कलाकार होंगे उस्ताद साबिर खान। सुबह 7:31 पर इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित सियाराम तिवारी का ध्रुपद गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:00 आप सुनेंगे आशा भोसले और गुलाम अली की गायी गजलें। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन में 12:30 पर कलाकार होंगे संचिता गोस्वामी। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत का प्रसारण समय होगा 6:30 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे बेबी कॉर्न की खेती, इस विषय पर डॉक्टर देव नारायण सिंह और सतीश कुमार सिंह की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत कलाकार होंगे अर्जुन यादव और साथी, इनके गाए लोकगीत आप सुन सकेंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उज्ज्वल कुमार सिंह की वार्ता, विषय होगा डिजिटल युग में करियर के नए विकल्प। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का प्रसारण समय होगा दिन में 1:15 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:00 से। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम अंजुमन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग आप सुन सकेंगे 7:31 पर। शाम 5:00, 6:10 पर और 7:00 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। व्हाट्सएप पर आधारित भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा दिन में 11:00 से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार प्रसारित किया जाएगा सुबह 10:00 से। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा और सुबह 7:00 से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति

0: वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरी इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः AI तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु IPL इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: जाएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: उससे अप्पा
1: आ गई है बनारसी कुड़ी। सो बनारस, लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
0: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक मस्त और चकाचक हैं। बनारस, देखिए, हम सबके मन में हर रोज ये ख्याल जरूर आता है कि हर दिन अगर अच्छा और स्मूथ बीते तो कितना अच्छा हो, है ना? देखिए, हर दिन बेहतरीन हो, ये विचार सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन क्या ये रियल में पॉसिबल है? हमने और आपने अक्सर सुना होगा, आज का दिन आपका सबसे बढ़िया दिन हो, या हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि वो आखिरी हो। इसमें तो गाना भी है। देखिए, अगर हम सच का सामना करें तो नहीं, हर दिन बेहतरीन होना थोड़ा मुश्किल है। आखिर हम रोबोट थोड़ी ना है, हम तो इंसान हैं। कभी काम का तनाव, कभी ट्रैफिक, कभी छोटी मोटी बहस, तो कभी मूड ऑफ। लाइफ है तो उतार चढ़ाव तो होंगे ही, लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उदास होकर बैठ जाएं। देखिए, बेहतरीन दिन की परिभाषा हर दिन के लिए परफेक्ट होना नहीं है। असल में हर दिन को बेहतरीन बनाने का मतलब है कि खराब हालात में भी हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं। अगर आज सुबह देर हो गई तो क्या हुआ, आज का काम थोड़ा कम कर लेंगे पर मेहनत जो है वो जारी रखेंगे। अगर कोई बात मन मुताबिक नहीं हुई तो क्या हुआ, उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो गुरु, आज का मंत्र यही है, परफेक्शन नहीं, पर्सपेक्टिव बदलिए। दिन बेहतरीन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज आप उसे बेहतरीन बना सकते हैं। बस किसी के साथ मुस्कुराकर, किसी की मदद करके, या फिर सिर्फ खुद के साथ प्यार से रहकर अपना 100% दीजिए, बाकी किस्मत पर छोड़ दीजिए। बेहतरीन होना एक फीलिंग है जो मेहनत, मशक्कत और पॉजिटिव रहने से आती है। तो हर बात में नेगेटिव होना और नेगेटिविटी खोजना छोड़िए जनाब। लाइफ जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसे और ब्यूटीफुल बनाइए। इसी खूबसूरत थॉट के साथ आइए सुनिए ट्रैक आई बी राइट बैक। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि दिन चाहे कैसा भी हो, आपकी स्माइल ब्यूटीफुल है। गुड मॉर्निंग बनारस।

हाँ जी, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 18 मई 2026 और दिन है आज सोमवार का। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर में। आज खास नगर निगम की ओर से जारी टैक्स बिल में रियल टाइम बदलाव हो सकेंगे। जी हां, नगर निगम की ओर से बिलिंग व्यवस्था को सरल बनाया जा रहा है। लोगों को ऑनलाइन बिल जमा करने की सुविधा भी दी जा रही है। अगर किसी भवन स्वामी के कर निर्धारण या बिल में कोई संशोधन किया जाता है तो उसकी तत्काल सूचना और संशोधित बिल भी मोबाइल पर पहुंच जाएगा। नगर निगम की ओर से ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जो सिर्फ शिकायत ही नहीं बल्कि उसके समाधान के बारे में भी समय समय पर अपडेट देता रहेगा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने तकनीक का सहारा लेने को कहा है। निगम की ओर से विकसित किया जा रहा यह सिस्टम सीधे भवन स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कर संबंधी सूचनाएं स्वतः भेज देगा। इसके साथ ही आनंद काशी टाउनशिप को काशी थीम पर विकसित किया जाएगा। कल्लीपुर में यह पूर्णतः गेटेड और आधुनिक सुविधाओं से युक्त टाउनशिप विकसित की जा रही है जिसमें 80 से 100 फीट चौड़ी सड़कें और उच्च स्तरीय आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लैंड पूलिंग के जरिए इस टाउनशिप को साकार करने की योजना है। आनंद काशी टाउनशिप परियोजना को स्मार्ट और फ्लेक्सीबल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें सौर ऊर्जा आधारित रूफटॉप सिस्टम, एलईडी स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली, एसटीपी दोहरी पाइपलाइन व्यवस्था, सतत उपयोगिता और कनेक्टिविटी निगरानी प्रणाली, स्मार्ट बिन, इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड और एयर क्वालिटी सेंसर जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये टाउनशिप काशी की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शहरी विकास का समन्वित स्वरूप होगी। इसके साथ ही लू और चिलचिलाती धूप ने मिलकर काशीवासियों को हलकान कर दिया है। जी हां, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली गर्म पछुआ हवा में नमी मात्र 20 फीसदी रही। इसके चलते कल रविवार को मई महीने की अब तक की सबसे ज्यादा तपिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक यानी कि 43.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं रात में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री ऊपर 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने 19 से 21 मई के बीच लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर मॉनसून भी करीब 40 दिनों बाद काशी में दस्तक दे सकता है। फिलहाल मॉनसून भारत के अंडमान द्वीप के पास समय से पहुंच चुका है। इसके 26 मई तक केरल के पश्चिमी तटों तक पहुंचने के अनुमान है। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ अतुल कुमार सिंह के अनुसार पिछले 2-3 दिनों के दौरान तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। काशी में अगले 2 दिनों में पारा 45 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज्यादा से ज्यादा खुद को हाइड्रेटेड रखिए और जरूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। इसके साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 48वां दीक्षांत समारोह जुलाई के अंतिम सप्ताह में मनाया जाएगा। राजभवन की ओर से जुलाई में समारोह मनाए जाने के फैसले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 25 से 28 जुलाई तक की तिथि प्रस्तावित की है। कुलपति ने कुलाधिपति और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ये तिथियां भेजी हैं। इन्हीं तीन में से किसी एक तिथि पर कुलाधिपति की मुहर लगनी है। विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित करने के उद्देश्य से ही कुलाधिपति ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में जुलाई महीने में ही दीक्षांत समारोह कराने का निर्णय लिया है। हाल ही में कुलपतियों के साथ हुई बैठक में भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। तो जी, ये रहा आपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 18th of May। आज ही के दिन साल 1848 में जर्मनी में पहली नेशनल असेंबली का उद्घाटन हुआ था। 1912 में पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई थी। ईयर 1949 में मणिपुर का भारत में पूर्ण विलय हुआ था। ईयर 1974 में आज के दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। और इसी के साथ साल 2017 में हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब स्पेशल इवेंट्स की बात करें तो आज है

इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पुराने जमाने की तलवारें, रानी महारानी के गहने या हजारों साल पुरानी मूर्तियां देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? लगता है ना कि हम टाइम मशीन में बैठकर सीधे इतिहास में पहुंच गए हैं। बिल्कुल। और आज का दिन उन्हीं सुनहरी यादों को समर्पित है। आज 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 1977 से इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी कि ICOM की पहल पर ये दिन हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और कला से जोड़ने के लिए मनाया जाता है। म्यूजियम सिर्फ पुरानी चीजें रखने की जगह नहीं है, ये वो आईने हैं जिनमें हमारी सभ्यता अपनी कहानी बयां करती है। इस साल की थीम है एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय। इसका मतलब म्यूजियम हमें इतिहास के जरिए आपस में जोड़ते हैं, भले ही हम कितने ही अलग क्यों न हो। तो दोस्तों, आज का दिन खास है। अपने शहर के किसी भी म्यूजियम में जाइएगा, अपने बच्चों को ले जाइएगा। और हाँ, अच्छी खबर यह है, आज कई म्यूजियम में एंट्री फ्री हो सकती है या खास छूट के साथ हो सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। And now, Banaras, let's move on to your favorite segment. बात जरूरत की। देखिए, गर्मियों में घर से बाहर निकलना चैलेंजिंग होता है, लेकिन रोजमर्रा के काम से बाहर निकलना मजबूरी है। तेज धूप में बाहर निकलते समय आंखों की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे जलन, धुंधलापन और लॉन्ग टर्म में आंखों से जुड़ी बीमारियों का रिस्क होता है। ऐसे में सनग्लासेस आंखों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। सही सनग्लासेस धूल, धूप और हानिकारक यूवी किरणों से बचाते हैं। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि गर्मियों में सनग्लासेस पहनना क्यों जरूरी होता है और इसे खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आंखों को हानिकारक यूवी किरणों, तेज रोशनी और धूल से बचाता है ये सनग्लासेस। इससे जलन, ड्राइनेस और अन्य समस्याओं का रिस्क कम होता है। सूरज की रोशनी से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों के बाहरी और अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे आंखों में जलन हो सकती है, तेज दर्द हो सकता है, पानी निकल सकता है, नजर धुंधली हो सकती है, रेडनेस, ड्राइनेस, रेटिना को नुकसान, दृष्टि कमजोर हो सकती है, कॉर्निया को नुकसान हो सकता है और मोतियाबिंद का भी रिस्क बढ़ सकता है। सही क्वालिटी के सनग्लासेस यूवी किरणों से बचाते हैं, खास तौर पर UV 400। इस प्रोटेक्शन के सनग्लासेस आंखों को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षित रखते हैं। सनग्लासेस हल्की धूप में भी पहनना चाहिए। यूवी किरणें बादलों या हल्की धूप में भी मौजूद रहती हैं, इसलिए बाहर निकलते समय सनग्लासेस लगाना बेहतर है। अच्छा, एक सवाल आता है कि क्या सस्ते और लोकल सनग्लासेस नुकसानदायक हो सकते हैं? तो बिल्कुल, इनमें यूवी प्रोटेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ रोशनी कम करते हैं, जिससे आई बॉल यानी कि पुतली फैल जाती है और हानिकारक यूवी किरणें आंखों में प्रवेश कर सकती हैं। इससे आंखों को डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। यूवी 400 या 100% यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस सबसे अच्छे होते हैं। ये आंखों को हानिकारक किरणों से भी बचाते हैं। धूप की चकाचौंध कम करने के लिए पोलराइज्ड लेंस बेहतर है। बेहतर विजन के लिए ग्रे, ब्राउन या हरे रंग के लेंस चुन सकते हैं। आंखों के पूरे कवरेज के लिए बड़े फ्रेम या रैप राउंड स्टाइल बेहतर है। सनग्लासेस यूवी किरणों, तेज रोशनी और धूल से बचाकर कई समस्याओं से सुरक्षा देता है। यूवी सनग्लासेस के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आंखों के आसपास की त्वचा का प्रोटेक्शन, आई ड्राइनेस, इरिटेशन से बचाव, मोतियाबिंद का जोखिम कम हो सकता है, आंखों की थकान कम हो सकती है, बेहतर विजन और क्लैरिटी। कुछ लोगों को सनग्लासेस जरूर पहनना चाहिए क्योंकि उन्हें यूवी किरणें ज्यादा प्रभावित करती हैं, जैसे कि जो आउटडोर वर्क करते हैं, जो लंबी ड्राइविंग करते हैं, जिनकी आंखें सेंसिटिव हैं, जिनकी आंखों की समस्या है, जिनकी आई सर्जरी हुई है और जिनकी उम्र 40 के ऊपर है। सनग्लासेस खरीदते समय सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि क्वालिटी और प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देना जरूरी है। इससे आंखों को सही सेफ्टी मिलती है, इसलिए सनग्लासेस खरीदते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। हमेशा ब्रांडेड सनग्लासेस लें, यूवी 400 सनग्लासेस चुनें, ये 100% यूवी प्रोटेक्शन देते हैं। पोलराइज्ड एंटी ग्लेयर लेंस लें, ये आई प्रेशर कम करते हैं। सस्ता सनग्लास कभी ना खरीदें, फ्रेम फिट और आरामदायक हो, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर आप डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। सही क्वालिटी के सनग्लासेस से आंखों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। ये आंखों को यूवी किरणों, धूल और तेज रोशनी से बचाकर सुरक्षा देता है। हालांकि खराब क्वालिटी या बिना यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
बादलों के बावजूद यूवी किरणें जमीन तक पहुंचती है, इसलिए हमेशा आंखों की सुरक्षा जरूरी है। सुबह शाम यूवी तीव्रता कम होती है, लेकिन जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं होता।

अच्छा, एक सवाल लोगों के मन में और आता है कि क्या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों को भी सनग्लासेस लगाना चाहिए? तो बिल्कुल लगाना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस पूरी तरह अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षा नहीं देते, इसलिए उन्हें भी सनग्लासेस लगाना चाहिए। बात जरूरत की। सो आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यस देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pkld@varanasi.gmail.com। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग बनारस। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:17 हुए हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90।
2: मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
3: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
3: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
3: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग

0: द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को स्वीडन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
1: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिला ये 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। नवनियुक्त मंत्रिमंडल मंत्रियों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान राज्य मंत्री के तौर पर पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के साथ साथ राजनीतिक पेंशन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नवनियुक्त 4 राज्य मंत्रियों को भी विभाग आवंटित कर दिए गए। कृष्णा पासवान को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वहां के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है। इससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जिन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने के अभियान का क्रम है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और सांसद रवि किशन शुक्ल सहित कई पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
3: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
0: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी

0: कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कल से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80 रुपये 9 पैसे, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में ये 88 रुपये 70 पैसे हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला कल से शुरू हो गया। एक रिपोर्ट।
1: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहुं और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल हुए 3 अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हैं। हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। हमारे फतेहपुर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां के रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में कल सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपत्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग द्वारा कल और 20 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन के समय कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अस्पतालों में दवाओं, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।

0: के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ध्रुपद गायन। कलाकार हैं पंडित सियाराम तिवारी, राग है अलहिया विलावल। आपके साथ संगत की है सारंगी पर बच्चा लाल मिश्र और बखावज पर रामजी उपाध्याय ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ध्रुपद गायन। कलाकार थे पंडित सियाराम तिवारी, राग था अल्हैया बिलावल। आपके साथ संगत की थी सारंगी पर बच्चालाल मिश्र और बखावज पर रामजी उपाध्याय ने। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। ज्योति वह अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। दृष्टि के आनंद को बांटिए। नेत्रदान को अपने परिवार की परंपरा बनाएं। नेत्रदान का संकल्प आज ही लें। जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान।

0: नेत्रदान महादान। केवल काली पुतली का दान ज्योति दान। नेत्रदान करेंगे दुनिया फिर से देखेंगे, हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को

0: केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की

0: 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
1: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

0: अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission Initiative. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honor, the Royal Order of the Polar Star.

0: क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क के दो रोजा दौरे पर कल गोटेनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें ये एजाज दो तरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली तआवुन और उनकी दूरंदेश क्यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया है। ये अवार्ड आला तरीन इम्तियाज है जो किसी सरबराह हुकूमत को दिया जाता है। ये वजीर आजम मोदी का 31वां बैन अलाक्वामी एजाज है। वफ़ की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया और दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया, जो इन ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ है। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी, खला, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा और सलामती, SMEs, रसाई और अवाम से अवाम के रिश्तों के मैदानों में गहरे तआवुन के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस दौरे का असल मकसद 2026 से 2030 तक के लिए एक मुश्तरका एक्शन प्लान इख्तियार करना है, ताकि दो तरफा इक्तिसादी तबादलों को अगले 5 साल में दोगुना किया जा सके। भारत स्वीडन मजबूत तर अंदाज में यकजा 2047 की जानिब मौजू के तहत दोनों मुल्कों ने 2027 में दो तरफा तजारत और सरमायाकारी समिट मुनाकिद करने का आजम किया। स्वीडन के CEOs के साथ बातचीत के दौरान वजीर आजम ने मेक इन इंडिया और मेड विथ स्वीडन, खासतौर पर माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अहम मादनियात के मिशनों में मजीद सरमायाकारी को मदऊ किया। अब इस शराकतदारी को सेमी कंडक्टर्स, जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तहकम सप्लाई चेन तक तोसी दी जाएगी। वजीर आजम ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत को स्वीडन की तरफ से हिमायत दिए जाने पर खासतौर पर शुक्रिया अदा किया, जो आलमी इस्तेहकाम के तई एक मुश्तरका अज़्म का यादा है। गोटेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन जैसी पहल के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। गोटेनबर्ग में स्वीडन के CEOs के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने स्वीडन की कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मिशन, साफ सुथरी तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत, शफाफियत, इख्तिरा और पायदारी की मुश्तरका अकदार मौजूद हैं, जनाब मोदी ने स्वीडन की ताकत को इख्तिरा और पायदारी के मैदान में भारत की तरक्की, सलाहियत और नशोनुमा की रफ्तार के मुताबिक बनाने को कहा।
2: वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजेक्शन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले CEOs और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफी दिलचस्पी जाहिर की है और पिछले कुछ बरसों में पायदार इक्तसादी इस्लाहात के जरिए मुल्क में यकसर तब्दीली की सताइश की है। यूरोपी गोल्ड में सनती मीटिंग के बाद नामा निगारों से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया के CEOs और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी और स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टर्सन ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुश्तरका सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला किया। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वजीर आजम मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब किंग हेराल्ड फाइव और जनाब मोदी किंग हेराल्ड फाइव और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम जोनास गहर स्टोर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वजीर आजम के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीक की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा VD सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में एक तकरीब में आज सुबह 10 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आला ने कल शाम UDF की 21 रुकनी काबीना का

0: केरलम और माहे में आज शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गर्मी की शदीद लू चलने की पेशगोई की है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 197 रन बनाए। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें मकाम से 7वें मकाम पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। एक दीगर मैच में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 222 रन बनाए। जवाब में 223 रन के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के नीदरलैंड्स दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान दो तरफा तालुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वीडन पहुंचने पर उन्हें आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। रोजनामा प्रताप ने जजों की तादाद बढ़ाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने की मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुल्क की क्यादत करेगा। अखबारात की कुछ अहम खबरें, बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू होगी, अश्विनी वैष्णव का बयान। अमरीका से चीन 200 से ज्यादा तैयारी खरीदेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। ईरान ने अबनाए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए टोल लगाने का मंसूबा बनाया।
1: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टरसन गोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा, लेकिन उससे पहले लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें
4: 0542227658
1: 0542227658।
5: बदलो बदलो आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले

0: चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

दोस्तों, रिश्तों की खूबसूरती ही तो इसमें है कि ये खूबसूरत रिश्तों की डोरियों से ही बुनी जाती है। ये जिंदगी तब और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है जब इसके रिश्ते एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार होते हैं, और तब इस जिंदगी का सफर आसान और सुहाना बन जाता है।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा अपने दोस्त शैलेश दुबे के साथ। इस कार्यक्रम के बाकी नगमे हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में। दोस्तों, जिंदगी की ये खूबसूरती ही तो है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन में अगले पल क्या होने वाला है। तभी तो हम इस जिंदगी को जी भर के जीना चाहते हैं।

दोस्तों, वैसे तो ज़िंदगी जीने के कई तरीके होते हैं और जितनी ज़िंदगी उतने ही तरीके। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे तरीके एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग, और यही तो इसकी खूबसूरती है। लेकिन ये खूबसूरती तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये किसी के मुस्कुराने का कारण बन जाती है।

दोस्तों कहते हैं कि ये जिंदगी तब और खूबसूरत हो जाती है जब अपनों का साथ इसमें हमेशा बना रहता है। लेकिन ये वक्त एक जैसा कहाँ रहता है? इसकी एक और खूबसूरत पहलू ये है कि ये वक्त हमेशा बदलता रहता है। इसलिए जैसे कि इसकी गति हमसे छूटती जाती है, वैसे ही कुछ साथ भी छूटते जाते हैं। तो जो आपका अपना हो, उसे अपने पास हमेशा बनाए रखने का प्रयास करते रहिए। और इस गीत के साथ ही अपने दोस्त शैलेश दुबे को कार्यक्रम मधुरिमा संपन्न करने की इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल, आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
1: बरेली में अब कोई भी फरियादी अपनी समस्या का समाधान पाए बिना वापस नहीं लौटेगा। ये संभव हुआ है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से। बरेली जिले में सभी तहसीलों की 10 से 12 के बीच जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें सभी तहसीलदारों BDO SDM को 10 से 12 के बीच अपने दफ्तर में बैठना है, जिसकी मॉनिटरिंग जिला अधिकारी बरेली अपने ऑफिस से करते हैं। यही नहीं, अगर जिला अधिकारी कार्यालय में किसी तहसील का कोई मामला आता है तो जिला अधिकारी बरेली संबंध अधिकारी से सीधे जुड़कर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग के आदेश को बरेली जिले में बखूबी पूरा किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय की भी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाती है। इसके साथ ही बरेली जिले की सभी तहसीलें बरेली जिला मुख्यालय से जुड़ती हैं, जिसमें हर फरियादी को अपनी समस्या का समाधान मिलता है। जनता दर्शन के दौरान 10 से 12 के बीच जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी जनसुनवाई में मौजूद रहते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखते हैं। जिलाधिकारी बरेली का कहना है कि जनता दर्शन का उद्देश्य आम आदमी की समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान करना है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। लाइव मॉनिटरिंग के चलते अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है और हर शिकायत की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।
2: मुख्यमंत्री कार्यालय से यूपी के 75 जिलों के जो जिलाधिकारी के कार्यालय में जो जनता दर्शन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसकी लाइव मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ये देखते रहते हैं कि जनता दर्शन में आने वाले जो हमारे फरियादी हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनकी शिकायतों का किस प्रकार से सुनवाई हो रही है, किस प्रकार से आम जनमानस के प्रति व्यवहार है और किस प्रकार से उनकी उचित गुणवत्ता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया

0: जा रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिला प्रशासन कह सकते हैं कि एक नया नवाचार किया है। हम लोगों ने अपने यहाँ भी एक बड़ी स्कीम के माध्यम से जितने भी हमारे 6 तहसीलों के SDM हैं उनके कार्यालय, जो हमारे पास 15 विकास खंड हैं उनके विकास खंड अधिकारी के कार्यालय और 19 हमारे पास जो हैं वो नगर पालिका और नगर निगम के EO के कार्यालय हैं, उन सभी को हमने अपने यहाँ जोड़ते हुए उनकी भी लाइव मॉनिटरिंग प्रारंभ किया है। तो लाइव मॉनिटरिंग के दौरान कार्य के जो आम जनमानस के प्रति उनकी किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार से शिकायतों को सुन रहे हैं, किस प्रकार से समस्या का समाधान कर रहे हैं, इस पे लगातार हम लोग नजर रख रहे हैं और यही वजह है कि कार्य की जो गुणवत्ता है लगातार उच्चतर होती जा रही है।
1: बरेली में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। गत दिनों उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने नाथ कॉरिडोर में कराए जा रहे कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिले में 98 करोड़ की लागत से सभी नाथ मंदिरों का कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसमें त्रिवटी नाथ, धुपेश्वर नाथ, अलकनाथ विशेष रूप से शामिल है। इन मंदिरों में सरकार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है ताकि धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा मिल सके। एक कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन को प्रदेश में नई ऊर्जा मिल रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने की अपील पर बोलते हुए कहा कि ये राष्ट्र हित का काम है। बरेली जिले में जल्द ही इको फ्रेंडली नगर वन बनने वाला है, जिसका शिलान्यास गत दिनों वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने किया। ये नगर वन शहरवासियों के लिए एक प्राकृतिक रमणीय स्थल बनने जा रहा है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखा जाएगा। इस नगर वन में बच्चों के लिए किड जोन भी विकसित किया जाएगा, जिससे बच्चे यहां आकर प्रकृति को समझ सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इको फ्रेंडली नगर वन में सब कुछ प्राकृतिक ही प्रयोग किया जाएगा, कंक्रीट और ईंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए दिव्यांग विद्यालय दिशा पब्लिक स्कूल में गत दिनों गुजरात दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और भी शानदार बनाया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाना आसान है, लेकिन बच्चों को सही दिशा देना, हुनर सिखाना और आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को समाज से जोड़ते हुए कम से कम 5 गांव गोद लेकर उन्हें विकसित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी केवल किताबों तक सीमित नहीं है, उन्हें गांव में जाकर महिलाओं, बच्चों और किसानों की समस्याएं सुननी चाहिए, उनके समाधान में भागीदारी निभानी चाहिए। टीबी मुक्त भारत अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 4 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि हर विश्वविद्यालय को राज्यों की स्थापना दिवस मनाने चाहिए, जिससे छात्रों को देश की विविधता और विकास मॉडल की जानकारी मिले। उन्होंने अपने गुजरात कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए बताया कि ग्रामीण महिलाओं बड़े स्तर पर परीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई और हजारों को समय से इलाज मिला।
2: बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में सीतापुर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को भव्यतम स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में पौराणिकता और नवाचार को समाहित करते हुए नैमिष स्थित पुरानी धर्मशाला को आधुनिक शिल्प ग्राम इंटीग्रेटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि विरासत भवन की मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 372 करोड़ रुपए की मंजूरी देते हुए पहली किस्त के रूप में 2.98 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नैमिषारण्य के इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में श्रद्धालुओं को स्थानीय इतिहास, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसके लिए भवन के भीतर अलग अलग थीम पर आधारित गैलरियां बनाई जाएंगी, जिनमें कॉस्मिक ऑर्डर, जीवन का विकास, सभ्यता का उदय, महाकाव्य और ज्ञानोदय जैसे विषयों को रोचक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना के तहत पूरे परिसर का समग्र विकास किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। योजना अंतर्गत आधुनिक प्रवेश लाबी, आकर्षक एम्फी थिएटर, मूर्ति कला मार्ग और स्वच्छ शौचालय ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा भवन का नवीनीकरण और नई इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण और अधिक सजीव व आकर्षक बन सके। अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृत एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभियान ने बताया कि नैमिषारण्य जैसे

0: फिसलरा समग्र विकास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया यहाँ श्रद्धालुओं आधुनिक और समग्र सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ इसकी समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रस्तावित इंटरप्रिटेशन सेंटर के जरिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक ही स्थान पर इस पावन स्थल के धार्मिक महत्व परंपराओं और इतिहास की व्यापक जानकारी मिल सकेगी। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी बल्कि क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। सीतापुर के अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वगणना 2027 के तहत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सेल्फ सर्वे कराया गया। साथ ही सभी विभागों और विकास खंडों में विशेष अभियान चलाकर अधिकाधिक सेल्फ इन्यूमेरेशन सुनिश्चित कराने तथा अधीनस्थों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं विधायक मिश्रित रामकृष्ण भार्गव ने आम जनमानस से अपील की कि स्वगणना 2027 में अपनी जनगणना संबंधी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से निःशुल्क दे सकते हैं, जिससे जनगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकता है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बहुत ही हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ बाबा जंगली नाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सभी आगंतुकों ने देखा। महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस पर्व को समारोह पूर्वक मनाया। जनपद सीतापुर में पुलिस लाइन परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बाबा जंडलीनाथ मंदिर में समाप्त हुई, जहां सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को बाबा जंडलीनाथ का अभिषेक एवं पूजन अर्चन संपन्न कराया गया। सभी अतिथियों ने श्रद्धालुओं को संबोधित करने के साथ सजीव प्रसारण का अनुसरण किया। अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संचालन राज शर्मा जिला व्यायाम शिक्षक ने किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर वैभव त्रिपाठी एवं बड़े संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। थाना राजा तालाब, जिला वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार पुष्पा पटेल, पत्नी अखिलेश पटेल, निवासी ग्राम और पोस्ट महागांव, थाना राजा तालाब, जिला वाराणसी। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, इकहरा शरीर और चेहरा लंबा है। ये 15 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप अपने निकटतम थाने अथवा थाना राजा तालाब, जिला वाराणसी को सूचित करें। अगली सूचना है थाना आदमपुर, जिला वाराणसी से प्राप्त। कृष्ण कुमार भारती, पुत्र स्वर्गीय दिलीप कुमार, निवासी कजागपुरा, आदमपुर, वाराणसी। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा, सामान्य शरीर और चेहरा सामान्य है। ये 1 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप अपने निकटतम थाने अथवा थाना आदमपुर, जिला वाराणसी को सूचित करें। अगली सूचना है थाना चोलापुर, जिला वाराणसी से प्राप्त। नीतू, पुत्री शिवनाथ प्रसाद, निवासी ग्राम रौना खुर्द, थाना चोलापुर, वाराणसी। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 23 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ और शरीर सामान्य है। ये 30 मार्च सन 2026 से लापता हैं। इनके बारे

में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप अपने निकटतम थाने अथवा थाना चोलापुर जिला वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: Akashwadi at 90.
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658
4: 0542227658।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से प्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
2: सामईन, आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान आसिफ इकबाल। सलाम कबूल फरमाएं। आज हम पेश करते हैं आकाशवाणी के 90 साल होने पर इरम मेडिकल यूनानी कॉलेज कैंपस में हुए क्विज प्रोग्राम की पहली किस्त।
3: आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान शमसुल आरफीन और मेरे साथ हैं।
4: मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जमशेद।
3: सलाम कबूल फरमाइए।
4: सामईन, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आज हम मौजूद हैं इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज में, जहां पर हम आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं।
3: तो सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल हलीम साहब का और मोहतरम जनाब डॉक्टर जुबैर खान साहब का। हकम के फराइज अंजाम दे रहे हैं मोहतरम जनाब सुभाष खन्ना साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर जुबैर खान साहब।
4: तो इस क्विज में कॉलेज की 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 4 टीमों के नाम आकाशवाणी के मशहूर प्रोग्राम्स के नाम पर हैं, जो कि इस तरह है। टीम हवा महल, जिसमें 2 लोग मौजूद हैं, हबीबुल्ला और उबैदुर रहमान। जोरदार तालियां। साथ में है टीम छाया गीत, अब्दुल्ला सिद्दीकी और फजील हाशिम की शक्ल में। तीसरी टीम है हमारी आबशार, जोया आलम और तभी नाज है मौजूद इसमें। और टीम है रजनीगंधा, तहसीन और शाइमा है मौजूद इस टीम में। तो आइए शुरू करते हैं आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम।
3: तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे इस क्विज प्रोग्राम में 4 राउंड होंगे और चारों के नाम होंगे। पहला राउंड होगा बूझो तो जाने, जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन किए जाएंगे। हमारा दूसरा राउंड होगा आवाज की दुनिया, जिसमें हम आपसे रेडियो से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, आकाशवाणी से जुड़े हुए सवाल। तीसरा हमारा राउंड होगा स्टेथोस्कोप राउंड, जिसमें मेडिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फाइनल राउंड हमारा होगा जो जीता

0: वही सिकंदर, जिसमें बॉलीवुड और उर्दू अदब के क्वेश्चन किए जाएंगे। हम आपको एक बात और बता दें कि इस पहले राउंड और तीसरे राउंड में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो चलिए हम पहला राउंड शुरू करते हैं, बूझो तो जाने। पहला राउंड शुरू करते हैं बूझो तो जाने। बूझो तो जाने का हमारा पहला सवाल है, अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव किस मुस्लिम सूफी संत ने रखी?
1: ऑप्शन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर 2 मियां मीर, और ऑप्शन नंबर 3 बुल्ले शाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, श्योर हैं आप? हम लॉक कर देंगे इसे। इन्होंने जवाब दिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
0: जो कि सवाल सही नहीं है।
1: जी, यानी जवाब इन्होंने गलत दिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल जो है टीम छाया गीत के लिए है। साल 1919 में किस कानून को काला कानून कहा गया है जो पारित हुआ था?
0: आपके ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है माउंट बेटन प्लान, और ऑप्शन सी है विधवा विवाह कानून।
2: सर ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट।
1: ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, आप लोग क्या कहते हैं, सही है? नहीं, ऑडियंस ने मोहर लगा दी है।
0: हाँ।
1: तो आपका ये सवाल का जवाब पूरी तरह से सही है।
0: जोरदार तालियां होनी चाहिए।
1: अब हम चलते हैं टीम आबशार की तरफ। सवाल बहुत बढ़िया है, आजादी से रिलेट करता हुआ सवाल है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था?
3: सुभाष चंद्र बोस।
0: ऑप्शन देने की बारी नहीं आ रही है, वो बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस।
1: जवाब बिल्कुल सही है।
0: टीम आबशार का ये जवाब बिल्कुल सही है।
1: 10 पॉइंट मिलते हैं आपको। और टीम रजनीगंधा, आपके लिए भी सवाल बड़ा खूबसूरत सा है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?
0: ऑप्शन आपके हैं 30 साल, 35 साल या 40 साल। 35 ईयर बता रहे हैं जमशेद।
1: 35 साल, आप लोग क्या कहते हैं, सही है गलत है? और अब बारी आती है फिर एक बार टीम हवा महल की तरफ, एक बार फिर चलते हैं। टीम हवा महल, आपका सवाल स्टेट से है, राजनीति से है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है?
0: आपके ऑप्शन है 243, 245, 245 या 250, 250।
4: सर 243।
0: 243 बता रहे हैं।
1: अब आप क्या कहेंगे,
0: सही जवाब है या गलत, आप लोग बताएं।
1: देखिए हमने तो कुछ नहीं कहा, आपके साथियों ने कहा ये जवाब गलत है। भाई सही जवाब जो है वो है 250।
0: टीम हवा महल नेगेटिव में।
1: और हम आगे बढ़ते हैं, सवाल आता है टीम छाया गीत की तरफ, और सवाल ये है कि देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? और ऑप्शन आपके पास हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ या जस्टिस बी आर गवई।
2: सर फर्स्ट।
0: फर्स्ट जस्टिस सूर्यकांत। क्या लगता है आप लोगों को, हैं सही है? ऑडियंस को,
1: ऑडियंस ने जो है मोहर लगा दी तो मानना पड़ेगा
0: जी।
1: तो ये जवाब पूरी तरह से है सही। और एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ, और टीम आबशार आपसे सवाल है, हवा की शुद्धता यानी प्योरिटी, इसको प्रदूषण मापने का इंडेक्स क्या है?
0: ऑप्शन ए AQI, दूसरा ऑप्शन है AIQ या ऑप्शन सी है PQI।
3: AQI।
1: AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स,
0: बिल्कुल सही है जवाब।
1: और आप चलते हैं टीम रजनीगंधा की तरफ, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है?
0: ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है रिकी पोंटिंग, और ऑप्शन सी है मुथैया मुरलीधरन।
1: जी
5: सर ऑप्शन बी।
0: ऑप्शन बी है रिकी पोंटिंग। क्या लगता है ऑडियंस को,

0: गलत है। आप में से कोई जवाब देना चाहेगा?
1: मुथैया मुरलीधरन।
0: मुथैया मुरलीधरन बिल्कुल सही जवाब है आपके लिए। टीम रजनीगंधा के लिए माइनस पॉइंट।
2: और अगला सवाल एक बार फिर टीम हवा महल से है, और सवाल है कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है?
0: आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, या ऑप्शन सी है बेंगलुरु।
3: बेंगलुरु।
0: अहो, जोरदार तालियां होनी चाहिए टीम हवा महल।
2: इसी तरह से आगाज हो गया टीम हवा महल का।
0: टीम छाया गीत की तरफ चलते हैं हम लोग,
2: और टीम छाया गीत आपके लिए सवाल है, ओलंपिक खेलों में भारत को सबसे ज्यादा मेडल किस खेल में मिले हैं?
0: आपके ऑप्शन है कुश्ती, आपके ऑप्शन बी है बैडमिंटन, या ऑप्शन सी है हॉकी।
1: सर ऑप्शन सी हॉकी।
2: तो ये जवाब पूरी तरह से है सही?
0: बिल्कुल सही जवाब,
2: क्योंकि अकेले हॉकी में इंडिया को 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी कुल 13 मेडल मिले हैं हॉकी में। अब आप पूछेंगे अगला सवाल टीम आबशार से, क्या कहते हैं आप?
0: लखनऊ का फेमस सिकंदराबाग जो आपका बना हुआ है, इसको किस नवाब ने बनवाया था?
2: ऑप्शन है
0: आसिफुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला, या वाजिद अली शाह।
2: वाजिद अली शाह। ऑडियंस क्या कहती है? और ये जवाब पूरी तरह से सही है।
0: ये बिल्कुल अगला सवाल आप ही के सब्जेक्ट से है,
2: और टीम रजनीगंधा से।
0: रजनीगंधा के लिए
2: जी,
0: प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लाइपेज, ऑप्शन बी है एमाइलेज, और ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन।
4: ऑप्शन सी ट्रिप्सिन।
0: ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। क्या लगता है जमशेद भाई, सही है?
2: हाँ, सवाल का जवाब तो बिल्कुल सही है। और अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, टीम हवा महल से है अगला सवाल, और सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है? और आपके ऑप्शन है
0: 400, 402 या 403।
2: 403। और सही जवाब है 403। और उसके बाद हम चलते हैं एक बार फिर टीम छाया गीत की तरफ, कि इनमें से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है,
0: क्लासिकल डांस कौन सा है इनमें से उत्तर प्रदेश का?
2: कुचिपुड़ी, कथकली या फिर कथक?
1: सर कथकली।
2: जवाब आया है कथकली, सही जवाब है कथक। फिर हम पहुंचते हैं टीम आबशार की तरफ, इनमें से भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया, जगत प्रकाश नड्डा या फिर राजनाथ सिंह?
4: बी।
2: बी यानी जेपी नड्डा सही जवाब, और आपको मिलते हैं 10 नंबर।
0: जोरदार तालियां होनी चाहिए टीम आबशार के लिए अगेन।
2: और अब हम आखिरी सवाल की तरफ चल रहे हैं साहब, यानी बूझो तो जाने राउंड का
0: आखिरी सवाल।
2: आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? और ऑप्शन आपके हैं 14 या फिर 15 में या फिर अनुच्छेद 16 में।
5: सर ऑप्शन ए आर्टिकल 14।
0: आर्टिकल 14 टीम रजनीगंधा ने जवाब दिया है।
2: बिल्कुल सही जवाब, आर्टिकल 14। इस राउंड के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस टीम को कितने मार्क्स मिले हैं।
6: टीम हवा महल को मिले हैं 10 नंबर, छाया गीत को 25 और आबशार को 40 सबसे ज्यादा, और रजनीगंधा को 25।
2: और अभी टीम हवा महल के पास चांस है, और अगला राउंड हमारे पास आ गया है, और आवाज की दुनिया में आपको बताना है कुछ सवाल आकाशवाणी से रिलेट करते हुए होंगे।
0: अच्छी बात यह है कि इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
2: तो शुरुआत फिर एक बार हम हवा महल टीम से करें।
0: जी सर, करिए आप।
2: आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी?
0: ऑप्शन ए 1936 या ऑप्शन बी 1938।
3: 1936।
0: 1936। क्या कहेंगे आप लोग?
2: और

0: सही जवाब है 1936। अभी एक स्लोगन था आकाशवाणी का, अभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, और टीम छाया गीत के लिए सवाल है कि आकाशवाणी का स्लोगन क्या है।
1: आपके ऑप्शन ए है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, या ऑप्शन बी है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
2: सर पहला ऑप्शन।
1: पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन बता रहे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्या कहेंगे आप लोग? गलत है।
0: ओ
1: ओ, ओ, ओ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
0: और अगला सवाल टीम आबशार के लिए, आप बताइए किस साल में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया, और ऑप्शन है 1947 या फिर साल 1957।
3: 1957।
0: बिल्कुल सही जवाब।
1: राइट,
0: आकाशवाणी लखनऊ एफएम का जो चैनल है उसका स्लोगन क्या है? धड़कन लखनऊ की या फिर शान लखनऊ की?
3: सर बी ऑप्शन।
1: ऑप्शन बी,
3: शान लखनऊ की।
0: यहां पर हम आपसे कहेंगे धड़कन लखनऊ की। अगला सवाल है टीम हवा महल से। टीम हवा महल, हमारा चैनल है प्राइमरी चैनल, आपको बताना है कि हमारा प्राइमरी चैनल किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जाता है, मीडियम वेव 747 किलो हर्ट्ज या फिर मीडियम वेव 750 किलो हर्ट्ज?
1: 750 का ऑप्शन चुना है टीम हवा महल ने।
0: तो सही जवाब क्या है शम्स साहब?
1: 747 किलो हर्ट्ज।
0: यहाँ
1: पर मीडियम वेव 747 किलो हर्ट्ज इज द राइट आंसर।
0: आपका जवाब गलत होता है। विविध भारती चैनल को सुनने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करते हैं, एम मोड पर या फिर एफएम मोड पर?
2: एफएम मोड पर।
1: एफएम मोड पर। टीम छाया गीत का ये जवाब एफएम मोड पर।
0: विविध भारती चैनल सुनने के लिए हम इस वक्त एफएम मोड पर जाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी मोड पर। विविध भारती को किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है, 98.6 या 101.6?
3: सब बी
1: 101.6।
0: ऑडियंस सही जवाब। और अब टीम रजनीगंधा के लिए सवाल है कि आकाशवाणी लखनऊ के एफएम चैनल का नाम क्या है?
1: आपके ऑप्शन है एफएम रेनबो या ऑप्शन बी है रेडियो मिर्ची?
3: सर ऑप्शन ए।
1: ऑप्शन ए एफएम रेनबो।
0: बिल्कुल सही जवाब, एफएम रेनबो। टीम हवा महल की तरफ चल रहे हैं। एफएम रेनबो के गजलों के प्रोग्राम का नाम क्या है?
1: ऑप्शन है आपके आबशार या कहकशां।
4: आबशार।
1: आबशार।
0: तो बिल्कुल सही जवाब है
1: जी,
0: आबशार। टीम छाया गीत, प्राइमरी चैनल पर उर्दू प्रोग्राम का वक्त क्या है?
1: आपके ऑप्शन है सुबह 9:30 पर और बी है ऑप्शन रात में 9:30 पर।
2: रात में 9:30।
1: रात में 9:30 का जवाब, सुबह 9:30 पर प्राइमरी चैनल पर आप आकाशवाणी का उर्दू प्रोग्राम सुन सकते हैं, तो आपका ये जवाब गलत है।
0: हम एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ। एफएम रेनबो की फ्रीक्वेंसी क्या है?
1: 98.7 या 100.7?
3: बी 100.7।
1: बी 100.7। राइट,
0: 100.7।
1: यस।
0: टीम रजनीगंधा, आकाशवाणी एक संस्था होती है, जैसे आपका चल रहा है कॉलेज, वैसे आकाशवाणी का एक पेरेंट संस्था है जिससे आकाशवाणी चलती है।
1: ऑप्शन
0: प्रसार भारती या फिर NSD?
3: सर ए प्रसार भारती।
0: ए प्रसार भारती। बिल्कुल सही जवाब है ये,
1: राइट आंसर,
0: प्रसार भारती। और एक बार फिर टीम हवा महल,
1: आकाशवाणी के प्रोग्राम को रेडियो पर सुनने के अलावा आप अपने स्मार्टफोन पर किस ऐप के जरिए सुन सकते हैं, आकाशवाणी AIR या न्यूज ऑन AIR?
2: न्यूज ऑन AIR।
1: न्यूज ऑन एआईआर।
0: न्यूज ऑन एयर सही जवाब। न्यूज ऑन एयर
1: सही जवाब है टीम हवा महल के लिए। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप रेडियो के प्रोग्राम सुन सकते हैं, हमारे आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम सुन

0: सकते हैं।
1: और अब सवाल है टीम छाया गीत के लिए, क्या प्राइवेट चैनल FM में न्यूज का प्रसारण कर सकते हैं या न्यूज ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं?
0: सवाल है, ऑप्शन है हाँ कर सकते हैं, ऑप्शन बी नहीं कर सकते हैं।
2: जी सर कर सकते हैं,
1: प्राइवेट FM चैनल न्यूज को प्रसारित कर सकते हैं, उनको अनुमति है और आपने कहा हाँ,
0: यानी कि गलत जवाब।
1: टीम आबशार सवाल है,
0: आकाशवाणी का सबसे लंबा चलने वाला प्रोग्राम कौन है? ऑप्शन ए है माटी की सुगंध, ऑप्शन बी है मन की बात।
3: मन की बात
1: सही जवाब है, मन की बात।
0: मन की बात, जोरदार तालियां।
1: और माइक टीम रजनीगंधा की तरफ, सवाल है आकाशवाणी लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है
0: 1938 और 1947।
1: 1938 तो बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ हमारे दो राउंड खत्म होते हैं, बूझो तो जाने और राउंड आवाज की दुनिया।
0: अब हम अपने जजेस से कहेंगे कि यहाँ पर टोटल स्कोर करके आप बता दें और एक टीम यहाँ से एलिमिनेट की जाएगी। मैं चाहता हूँ मोहतरम जनाब सुभाष खन्ना सर आए और टीम का रिजल्ट बताएं।
1: और आपको बता दें कि इस राउंड के बाद जिसके मार्क्स सबसे कम होंगे वो टीम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी।
4: जो हमारी हवा महल है उन्होंने टोटल 40 अंक अर्जित किए हैं, उन्होंने पहले में भी 40 यानी चारों सही और दूसरे राउंड में भी आपने चारों सही जवाब दिए हैं। और अगली टीम है रजनीगंधा, उसने सेकंड राउंड में 30 अंक अर्जित किए हैं और पहले में 25, टोटल 55 आपके हैं। और आबशार ने टोटल 80 अंक अर्जित किए हैं, आपको बहुत बधाई, आपने सबसे बेहतरीन खेला। तो ये तो रहे अंक, और सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां सहभागिता की। तो बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूं कि यहां जो एलिमिनेट टीम हो रही है वो है छाया गीत टीम। आपने टोटल 35 अंक अर्जित किए हैं लेकिन आपने पार्टिसिपेशन किया और लगातार आपने जवाब दिया और बहुत बेहतरीन।
1: तो ये दो राउंड के बाद जो बताया हमारे सुभाष खन्ना सर ने, तो यानी एक टीम हमसे अलग होगी, वो टीम है छाया गीत, और बाकी के तीन टीमें हमारे साथ रहेंगी, टीम हवा महल, टीम आबशार और टीम रजनीगंधा।
5: सामाइन ये थी क्विज प्रोग्राम की पहली किस्त, अगली किस्त जल्द ही आपके सामने होगी। फिलहाल इजाजत दें, आसिफ इकबाल को आदाब।
6: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं अर्जुन यादव और साथी। लीजिए सुनिए सबसे पहले इनके स्वर में ये देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार थे अर्जुन यादव और साथी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

दोस्तों, उदित नारायण को आप सुन रहे हैं फिल्म पापा कहते हैं मैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत राजेश रोशन का है।

फिल्म आशिकी में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू को। गीत लिखा था समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था।

फिल्म संघर्ष में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रद्धा पंडित को। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत जतिन ललित का था।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को फिल्म नजर में। सईद कादरी के बोल और संगीत अनु मलिक का था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। इस कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कार्यक्रम के बाकी नगमे हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

पंकज उधास और साधना सरगम को अभी आप सुन रहे हैं फिल्म मोहरा में। गीत इंदिवर का है और संगीत वीजू शाह का।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म में आप सुन रहे हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को। गीत समीर का और संगीत नदीम श्रवण का है।

फिल्म बॉम्बे में अभी आप सुन रहे थे चित्रा और हरिहरन को। गीत लिखा था महबूब ने और संगीत AR रहमान का था।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन में उदित नारायण, शब्बीर कुमार, सरिगा कपूर और उज्ज्वला को। गीत समीर का था और संगीत दिया था अनु मलिक ने। अब आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा। इसे लिया है हमने फिल्म बॉर्डर से। आवाज रूप कुमार राठौर की है, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत अनु मलिक का है।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 241.5 4 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। और आज कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार। तो कार्यक्रम में पहला पत्र हम शामिल कर रहे हैं धनबाद का। भेजने वाले श्रोता हैं प्रभात रंजन प्रसाद, शोभा रंजन प्रसाद, रितेश रंजन प्रसाद, स्वाति रंजन प्रसाद, प्रतिभा रंजन प्रसाद। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। त्रिलोचन घाट वाराणसी से रीता केसरी, संगीता केसरी, रंगोली केसरी, कशिश केसरी, टिया केसरी और इनके मम्मी पापा। कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ये पत्र हमें भेजा है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। गणों का लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, संदेश कुमार चौहान, अनुराग कुमार चौहान, अनिल कुमार अकेला, बड़क चौहान। पतली गली वाराणसी से यह खत हमें भेजा है मुश्ताक सुलेमानी, शाहिद मुश्ताक वाला, साजिद मुश्ताक वाला, नासिर मुश्ताक वाला, जावेद मुश्ताक वाला। अनारबाग बनारस से गुड़िया सुलेमानी, शाहिदा सुलेमानी, रजीना सुलेमानी, आयसा सुलेमानी, साकिब सुलेमानी, जाहिद सुलेमानी।

सुलेमानी, हसीना सुलेमानी। तकिया मणिहाउ जौनपुर से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमा शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद साजिद शाह। अंसार टोला मणिहाउ जौनपुर से निगार बानो, रहनमा बानो, राहत जहाँ, रोशन जहाँ और शाहिस्ता दास। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं आप सभी की पसंद पर समीर का लिखा हुआ गीत, संगीत नदीम शरण का, आवाज़ अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज़ की, फिल्म का नाम आदमी खिलौना है।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। तीव्रता डबरीपारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जोगेंद्र कुमार मरकाम, ग्राम अलगी डांडपाली जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से चंद्रपाल मरावी, ओम प्रकाश मरावी, राम प्रकाश मरावी। लेवालेख मोहल्ला चांदूर विश्वा से नारायण भाव, विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा सोना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी। गोलाघाट बक्सर से विजय केशरी, गौरीशंकर केशरी, शंभुनाथ केशरी। नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी, रोहन केशरी। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, नवासी हुमेरा नाज, नवासी सुमेरा नाज, नुझा झा नाज, शाजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख। अस्तुपुरा मौनान भंजन से यह खत हमें भेजा है मजहर अली अंसारी, रचिया बेगम अंसारी, अबू बकर अली अंसारी, सादिक साजिद और सारिक ने। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, इरम परवीन। आजिमाबाद मऊनाथ भंजन से आमिर अखलाक, अवनीश कुमार मिश्रा, कुमारी रानी मिश्रा। वलिदपुर मड़ाहा से राजेंद्र यादव भारती, रूषा देवी भारती, सिराज अहमद फारूकी। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदिबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस टी अंसारी, महताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मिराज अंसारी। ये पत्र भेजा है असालतपुरा मुरादाबाद से फरीद अंसारी, बिलाल अंसारी, जुबैर अंसारी। करुला मुरादाबाद से मेराज अंसारी, वसीम अंसारी, डॉक्टर अख्तर हुसैन। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। नई सड़क वाराणसी से शाहिद सद्दू, मलका मुमताज, इंशा इली तारिक। कोदई चौकी देहलू गली वाराणसी से बेबी आलम, नफीस, अनवर भाई जरीवाला। कपड़ा मार्केट से गुड्डू, शमा, रूमा, इशरा, शालू, आमिर और सारिक। पीएम सिटी बनारस यूपी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहनी सिंह, मोहित सिंह। छोटी पेरी वाराणसी से काशी प्रसाद सिंह, मदन कुमारी, राधा रानी वर्मा, पुष्पा ताम्रकार, विजय लक्ष्मी, कुसुम लता सिंह, हर्षित पुलकित और इनकी दादी जी। मॉडल

टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा आन्या अनाया, नेहा सागर, गुंबर, हिमांशु गुगलानी, इमू कुरैशी, सुधीर और नूतन, आप सभी को हम सुनवा रहे हैं किशन कन्हैया फिल्म का गीत। आवाज अमित कुमार, साधना सरगम और साथियों की। इस गीत को लिखा है अनवर ने, संगीत राजेश रोशन का। श्रोताओं, कार्यक्रम करने के लिए मैं जब स्टूडियो आ रहा था तो वाकई धूप की वो तपिश तेज है कि उफ, मुंह से यही निकल रहा है उफ ये गर्मी, धूप ने तो वाकई झुलसा दिया। तो हीट वेव का भी अंदेशा है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है और घर में बैठकर रेडियो सुनिए और सुनिए किशन कन्हैया फिल्म का ये गीत।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत अनु मलिक का। सुनने का ख्वाहिशमंद आप सभी, करोता लोहता वाराणसी से ये पत्र भेजा है अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोना प्रजापति, राहुल प्रजापति ने। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संजीव वर्मा, रचन रचक राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, प्रकाश सोनी। यहीं से हैं मनोज नामदेव, सुनील जैन, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू सोना मोना हनी या सौम्या और इनके मम्मी पापा। बड़ी गवी वाराणसी से अरुण कुमार मालवी, दर्द शशि मालवी, आकाश मालवी, हर्ष अनमोल मालवी, श्लोक। यहीं से श्री त्रिभुवनाथ मालवी, मंचु मालवी। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। बीट शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, सरला प्रकाश। लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, ऋषु, इला और वीनस। चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता, राधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुषी और अनुष्का। ओबरा से सोनभद्र से शुभम और आयुषी। और ये पत्र भेजा है कनॉट प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम ने। करवाडी प्रतापपुर प्रयागराज से रामप्रकाश गौतम, मंच गौतम, प्रेमचंद्र पाल, डीपी यादव, विजय कनौजिया और सौरभ वर्मा। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान नाज, आलम शेख और चांदनी नाज। मेन रोड बनोसा दरियापुर जिला अमरावती से यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान, माधवी चौहान। अकोला महाराष्ट्र से विजय वडालकर, लता वडालकर, वैष्णवी और आंजिक के कल्याण इष्ट से विनय वडालकर, कल्पना वडालकर, ऋषिकेश और आदेश। तो बात हम कर रहे थे इस गीत के पहले गर्मी की, तो अभी हीट वेव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।

कम से कम इतना हमें करना चाहिए जितना हो सके घर के अंदर रहे। जी हाँ, घर के अंदर रहे, अपने घर को ठंडा रखें, पर्दे शटर का उपयोग करें ताकि सीधी धूप जो आपके पास है उससे आप बचे रहें। निचली मंजिलों पर रहने का प्रयास करें ताकि जो ऊपरी मंजिल होती है वो काफ़ी तपती है धूप की वजह से, तेज़ धूप हो रही है, उस तपन से बचने के लिए कोशिश करें कि आप नीचे की मंजिल में ही रहने का प्रयास करें। पंखे का प्रयोग करें, कपड़ों को नम करें और ठंडे पानी में स्नान करें। तो बाकी बातें हम इस गीत के बाद करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि आप भी बचिए और सभी आपके आसपास के लोग भी हीट वेव से बचें। और सुनिए भी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी एट 90। अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत में, और ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहा है गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल बबरी बाजार चंदोली से, विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर से, मुराहो जायसवाल, देवंती जायसवाल चकिया बाजार चंदौली से, सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल ने, जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल बबरी बाजार चंदौली से, विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, शुभम जायसवाल, शिवम जायसवाल जमनिया स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, राजेश जायसवाल, अवधेश जायसवाल, डिंपल जायसवाल स्टेशन रोड जमानिया से, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल, दिलीप जायसवाल, दुर्गेश जायसवाल बड़भोली पोस्ट अदलाट जिला मिर्जापुर से, आरएसपी खन्ना, नसरुद्दीन अंसारी, गुफरान अंसारी, अकबर अंसारी, झाजू अंसारी, सिद्दीक अंसारी, मंजूर कुरैशी स्टेशन रोड बस्ती से, जयप्रकाश भारती, नीलेश कुमार, कविता और स्वाति का भी पत्र हमें मिला है। ये पत्र भेजा है हरिपुरा झज्जर से प्रदीप बधवा, आशा बधवा, गीतेश बधवा, मोक्ष बधवा, यश बधवा, निखिल बधवा ने। कनेरा मोहल्ला पटियाले से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू और निहारिका वंश बत्ता। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें पत्र भेजा है। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर और ये पत्र हमें भेजा है कच्ची सराय दाल मंडी वाराणसी से मोहम्मद नसीम।

मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन तबस्सुम बानो नाजिया रहनुमा, चौराहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली सिराज आलम, मोहम्मद समद रोजी अलीसा। नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, पिंटू दीवाना, सुरेंद्र कुमार सुमन, जग मोहन साहनी। सुंदरखेड राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। आप सभी को हम सुनाने जा रहे हैं जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज अमित कुमार और साथियों की, फिल्म का नाम जमाई राजा। तो हम बात कर रहे थे धूप की, गर्मी की। तो ये यदि आपको लगे कि नहीं हमें कमजोरी महसूस हो रही है या बेहोशी होने जा रही है, तो ये अधिक गर्मी और लू से ऐसा हो सकता है, तो तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, कपड़ों को ढीला करें, तुरंत पंखे के नीचे और छायादार ठंडे स्थान पर जो भी ऐसा जिसको फील हो रहा है उसको ले जाए। अगर जो जिसको ऐसा लग रहा है उसे कुछ पीने की अवस्था में हो तो पानी ज़रूर पिलाएं, ORS का घोल पिलाएं, नींबू का पानी नमक के साथ पिलाएं, मांसपेशियों पर दबाव डालें और हल्की मालिश करें। और सबकी बात एक यही है कि धूप से बचें। आप जब धूप से बचेंगे तो ये सब दिक्कतें नहीं होंगी, और धूप से बचना ही हम इसका इलाज यही है कि आप कहीं मत जाइए और बैठ के घर में आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम सुनिए। सुनिए जमाई राजा फिल्म का ये गीत।

शिवाजी चौक कटनी से श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लव श्रीवास्तव का भी पत्र आया है। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, अनिल कुमार, अंशुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। सराय नक्का रामनगर वाराणसी से शमीम भाई, शबाना, सहाना, सोनम, संश, अकीब, बलम, रफीक और रिजवाना। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रूबी भारती, रचना, एकता भारती, कुमारी दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और केशलता। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें भेजा है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, मन्नू सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू। गांव फरांसी से राजकुमार डोडी, सरजी सिंह डोडी। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। और ये पटेल नगर मलोट पंजाब का खत्ता अब ये है पटेल नगर मुगल सराय से शशि सिंह, आस्था सिंह, आकाश सिंह और सुनील कुमार सिंह। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, डॉक्टर शहबाज खान, डॉक्टर समी अहमद ने ये पत्र भेजा है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। और श्रोता, इस कार्यक्रम में आप भी यदि शामिल होना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना होगा, आपको पत्र लिखना होगा। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, महमूरगंज, वाराणसी, पिन कोड 221010। तो हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही है आपके पत्र आपके गीत। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राम लखन फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में, जिसके लिए आप सभी ने फरमाइश भेजी थी। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आवाज तो बताया मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की, फिल्म का नाम राम लखन। और इस गीत के पहले चर्चा हो रही थी धूप, लू और गर्मी की। तो ये तो बात हमने इंसानों को की, लेकिन धूप तो पशुओं को भी लगता है ना दोस्तों। तो पशुओं को भी लू से बचाना होगा, जहां तक संभव हो तेज गर्मी के दौरान उन्हें घर के भीतर रखें, उन्हें किसी छायादार स्थान में रखें जहां से वो आराम कर सके। ध्यान ये दें कि जहां उन्हें रखा गया हो वहां दिन भर छाया रहे। जानवरों को किसी बंद उसमें डिब्बे में या कमरे में ना रखें, क्योंकि जानते हैं गर्मी के मौसम में उन्हें जल्दी गर्मी लगने लगती है। जानवर साफ हो, उन्हें ताजा पीने का पानी

जो हो वो ताजा रहे, साफ रहे, ताकि वो भी स्वस्थ रहें। पानी को धूप में ना रखें, दिन के समय उनके पानी में संभव हो तो बर्फ का टुकड़ा भी डाल दें। पीने के पानी को दो बाउल रखें, जिसे एक पानी खत्म हो तो दूसरे बाउल में भी, दूसरे कटोरे में भी पानी भर दें, ताकि देखिए जीने का अधिकार उन्हें भी है। और कहते हैं ना, जियो और जीने दो, और जीना चाहिए। और इसके साथ साथ ये गीत सुनिए फिल्म राम लखन से।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम का आखिर गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू रिंगनी से दिनेश वर्मा भिलाई से मुकेश शर्मा दतरंगी से भागवत वर्मा राजा बाजार बिहिया से सुरेश केशरी पूनम केशरी प्रतीक केशरी थाना रोड बक्सर से उमानंद केशरी धनानंद केशरी विनोद केशरी रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जेएस नायक शोभा नायक और समस्त डागला परिवार तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा नारायण सिंह मनकोबाई निशा कुशवाहा प्रियंका ईशिका कपिल ब्रजभान बलराम मेहर नरेश प्रजापति लक्ष्मण रेखवार दातार सिंह शेखावत राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज मधु राजावत राशिद रक्षित रिया रीत स्वीटी सागर अंशु रितिका ऋचा चित्रंजन उमेश सूर्यज और रेखा ऋषभ राजावत और उनकी दादी जी पाकुड़ झारखंड से ये पत्र भेजा है उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशु और दासु अर्णव आनंद सत्यम आनंद ने दुर्गई सेलू से चंदू कुलकर्णी हेमलता परभणी से सी आर कुलकर्णी आदर्श नगर भटिंडा पंजाब से अशोक ग्रोवर प्रवीण ग्रोवर नीति प्रवीण और विक्रमजीत ग्रोवर मसीता डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजु नारंग मोहित नारंग अहमदाबाद से भालचंद भटके जतीन मेहता विवेक विकास भटके फुलवा मेहता नीलेश भटके मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाड़कर राही सहता गवाड़कर सिद्धांत गवाड़कर बंटी विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर वैशाली गवाड़कर कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी और प्रिंस एकांश करणवाला सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान राधा मनु प्रकाश शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा कुमारी ज्योति वर्मा चटोदा सारा गांव से सुजान वर्मा सुहद्रा वर्मा आयुषी और कृत वर्मा ग्राम सोंगा मगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी चंदन मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन आप सभी को हम सुनाने जा रहे हैं अनवर सागर का लिखा हुआ गीत संगीत जतिन ललित का फिल्म का नाम खिलाड़ी आवाज अलका याग्निक और अभिजीत की और श्रोताओं हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा और प्रतिक्रिया लिखने के लिए हमारी मेल आईडी नोट कीजिए हमारी मेल आईडी है pkldair varanasi@gmail.com पता एक बार पुनः नोट कर लें pkldair varanasi@gmail.com इस पते पर आपको अपनी प्रतिक्रिया लिखनी होगी और ये भी हम कहना चाहेंगे कि संभव हो तो इतनी जब गर्मी पड़ रही है तो दोपहर में 12 बजे से शाम 4 बजे तक तो कतई घर से ना निकले क्योंकि इसमें हीट वेव का असर सबसे अधिक होता है और निकलना ही पड़े तो सिर ढक लें छाता लगा लें और गमछे को अपने मुंह और

हाथों को ज़रूर से ढकें, पूरा शरीर एकदम से ढक के ही निकलें। और अब चलते चलते हम आपको कार्यक्रम के अंत में सुना रहे हैं खिलाड़ी फिल्म का ये गीत।

जी हमारी चाहतों का फसाना बना है बना रहेगा, इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात। आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।

ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
0: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
0: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
0: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
0: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
0: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
0: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
0: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
0: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म

0: हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है?
0: तो साथियों, इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir.
2: That's very nice, children.
10: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen? To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir. We love to recite it.
2: As I lie on my back, looking up at the sky,
3: looking up at the sky,
2: I see a big white bear.
3: I see a big white bear
2: looking down at me.
3: Looking down at me. As I lie on my back,
2: looking up at the sky,
3: looking up at the sky,
2: I see a ship sailing. On a white sea.
3: On a white sea. As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see an elephant.
3: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me.
3: Waving its trunk at me.
2: as I lie on my

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajender Pal. Technical Coordinator, Buti Lang Lingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है.

0: प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
2: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं।

0: तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए।
1: ओह,
0: जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
0: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
1: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
0: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
1: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना?
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या

0: मात्र वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मात्र वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
1: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
0: अच्छा।
1: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
0: अच्छा।
1: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
0: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
0: अच्छा।
1: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
1: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों, तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं। समझे?
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
0: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, उसके पहले ये संदेश।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658,
7: 0542227658।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
8: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थी संचिता गोस्वामी। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद साबिर खान का सारंगी पर बजाया राग गौड़ सारंग। आपके साथ तबले पर संगति की है राशिद मुस्तफ़ा ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे उस्ताद साविर खान का सारंगी पर बजाया राग गौर सारंग। आपके साथ तबले पर संगति की थी राशिद मुस्तफा ने। मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलो हर्ट्ज, वेब्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और पांच नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग

0: को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2,00,000 और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी प्रियंका पुत्री कमलेश विश्वकर्मा ये ग्राम नादी थाना बलवा जनपद चंदौली की रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। कुमारी प्रियंका के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 20 वर्ष, लंबाई 4 फीट 2 इंच, रंग गोरा, शरीर पतला है, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुई थी उसमें सफ़ेद कुर्ती और कार्गो काला पैंट पहने हुए थी। कुमारी प्रियंका के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। सीमा देवी कुमारी रिमझिम पुत्री सुरेंद्र सोनकर ये ग्राम बिछड़ी थाना अलीनगर जनपद चंदौली की रहने वाली हैं। कुमारी रिमझिम के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 16 वर्ष, रंग सांवला, चेहरा गोल है, बालों का रंग काला है। कुमारी रिमझिम के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार सीमा देवी पुत्री जीतू राम निवासनी ग्राम पटेवर थाना मणिहान जनपद मिर्जापुर कहीं लापता हैं। सीमा देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 23 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है और बाएं गाल पर इनके तिल का निशान है। सीमा देवी के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी का गायन। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंशुमन। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी आशा भोसले और गुलाम अली। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे बेबी कार्न शिशु मक्का की खेती विषय पर डॉक्टर देव नारायण सिंह से सतीश कुमार यादव की बातचीत। इसी कार्यक्रम में अर्जुन यादव और साथी का लोकगीत भी होगा। श्रोताओं इनका गाया लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात उज्ज्वल कुमार सिंह की वार्ता डिजिटल युग में करियर के नए विकल्प। इसी कार्यक्रम में यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना और फिल्म संगीत भी प्रसारित होगा। फिल्म संगीत इसके अलावा आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर

0: व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में अलावा इसके शाम 5 बजे, शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे, शाम 7:31 पर रसरंग में और रात 8:15 पर रस माधुरी कार्यक्रम में। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सखियों के साथ

0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सखियों के साथ

0: बंगाल मशरकी हिस्सों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। साथ ही महकमे ने 19 और 20 मई को रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में दिन के वक्त कुछ मकामात पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दरमियान रियासत में लगातार बढ़ रही जबरदस्त गर्मी और लू के मद्देनजर वजीर आला ने इंतजामिया को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। वजीर आला ने अस्पतालों में अदवियात, बेड और डॉक्टरों की दस्तियाबी को बरकरार रखते हुए एम्बुलेंस सर्विसेज को फ़ाल रखने की भी हिदायत दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 241.5 शर्मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। उसके पहले ये संदेश।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658
7: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: सखियों के साथ,
1: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को सुरेखा का प्यार भरा नमस्कार, और सोनी तुम्हें भी हमारा नमस्कार।
5: सखियों को सोनी का प्यार भरा नमस्कार, और सुरेखा आपको भी नमस्कार।
4: कैसी हैं?
5: अच्छी हूँ, लेकिन बाहर धूप तो बहुत है और गर्मी भी बहुत है।
4: हाँ, गर्मी बहुत है और अभी गर्मी बहुत बढ़ेगी भी, है ना? तो ऐसे समय में आवश्यकता है अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का, और सबसे ज़्यादा ध्यान उनका रखना है जो हमारे छोटे बच्चे हैं ना।
5: हाँ,
4: उनका तो ध्यान रखना ही है, लेकिन एक और मामले में ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के हिसाब से तो हम पूरी कोशिश करते हैं, माएँ जो है पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, लेकिन जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दिए हैं, जिनके अभी रिजल्ट आउट हुए हैं, तो उसमें कुछ ऐसा है कि किसी के तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं और किसी किसी का कभी कभी उम्मीद से कम नंबर।

0: आ जाता है, तो उन बच्चों को ऐसा लगता है ना थोड़ा सा कि नहीं मेरा तो और अच्छा नंबर आना चाहिए था पर आया नहीं। तो माता पिता की क्या जिम्मेदारी होती है?
1: देखिए सुरेखा जी, ऐसा है कि जैसे हम कभी कभी यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे कक्षा में अच्छे नंबर ले आए,
0: हर माता
1: टॉप
0: पिता
1: करें,
0: की इच्छा
1: हाँ
0: होती है।
1: हमारा नाम रोशन करें। लेकिन देखिए ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एक जैसा है, और कभी कभी किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं होता है। जीवन में सफल होने के लिए भावनाएं, समाज की समझ और मुश्किल हालातों से लड़ने का जज्बा ज़्यादा काम आता है। पर हम मशीनी दौर में भाई जी रहे हैं, चल रहे हैं, और कंपटीशन का भी दौर है। तो ऐसे में हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाए, अच्छी जगह पे जाएं, अच्छे, ताकि उनके द्वारा उनके सपने पूरे
0: बिल्कुल,
1: हों।
0: आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा
1: जी
0: बढ़ गया है,
1: जी
0: तो हर माता पिता की इच्छा तो होती ही है, लेकिन मैं ये भी बताऊं आपको कि हर बच्चे की अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं।
1: जी हाँ
0: कोई आवश्यक नहीं है कि बच्चा अगर बहुत अच्छा नंबर नहीं पा रहा है तो वो अच्छा नहीं है। हो सकता है वो खेल में अच्छा हो सकता है कला में अच्छा हो, संगीत, विज्ञान, या उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, या कोई रचनात्मक सोच वाला बच्चा हो। तो ऐसे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आप बहुत अच्छा नंबर पाए हैं तो ही आप आगे कुछ कर सकते हैं। हाँ,
1: लेकिन
0: ज्ञान होना चाहिए,
1: हाँ
0: है ना?
1: ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं कि ये नंबर ही है जो हमारी कुशलता का परिचय है। स्कूली रिकॉर्ड जो होते हैं वही हमें पता लगता है कि ये हमारा, यही हमारा, मतलब कि ये है स्कूली रिकॉर्ड ही हमारे जैसे कुशलता का परिचय। लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर कोई बच्चा असफल भी हो जा रहा है तो असफल होने होना भी कोई आखिरी रास्ता नहीं है, वो तो एक सुधार की प्रक्रिया है कि भाई हम आगे, अगर आज हम फेल हो गए तो आगे और सीख कर हम ज़्यादा बेहतर अच्छा कर सकते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और जब कहीं कोई गिरता है ना तभी वो आगे उठता है,
1: जी
0: तो इसलिए बच्चों की प्रतिभाओं को कभी भी अंकों से नहीं आंकना चाहिए। हो सकता है उसकी परिस्थिति कुछ और हो, उसके ऊपर कुछ मानसिक दबाव हो, या फिर उसके सोचने का तरीका कुछ अलग हो, इस वजह से उसको आता तो बहुत कुछ है लेकिन लिख ना पा रहा हो। पर धीरे धीरे वो चीज़ें विकसित की जा सकती हैं। और ऐसे ही है ना कि बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बहुत सारी आदतों को सहेज के रखना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल
0: और उसी सहेजने से मुझे कुछ बात ये याद आती है कि आज कुछ विशेष बहुत खास दिन है।
1: जी, आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी है। और ऐसे में जो हमारी पुरानी यादें हैं, पुरानी धरोहर है, हमने सहेज कर उसे, हमारे इतिहास के जो चीज़ें हैं उनको सहेज कर रखा जाता है। हमारे सामान या हमारे पुरखों की दादी, हमने पहले भी, हम अपने घर में भी
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही
0: बिल्कुल।
1: रखते थे। तो राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया जिसमें हमारे सारे धरोहर को संग्रह करके रखा गया है।
0: और इसका उद्देश्य दुनिया भर के संग्रहालयों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना है।
1: जी, और सुरेखा जी, भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय के नाम से जाना गया, इसका उद्घाटन 15 अगस्त 1949 को नई दिल्ली में किया गया था। और संग्रहालय को 5 बुनियादी प्रकारों में बनाया गया था, जैसे
0: और इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है।
1: जी
0: महत्व ऐसे है कि अगर हमें अपने इतिहास के बारे में जानना है तो
1: हाँ
0: निश्चित रूप से संग्रहालय की ओर बढ़ना होगा।
1: जी
0: हमें अपनी कला और संस्कृति के बारे में जानना है तो निश्चित रूप से संग्रहालय की ओर बढ़ना होगा। और हमें कोई रिसर्च करना है, अपने और पीछे के बारे में जानना है तो संग्रहालय की तरफ बढ़ना होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि आज आपके पास जो चीज़ है उसे संरक्षित रखिए और अपने बच्चों के अंदर भी ये आदत डालिए कि अपनी पुरानी चीज़ों को कुछ कुछ संरक्षित रखें। इसी की वजह से आप अपने परिवार का भी इतिहास जान पाएंगे
1: जी
0: और अपने देश का इतिहास तो खैर संग्रहालय की वजह से हम जानते ही हैं, और सांस्कृतिक विविधता और समझ को बढ़ावा भी देता है ये
1: जी
0: संग्रहालय।
1: और दिवस मनाने का देखिए ये भी निर्णय लिया, मतलब उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का, जैसे लोगों को चीज़ें आपने बताया ना कि महत्व को समझाना, तो खुद भी समझना और लोगों को भी समझाना है। और इसके लिए जन जागृति फैलाने के लिए ये दिवस मनाया गया ताकि हम अपने इतिहास को याद रखें।
0: समझ सके, उसे याद
1: हाँ
0: रखें तो
1: जी
0: ठीक है। ये जन जागरण तो हम भी अपनी बहनों को दे रहे हैं और कर रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन एक गीत की भी हो जाना चाहिए ना।
1: हाँ जी
0: तो चलिए बहनों, आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: सुरेखा, गीत तो बहुत ही अच्छा था।
1: और देखो ये गीत जो है ना वो बहनों को भी बहुत पसंद आया होगा।
0: हाँ
1: लेकिन पता है सोनी, ये गीत संगीत और हमारा जो डेली रूटीन है जिसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छे से खुश मन से करना चाहिए, ये कभी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, खास तौर से हम महिलाओं के साथ। और वो इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं में जो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी होती है ना, कुछ
0: जी
1: कुछ कहीं कहीं ज़्यादा होती है। जैसे
0: जी
1: अगर हम आज एक समस्या की बात करें, जैसे एनीमिया, वैसे कहते हैं कि महिलाओं में एनीमिया की समस्या थोड़ा ज़्यादा रहती है। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए तो आपको हीमोग्लोबिन थोड़ा कम

0: तो रहता ही है, लेकिन अगर ज्यादा कम है तो
1: चिंता की बात है।
0: चिंता की बात है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें?
1: उसके लिए हम सखियों को एक बातचीत सुनवाते हैं और महिलाओं में एनीमिया की समस्या, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर माधवी परमार से इला पांडे की बातचीत।
2: आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर माधवी परमार उपस्थित हैं। ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हम सभी में खराब लाइफस्टाइल के कारण कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ता जाता है। बच्चे हो या बुजुर्ग, या महिलाएं हो या पुरुष, किसी न किसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। और एक ऐसी समस्या है जो महिलाओं में बहुत कॉमन है, वो है एनीमिया की समस्या। तो महिलाओं में एनीमिया की समस्या बहुत ज्यादा है। इसी विषय पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर माधवी परमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या है, ये महिलाओं में ही क्यों सबसे ज्यादा होता है?
3: जैसे आप बता रहे, महिलाओं में ही सबसे ज्यादा होने का रीजन पहला तो ये है कि महिलाओं में ही पीरियड की एक जो हमारी बनावटी रचना है शरीर की, वो दिक्कत नहीं बोल सकते, हमारा एक सिस्टम का पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें हर महीने जो लेडीज है एक 3 से 5 दिन तक पीरियड मेंसेस के दौर से गुजरती है, जिसमें कुछ अमाउंट में वो ब्लड लॉस करती है, जिसकी वजह से उसमें खून की कमी नॉर्मल लाइफस्टाइल में रहती ही रहती है। दूसरा, हमारा जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रहता है, ज्यादातर इंडिया में महिला है, बच्चे, बूढ़े, सब एक लोअर स्टेटस में जीते हैं, जिसमें उसको खाने पीने की चीजें से लेकर कुछ अज्ञानता भी रहती है, जो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें अल्टीमेटली उसमें अनेमिया पैदा कर देती है।
2: अच्छा, तो ये इसके लक्षण क्या है? मतलब महिलाएं कैसे जाने कि वो एनीमिक हो गई हैं, उनके शरीर में खून की कमी है?
3: जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो लेडीज में नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और अगर मेल की हम बात करें तो वो 13 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर उसका नॉर्मल रेंज है। अगर महिलाओं में 11-12 से नीचे अगर हीमोग्लोबिन आ रहा है तो हम उसको अनेमिक स्टेट मानते हैं। जब वो बॉर्डर लाइन स्टेट पे होती है तो उसको कोई साइन सिम्टम समझ में नहीं आता है। जब वो 8-7-8 हीमोग्लोबिन के नीचे जाती है तब उसको समझ में आता है, धीरे धीरे वीकनेस महसूस होने लगती है। दूसरा, उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, उसका पूरा बॉडी पेल हो जाता है, मतलब जो पिंकिश टाइप का जो हमारा स्किन टोन होता है वो धीरे धीरे पेल से लेकर येलोइश टाइप में चला जाता है। उसको कुछ मूड स्विंग्स होने लगते हैं, कुछ काम ना करने की इच्छाएं होने लगती है, और जल्दी थकान हो जाती है। ये सारे साइन सिम्टम्स जो है वो अनेमिया के साइन सिम्टम्स है।
2: अच्छा, बाल झड़ना भी क्या एनीमिया के ही लक्षण है?
3: हाँ, अनेमिया के लक्षण में वो काउंट कर सकते हैं, पर जब बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन या तो मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है, तब बाल झड़ना स्टार्ट
2: तो
3: होता
2: आंखों पे
3: है।
2: भी इसका असर होता है
3: बिल्कुल
2: जैसे
3: असर होता है, जैसे
2: मेंटल
3: हमारा हीमोग्लोबिन कम होगा, दूसरे मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी साथ में लेकर होगा, तो
2: जी?
3: आंखों में भी धुंधलापन होना या रात के समय में ना दिखना, ये सारी चीजें उसके साथ हो सकती है।
2: अच्छा, ये कितने प्रकार का होता है?
3: जनरली अनेमिया 3-4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मेन आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया होता है, उसमें दूसरा एक आता है मल्टीविटामिन्स में फोलिक एसिड या B12 डेफिशिएंसी अनेमिया,
2: अच्छा,
3: तीसरा होता है जन्मजात, जैसे आपने सुना होगा कभी कभी थैलेसीमिया जन्मजात ही होता है, मेजर और माइनर दोनों प्रकार के होते हैं। जो माइनर प्रकार है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कुछ लेवल से कम रहती है, वो कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले, पर वो उसके ऊपर नहीं जा पाता है। जनरली वो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, उसको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर अगर थैलेसीमिया मेजर होता है तो उसका एक ही इलाज है, डेली, मतलब रूटीनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसे बच्चों में अपने आप खून नहीं पड़ता है बनावटी खामी की वजह से, उसको सिर्फ और सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही आगे सर्वाइव करना पड़ता है। दूसरा, जो मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी और आयरन की डेफिशिएंसी, मेन आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया हमारे मेजोरिटी जितने भी केसेस है अनेमिया के उसमें 60% डेफिशिएंसी की वजह से ही अनेमिया पैदा करता है।
2: अच्छा, जैसे कुछ मरीजों में जैसे क्रॉनिक बीमारी जिनको है, या फिर किडनी की समस्याएं हैं, या थायराइड की समस्या है, तो क्या ऐसी समस्या होने पे भी एनीमिक हो जाते हैं लोग?
3: जनरली थायराइड की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता है, पर अगर किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से है और फेलर रीनल फेलर की ओर जो मरीज़ जा रहा है, जिसको डायलिसिस की बार बार ज़रूरत पड़ती है, ऐसे पेशेंट में आमतौर पे अनेमिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि डायलिसिस में भी ब्लड लॉस होता है। दूसरे जो पेशेंट होते हैं क्रॉनिक बीमारी, जिसको अपने आँत रिलेटेड दिक्कत होती है, जिसको इंटरनल ब्लीडिंग की दिक्कत रहती है, जिसको लेटरिन जाने

0: पर खून गिरता है, जिसको पाइल से हेमरॉइड्स की दिक्कत रहती है, जिसमें लगातार थोड़ा थोड़ा थोड़ा खून गिरता रहता है, ऐसे पेशेंट में अनिमिया डेवलप हो जाता है ब्लड लॉस की वजह से।
1: अच्छा, जो महिलाएं मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं, तो क्या उनके अंदर भी, क्योंकि उनका तो मासिक धर्म आना बंद हो गया, तो क्या एनीमिक वो हो सकती हैं या फिर ये समस्या खत्म हो जाती है?
0: जनरली नहीं होती है, जैसे ही एक लेडीज मेनोपोज में एंटर करती है, उसको धीरे धीरे मतलब उसका बॉडी हीमोग्लोबिन गेन करना स्टार्ट कर देता है, तो तब जाके उसकी हेल्थ थोड़ा मतलब हेल्दी हो जाती है और
1: ठीक हो जाता
0: अनेमिया
1: है।
0: डेवलप मतलब मिटना स्टार्ट होके मतलब नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना स्टार्ट कर देती
1: अच्छा
0: है।
1: अच्छा इसकी जांच कैसे कराई जाए?
0: जनरली जो हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकता है जिसमें हमें ऐसा पता चले कि उसको अनेमिया हो सकता है, अगर ये सारे साइन सिम्टम्स में किसी महिलाएं बच्चे या एडोलसेंट जो गर्ल्स वगैरह है ऐसा कोई भी साइन सिम्टम्स लगता है, तो पहले नजदीकी जनरल फिजिशियन गायनेकोलॉजिस्ट या उसके जो फैमिली में डॉक्टर्स है उसका कंसल्ट करना चाहिए। सिंपल एक ब्लड रिपोर्ट से कंप्लीट ब्लड सेल काउंट CBC का रिपोर्ट होता है, जो करने पर हमें पता चलता है कि खून की मात्रा कितनी है, उसके अंदर रेड ब्लड कितने हैं, व्हाइट ब्लड्स कितने हैं, कितनी उसकी आयरन डेफिशिएंसी है नहीं है, सब एक ही रिपोर्ट से उसको पता चल जाएगा। बहुत महंगा भी नहीं होता है, 100 से 150 रुपये में ये रिपोर्ट हो जाता है और उसी से हम डायग्नोसिस करते हैं कि मरीज को अनेमिया है या नहीं है या तो किस प्रकार का अनेमिया है। अगर इसमें हमें कुछ डाउट लगता है या आगे रिपोर्ट्स कराना पड़ता है, थैलेसेमिया का है, सिकल सेल अनेमिया का है या फिर कोई भी रिपोर्ट्स जो जन्मजात खामी में भी दिखाई देता है, तो वो नेक्स्ट लेवल पे आएगा जिसमें बीटा इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, HPLC टेस्ट हो गया, वो बाद में कराए जाते हैं।
1: यानी कि अगर ऐसे कोई लक्षण है इसमें कि चलते समय सांस फूल रहे हैं, आंखों से धुंधला दिख रहा है या वीकनेस महसूस हो रही है, तो एक बार ब्लड टेस्ट जरूर
0: जरूर
1: कराना
0: कराना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: हाँ, हमारी बहनें हैं, बहुत लापरवाह भी होती हैं, वे घर का सबका ख्याल करती हैं और अपने भी ध्यान नहीं रखती हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। अच्छा, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे हमारी महिलाओं को कि वो डाइट में क्या शामिल करें कि वो घर पे ही इस चीजों को पूरा कर सकें?
0: जो बच्चिया है, जो लेडीज है, उसको खाने में हरी पत्ती वाली सब्जी ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए, ग्रीन सलाद ज्यादा खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन वगैरह ज्यादा मिले, जैसे नॉनवेज खा रहे तो अंडा वगैरह खा लिया, अगर नॉनवेज नहीं खा रहे तो स्प्राउट्स वगैरह बना के खा लिया, पनीर खा लिया, छीना खा लिया, ये सारी चीजें खानी चाहिए। जनरली हीमोग्लोबिन यानी कि जो हमारा खून है दो पार्ट से बनता है, एक हीम होता है, एक ग्लोबिन होता है। हीम जो बनता है आयरन से बनता है, मतलब हमारे खाने में आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो भी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो भी अनेमिया होगा। ग्लोबिन होता है प्रोटीन से बनता है, अगर हमारे खाने में प्रोटीन की कमी होगी तो भी वो हीमोग्लोबिन कम कर देगा हमारा। अगर हम ये सारी चीजें बैलेंस डाइट में खाएंगे तभी हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ये सारी चीजों के साथ साथ अगर जो जिसको ज्यादा वीकनेस वगैरह रह रही है उसको CBC का रिपोर्ट करा के आयरन की टेबलेट स्टार्ट करनी है, साथ में विटामिन सी जिसमें मिलता है वो खाना खाना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो गट्स है उसमें हीमोग्लोबिन आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है हीमोग्लोबिन बनने के लिए वो विटामिन सी के हेल्प से ही होता है। इसीलिए जनरली हम जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको आयरन की टेबलेट एडवाइज करते हैं, तो बोलते हैं कि आप नींबू पानी के साथ लीजिए ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए और उसके आपका जो बेनिफिट है बहुत ज्यादा अच्छे से मिले। खाना खाने के साथ नहीं लेना चाहिए आयरन की टेबलेट,
1: अच्छा
0: चाय कॉफी पीने के बाद तुरंत नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देती है।
1: अच्छा
0: आप गोली 100% ले रहे हैं पर उसमें से एब्जॉर्प्शन अगर 10-15% ही हो रहा है तो वो आपको नुकसान ही करेगी, मतलब इतना फायदा नहीं करा पाएगी। अगर हम खाना खाने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद ले रहे हैं, नींबू पानी के साथ ले रहे हैं, तो हो सकता है वो 70-80% एब्जॉर्प्शन करे और हमारी जो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी डेवलप हो रही है उसको मिटाने में वो मदद कर सकती है।
1: अच्छा मैंने देखा, अक्सर सुना है मैंने कि आयरन की दवाइयाँ खाने से या फिर इसके सप्लीमेंट जो, या फिर कोई फल खा रहे हैं आयरन वाले ज़्यादा, तो उससे कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, क्या ऐसा होता है?
0: फल खाने की वजह से तो नहीं होता है पर कुछ कुछ आयरन की टेबलेट होती है उसमें बहुत अलग अलग सॉल्ट रहते हैं, फेरस एस्कॉर्बेट रहता है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टेज रहता है, फेरस ऑक्साइड रहता है, ये सारे जो अलग अलग सॉल्ट है उसमें से कुछ कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कंस्टिपेशन करने में मदद करता है। अब थोड़ा सा रिसेंट एडवांस में डेवलपमेंट के साथ जो नई दवाई आ रही है वो लाइपोजोमल टेक्निक से आ रही है, जिसमें वो एक लाइपोजोमल लेयर गोली के आसपास कवर करके फिर देते हैं ताकि वो जो जहां पे एब्जॉर्ब होना है वहां जाके ही वो लेयर ओपन हो और सीधा वहां से एब्जॉर्प्शन हो जाए तो कंस्टिपेशन
1: यानी
0: की
1: कि
0: हाँ
1: हाँ,
0: कम
1: अभी जो
0: रहती है।
1: मेडिसिन आ रही है उससे
0: हाँ
1: ये समस्या नहीं
0: हाँ
1: होती
0: उससे
1: है,
0: समस्या काफी हद तक कम हो
1: कम हो
0: चुकी
1: गई।
0: है।
1: अच्छा, और एक सबसे जरूरी सवाल कि

0: अक्सर लोग होता है कि एनीमिक हो गए हैं तो कहीं ना कहीं से कोई सप्लीमेंट खाना शुरू कर देते हैं, या फिर होम्योपैथिक दवाएं या आयुर्वेद की, या फिर किसी से बिना पूछे बहने हमारी आयरन की गोलियां लेना शुरू कर देती है, तो क्या ये कितना सुरक्षित है?
1: देखिए, ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, पर कुछ ऐसे पेशेंट है जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया माइनर, जिसमें मरीज को पता नहीं होता है कि उसको ये बीमारी है जब तक जांच नहीं होती है। आप पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्टेशन कराए, रिपोर्ट जांच कराए, जिसमें क्लियर हो जाए कि बस आपको आयरन डेफिशिएंसी एनेमिया है या मल्टीविटामिन से हो रहा डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा एनेमिया है, तब जाके आप अगर वो दवाई स्टार्ट करेंगे वो आपको फायदा भी करेगी, रिलीफ भी देगी। अगर आपको थैलेसीमिया माइनर है, सिकल सेल एनेमिया है और आपने अपने हिसाब से दवाई स्टार्ट कर दी, तो वो ड्रग जो आप ले रहे उसकी वो ओवरडोज और टॉक्सिसिटी कर सकता है, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। क्योंकि जो थैलेसीमिया माइनर, मेजर और सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट है, उसमें आयरन की टेबलेट फायदा नहीं करती है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही हेल्प कर सकता है। तो उसको खाने पीने से जितना मिल रहा है उतने में ही मतलब संतुष्ट रहना है। एक्सेसिव अमाउंट में आयरन टेबलेट या जो इंजेक्शंस आते हैं आयरन के, वो लगाने से उसको टॉक्सिसिटी और रिएक्शंस वगैरह हो सकते हैं।
0: यानी कि जो भी मेडिसिन खानी है, गोलियां खानी है, डॉक्टर के सुझाव से होकर खाएं और प्रॉपर अपने इसका जांच कराने के
1: जांच
0: बाद
1: कराने
0: ही,
1: के
0: अगर
1: बाद ही
0: जरूरत हो तभी खाएं,
1: बिल्कुल।
0: और वरना खान पान तो हम लोगों का है ही है, हम लोग अपने खाने पीने को सुधार करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा केस ऐसे सुनाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि हर दूसरे घर में कोई एक महिला जो एनीमिक मिलती है, तो कुछ सरकार इस पे काम कर रही
1: जी
0: है?
1: बिल्कुल। सरकार की तरफ से एनीमिया मुक्त भारत एक कैंपेन चल रहा है, जिसमें वो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में जो एडोलसेंट गर्ल्स स्टडी कर रही है उसको डेली आयरन टेबलेट देना या वीकली आयरन टेबलेट देना, ये वो लोग सरकार अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस जो आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह है, वो अपने एरिया में जितनी भी सगर्भा महिला है उसको डेली आयरन टेबलेट देना, प्रोवाइड करना, साथ में अच्छा पौष्टिक खुराक जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सगर्भा महिलाओं को प्रोवाइड करते हैं, और वो निश्चिंत करते हैं कि वो लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप में हीमोग्लोबिन टेस्टिंग वगैरह जो हमारे फीमेल हेल्थ वर्कर्स वगैरह गवर्नमेंट में काम करते हैं वो करते रहते हैं। अगर उसमें कोई ऐसी महिला है उसको मिलती है जिसका हीमोग्लोबिन कुछ लेवल से कम आ रहा है, तो उसको वो अपने हिसाब से आयरन की टेबलेट ज्यादा देना, हायर सेंटर रेफर करना, या उसकी अगर डिलीवरी अनेमिया की वजह से हाई रिस्क बन रही है तो उसको टर्शरी केयर सेंटर तक पहुंचाना और सुरक्षित डिलीवरी कराने तक का काम करती है गवर्नमेंट।
0: अच्छा, यानी सरकार की तरफ से भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, तो बहनें अगर कार्यक्रम सुन रही होंगी तो आप भी इस तरह की योजनाओं से लाभ उठा सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही हैं, और वैसे भी आप जितना अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे आपका स्वास्थ्य उतना ही बेहतर रहेगा। डॉक्टर माधवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई।
1: थैंक यू सो मच।
2: मैंने अभी सुन रही थी बातचीत। बातचीत का विषय था महिलाओं में एनीमिया की समस्या, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर माधवी परमार से बातचीत कर रही थी इला पांडे। सोनी, देखो, अगर आयरन की कमी हो
0: जी
2: तो एक और उपाय मैं जानती हूँ,
0: बिल्कुल
2: घरेलू,
0: बताइए।
2: जैसे हम
0: जी
2: हमेशा बहनों को बताते रहते हैं, जिसका शायद हम लोग ध्यान कम दे पाते हैं। अगर मुझे अपने दादी नानी के ज़माने की बातें जब याद है तो मुझे लगता है ना कि उस समय जो सब्जी बनाई जाती थी ना
0: जी
2: वो लोहे की
0: लोहे
2: कढ़ाई
0: की
2: में
0: कढ़ाई
2: बनाई
0: में
2: जाती थी, और अब जो है कभी कभी हम जो कढ़ाई बदल देते
0: हाँ जी,
2: हैं तो वो ठीक नहीं है। आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाइए ना, तो उससे
0: स्वादिष्ट
2: देखिए
0: भी होती है और हमारे लिए फायदा भी है।
2: बिल्कुल स्वादिष्ट भी है और फायदेमंद भी है। तो इस तरह की छोटे छोटे टिप्स बहनों हम सभी अपना सकते हैं, पुरानी बातों को फिर से अपना करके, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य में इजाफा भी होगा और हमें लगता है कि अगर सच है कि अगर अलर्ट रहें तो हमें कोई समस्या
0: बहुत हद तक
2: शायद
0: हम
2: हो ही
0: बीमारी को
2: ना,
0: कम कर
2: हो ही
0: सकते
2: ना।
0: हैं
2: बिल्कुल
0: जी।
2: सही बात है। और मुझे तांबे से याद आया, लोहे के बर्तन से कि लोहे के बर्तन में जब सब्जी बन जाए ना तो उसको साफ करना भी बड़ी एक टेढ़ी खीर होती
0: जी
2: है कि नहीं?
0: हाँ,
2: लोहे का बर्तन हो,
0: तांबे
2: पीतल
0: का
2: हो,
0: हो
2: तांबा हो, ये
0: जी
2: सब अगर पानी, जिसे कहते हैं ना पानी, अगर रख लीजिए, जैसे जब हम पूजा करते हैं तो तांबे के लोटे में जब जल रख देते हैं
0: हाँ, तो वो दाग से पड़
2: तो
0: जाते हैं
2: हाँ,
0: काले
2: तो वो
0: काले।
2: काला होने लगता है, उसको सफाई करने में भी बड़ी परेशानी होती है।
0: तो लेकिन सखियों को हम कुछ टिप्स बताते हैं ताकि इससे हमारा जो तांबा और पीतल का बर्तन है वो साफ हो जाए। इन बर्तनों

0: को सुरेखा जी आप नींबू और नमक की सहायता से साफ कर सकती हैं, और एक नींबू पर जैसे नमक डालकर उन बर्तन पर रगड़ें जिससे पीतल का कालापन हट जाएगा, और इमली का भी उपयोग कर सकती हैं। हाँ, और सिरका और बेकिंग सोडा मिलाकर भी पेस्ट बनाकर हम इसे अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। और साफ करने के साथ साथ देखिए बर्तनों को धोने के बाद तुरंत इसे सोख मतलब पोंछ देना
1: हाँ, वो
0: है।
1: आप बहुत अच्छी बात बता रही हैं सोनी, लेकिन तुम्हारी मैं तारीफ नहीं करने वाली। तुम ये नहीं समझना कि मैंने बहुत अच्छी बातें बताई सुरेखा को और अपनी सखियों को, तो मुझे बहुत तारीफ मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है बताना। तो सखियों, अपनी तारीफ की
0: उम्मीद
1: उम्मीद ना करें, अपने जैसे
0: नहीं
1: कहते हैं ना, कर्तव्य समझ कर अपना काम करें। लेकिन घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए और हमें यहां से चलना चाहिए। तो बहनों, अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम, और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं अर्जुन यादव और उनके साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये कहरवा।

किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ वेव्स OTT पर। दिन के 2 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे अर्जुन यादव और उनके साथी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, ऑप्टिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री

0: ശ്രീപദ് കീശപത്
1: ഞാൻ വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं. इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं. नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं. शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी. इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी. राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है. राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे. एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है. ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है. ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है. ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी. मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है. केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती.
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृतकाल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी.
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में

0: महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये

0: अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
1: मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज, वेव्स OTT पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज कार्यक्रम लेकर हाजिर आपका रेडियो दोस्त अनुपम, आप सभी को हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 7905519981, यानी कि 7905519981। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है और व्हाट्सएप संदेश जो श्रोता एक बार आज भेज दें, अगला संदेश अगले कार्यक्रम में भेजेंगे, ऐसी हमारी गुजारिश है। तो कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे गंगा हमार माई फिल्म का गीत।

तो ये संदेश आने शुरू हो गए हैं। ये संदेश भेजा है सबसे पहले जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल ने, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। गांव गहमर पकड़ी तर हनुमान मंदिर चांदनी चौक से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ जायसवाल और समस्त जायसवाल परिवार। ये संदेश भेजा है राम सकल चौधरी ने चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदिबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोनी प्रजापति, राहुल प्रजापति करोता वाराणसी से। इमिरती यादव ग्राम भट्टी पोस्ट अकल दिया चंदौली से। असगर अली अशोक कुमार प्रजापति शिवपुर वाराणसी से। ग्राम पंचायत भटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा। छत्तीसगढ़ चूड़ीलैन मंगोली से मोहम्मद इशाहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा। चोचकपुर गाजीपुर से भास्कर दुबे। कुटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। ग्राम बहुआरा पोस्ट दिलदारनगर जिला गाजीपुर से अकलू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य। राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। डांडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का भी मेल संदेश हमें प्राप्त हुआ है। ग्राम चकफुटे असनाव बाजार जिला भदोही से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव। पद्मा टाकिश नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। मुजफ्फरपुर बिहार

से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी। गांव फरांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल, पिंकी जायसवाल का भी संदेश हमें मिला है। और भी संदेश हम सर्च कर रहे हैं, ये संदेश हमें भेजा है काली माता मंदिर दिलदार नगर गांव जिला गाजीपुर से श्री किशन सिंह कुशवाहा और छविनाथ शर्मा ने। अमितेश कुमार तिवारी करनई बलिया से, रमेश कुमार विश्वकर्मा, पूनम, प्रियांशु, प्रीत, प्रांजल, प्रकृति, शनि, सागर, दीपा, दीपेश ग्राम मेहंदीगंज मड़ई पोस्ट राजा तालाब वाराणसी से। भोपालगढ़ राजस्थान का संदेश रिपीट हो रहा, ऐसा ना करें। और कार्यक्रम में अगला गीत इसके बाद आप सुनेंगे लागी नहीं छूटे राम फिल्म से, तो अभी सुनिए गंगा हमार माई फिल्म का गीत अलका याग्निक और सुरेश वाडकर की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार चित्रगुप्त। इसके बाद आप सुनेंगे लागी नहीं छूटे राम फिल्म का गीत।

आप सुन रहे थे गंगा हमार माई फिल्म का ये गीत। अब सुनिए लागी नहीं छूटे राम फिल्म का गीत, जिसे सुनने के लिए संदेश भेजा है आप सभी श्रोताओं ने। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल बबरी बाजार चंदौली से, विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर से, मुराहो जायसवाल, देवंती जायसवाल चकिया बाजार चंदौली से, सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, रिजवान खान, आयसा सभिया, अनस और रेहान। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, अरब, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, एस के पप्पी खुराना। शिवराम प्रजापति ने संदेश भेजा है सिकरारा जौनपुर से। इटारही रोड बक्सर से असलम मिस्त्री, अक्रम मिस्त्री, इलू मिस्त्री और लल्लू मिस्त्री, शुपुर बागान हावड़ा से रजिया खातून, फरीदा खातून, फातिमा खातून और नवासी बेबी हयात मोइन अंसारी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाहकर, निर्मला नवाहकर, विशाल नवाहकर। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहरकर। काली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़। मोनू पासवान, पुतुल पासवान, अतुल पासवान, बंकू, बादल, कनक पासवान, समस्त पासवान परिवार, ग्राम बखारीपुर, पोस्ट मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से संदेश आपने भेजा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी यूपी से आजंद कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह और प्यारी प्यारी कोकुरानी। भीमपुर भदोई से महेंद्र कुमार, सरिता, सानवी, आशीष, पूजा, सतीश, नीतू, प्रद्युम्न, रत्तू, नंदलाल और लालू। गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा डीह बाबा चौराहा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत, संगीत चित्रगुप्त का, आवाज लता मंगेशकर और तलत महमूद की, और फिल्म का नाम लागी नाही छूटे राम। और इसी गीत के लिए संदेश भेजा है पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह ने। इसके बाद आप सुनेंगे हमार सजना फिल्म का गीत।

0: हाँ भाई, गर्मी तो बहुत पड़ रही है और कहीं ना कहीं बिल्कुल आम का पेड़ का छाँव हो चाहे पीपल की छाँव हो, निश्चित तौर पर छाँव में ही रहिए क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और धूप से बचिएगा तभी तो प्रोग्राम सुनिएगा, है ना। तो अब कार्यक्रम में एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद आप सुनेंगे हमार सजना फिल्म का गीत। तो मिलते हैं आपसे इस अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अंतराल के बाद आप सभी का फिर स्वागत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं हमार सजना फिल्म का गीत, और सुनने के लिए हमें संदेश भेजा है आप सभी श्रोताओं ने चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा निधि, आयुषी और अनुष्का, लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, रिशु, इला और विनस, कनाट प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल, ये संदेश भेजा है कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या एन्द्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति जी, माता जी निर्मला त्रिपाठी, और ये संदेश हमें भेजा है गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराव जायसवाल, देवंती जायसवाल, ग्राम सुआपुर जिला गाजीपुर से दिनेश राम का भी संदेश हमें मिला है, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र वर्मा, नोखेलाल वर्मा, पटेल नगर मुगलसराय से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह का भी संदेश हमें मिला है। आशीष कुमार ने महरो जौनपुर से संदेश भेजा है। रमाशंकर गुप्ता, रामनाथ गुप्ता, यश गुप्ता, अंश गुप्ता, दीक्षा गुप्ता, शगुन गुप्ता ने ग्राम बाघी से संदेश भेजा है। तो आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं हमार सजना फिल्म का गीत, गीतकार विशुद्धानंद, संगीत जतिम श्याम का, आवाज दिलराज कौर और कयूम अहमद की।

श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिखेंगे। प्रतिक्रिया लिखने के लिए हमारा पता नोट कीजिए, pkldaarvaranasi@gmail.com। पता एक बार पुनः सुन लें, pkldaarvaranasi@gmail.com। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ठकुराइन फिल्म का गीत। गीतकार मोती, संगीतकार चांद परदेसी, आवाज अनुराधा पौडवाल और दिलराज कौर की। सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी, आशीष कुमार

रहे हो जैनपुर से, ग्राम बागी पोस्ट नंदगंज जिला गाजीपुर से अच्छे लाल बिंद, चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी। और ये संदेश भेजा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा ने। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। हिंगोली महाराष्ट्र से ये संदेश हमें भेजा है शाहजी बोट के, श्रीमती नंदा बोट के, हनुमान बोट के, उत्तम जमदाड़े। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम सा। लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका और ऋषु। तो आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम के अंत में ठाकुरायन फिल्म का ये गीत।

इस गीत के लिए संदेश भेजा है गांव खारिया ढाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया ने।

इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।

दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही है आज की हमारी पहली सभा। शाम 5 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है आज की संध्याकालीन सभा।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल तो पागल है। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और उदित नारायण की मिलीजुली आवाजों में।

आशा भोसले, उदित नारायण की युगल आवाज़ों की युगल आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे दिल तो पागल है फिल्म का ये प्यारा सा गीत। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: बल्कि अपनेपन का साथ भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां रिश्तों में अपनापन होता है वहां मन खुश रहता है, और खुश मन ही स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनता है।
1: हाँ, जैसे अभी ही आप सभी हमें सुन के खुश हो रहे होंगे, है ना साथियों? और जो साथी अभी भी अनुमान ही लगा रहे हैं या फिर हमें नहीं पहचान पाए, फिर नए हैं, उन्हें हम बता दें कि भाई आप सभी के साथ कार्यक्रम में आज हूं मैं यानी कि सौरव।
0: और मैं यानी दिव्या, तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में अगर अपने लोगों का साथ मिल जाए तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। कभी दोस्तों की हंसी थकान मिटा देती है तो कभी परिवार का भरोसा टूटते हुए हौसले को संभाल लेता है। सच ही कहा गया है, खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, दोस्त और परिवार सिर्फ रिश्ते नहीं होते बल्कि जिंदगी का वो सहारा होते हैं जो हर परिस्थिति में इंसान को मजबूत बनाए रखते हैं। एक अच्छा दोस्त कई बार दवा से ज्यादा असर कर जाता है और परिवार का साथ इंसान को अंदर से सुरक्षित महसूस कराता है।
0: और शायद यही वजह है कि आज डॉक्टर और विशेषज्ञ भी कहते हैं कि अच्छा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छे रिश्तों से जुड़ा होता है। जो लोग अपने परिवार और दोस्तों के करीब रहते हैं, वे तनाव, अकेलापन और चिंता जैसी समस्याओं से बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं।
1: यानी स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अच्छी दवाइयां और खान पान ही नहीं,

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 0542227658।
3: ओ
2: 0542227658।
3: लो अभी फोन लगाता हूँ।
2: 0542227658।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
7: दोस्तों, स्वस्थ समाज की नींव दवाइयों से नहीं, समय पर टीकाकरण से मजबूत होती है। कहते हैं कि जब बीमारी दरवाजा खटखटाए, उससे पहले सुरक्षा दस्तक दे, यही है टीकाकरण।
8: बिल्कुल। और दोस्तों, आज है 18 मई और आपको बता दें कि विश्व एड्स टीकाकरण दिवस हर वर्ष आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य HIV या एड्स के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों के प्रति लोगों को जागरूक करना और वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और स्वयंसेवकों के योगदान को सम्मान देना है।
7: बिल्कुल। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। दोस्तों, अगर समय पर इलाज ना मिले तो यही संक्रमण आगे चलकर एड्स का रूप ले सकता है।
8: सही कहा तुमने सौरभ। हालांकि आज भी HIV की पूरी तरह रोकथाम करने वाली वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन दुनिया भर में लगातार रिसर्च जारी है। वैज्ञानिक ऐसी वैक्सीन विकसित करने में जुटे हैं जो संक्रमण को रोक सके या शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सके।
7: और दोस्तों, यह जानना भी जरूरी है कि HIV किन कारणों से फैल सकता है, जैसे संक्रमित रक्त चढ़ाने से, असुरक्षित शारीरिक संबंधों से, संक्रमित सुई के उपयोग से या फिर संक्रमित माँ से बच्चे में।
8: वहीं हाथ मिलाने, साथ बैठने, खाना साझा करने या फिर गले मिलने से HIV नहीं फैलता, इसीलिए हमें जागरूकता के साथ साथ संवेदनशीलता भी अपनानी चाहिए और HIV संक्रमित लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।
7: बिल्कुल दिव्या, आज चिकित्सा विज्ञान ने काफी प्रगति की है। दोस्तों, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ARD की मदद से HIV संक्रमित व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है।
8: और यही वजह है कि समय पर जांच, सही जानकारी और जागरूकता बेहद जरूरी है। युवाओं को विशेष रूप से स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षित व्यवहार और नियमित जांच के प्रति जागरूक होना चाहिए।
7: तो आइए इस विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पर हम संकल्प लें, जागरूक बनेंगे, दूसरों को जागरूक करेंगे और वैज्ञानिक प्रयासों का सम्मान भी करेंगे,
8: क्योंकि जानकारी ही बचाव है और संवेदनशीलता ही इंसानियत।
7: जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ जीवन के लिए जागरूकता जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है अपनी जड़ों और विरासत से जुड़ा रहना,
8: क्योंकि एक ओर विज्ञान हमें बेहतर भविष्य की राह दिखाता है तो

0: दूसरी ओर इतिहास और संस्कृति हमें हमारी पहचान से जोड़ते हैं।
1: तो आइए अब स्वास्थ्य जागरूकता से आगे बढ़ते हुए चलते हैं इतिहास, कला और सभ्यता की उस खूबसूरत दुनिया में, जहां बीता हुआ कल आज भी बड़ी शान से सुरक्षित है। कभी कभी एक पुरानी तस्वीर, एक जंग लगा सिक्का या फिर मिट्टी का छोटा सा बर्तन भी इतिहास की इतनी बड़ी कहानी सुना जाता है कि इंसान कुछ पल के लिए समय के पीछे चला जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने सौरभ, और शायद इसीलिए कहा जाता है जो अपनी विरासत को संभाल कर रखते हैं वो अपनी पहचान को जिंदा रखते हैं।
1: दिव्या, आज की तेज भागती दुनिया में लोग अक्सर भविष्य की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अतीत की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं।
0: और संग्रहालय वही आवाज है सौरभ, जहां तलवारें वीरता की कहानी कहती हैं, पुरानी पांडुलिपियां ज्ञान का परिचय देती हैं, और हर कलाकृति अपने समय का आईना बन जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। दोस्तों, हर साल यानी कि 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स यानी कि आईकॉम ने की थी, ताकि लोग संग्रहालयों के महत्व को समझें और अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े।
0: भारत जैसे विविधताओं वाले देश में संग्रहालय सिर्फ इमारतें नहीं होती, बल्कि हमारी पहचान का खजाना होती है। जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय, जहां भारत की हजारों वर्षों के इतिहास की झलक मिलती है, या इंडियन म्यूजियम, जो देश के सबसे पुरानी और प्रसिद्ध संग्रहालयों में गिना जाता है।
1: लेकिन दिव्या, आज के युवाओं के लिए संग्रहालय क्यों जरूरी है?
0: क्योंकि सौरभ, युवाओं के हाथ में सिर्फ मोबाइल नहीं, देश का भविष्य भी है। अगर युवा अपनी संस्कृति, संघर्ष और इतिहास को जानेंगे, तभी वो अपनी असली पहचान समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल। आज सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड्स की रील्स तो सब देख लेते हैं, लेकिन एक संग्रहालय में बिताया गया एक घंटा हमें सदियों का अनुभव दे सकता है।
0: और यही संदेश है आज के युवाओं के लिए, अपनी जड़ों से जुड़िए, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, वही सबसे ऊंचा बढ़ता है।
1: बिल्कुल। अगर मौका मिले दोस्तों, तो किसी संग्रहालय जाइए, अपने दोस्तों और परिवार को भी साथ ले जाइए,
0: क्योंकि इतिहास किताबों में पढ़ने की चीज नहीं, महसूस करने की विरासत है।
1: और याद रखिएगा, जो पीढ़ी अपनी विरासत को भूल जाती है, वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देती है।
0: तो दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर सिर्फ तस्वीरें ना लें, बल्कि इतिहास से सीख भी लें, अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपनी विरासत पर गर्व कीजिए।

0: दोस्तों, समय बदल रहा है और उसके साथ बदल रहे हैं करियर के रास्ते भी। अब सपनों को सिर्फ दफ्तरों की चार दीवारी नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया के खुले आसमान भी नई उड़ान दे रहे हैं।
1: जी हाँ, आज का दौर सिर्फ नौकरी खोजने का नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाने का दौर है। तो आइए सुनते हैं वार्ता जिसका विषय है डिजिटल युग में करियर के नए विकल्प। वार्ताकार है उज्जवल कुमार सिंह।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं उज्जवल कुमार सिंह, डॉक्टरल फेलो, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा भारत, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर। आज के हमारे वार्ता का विषय है डिजिटल युग में करियर के नए विकल्प। दोस्तों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां तकनीक केवल सुविधा का माध्यम नहीं रही, बल्कि उसने शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और जीवन शैली सभी को गहराई से प्रभावित किया है। आज इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, डेटा साइंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कैरियर की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। यदि पहले कैरियर के पारंपरिक विकल्प जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक या फिर सरकारी सेवाएं मुख्य माने जाते थे, तो आज उसके साथ साथ अनेक नए डिजिटल कैरियर तेजी से उभर रहे हैं। आज का युवा अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से वैश्विक स्तर पर काम कर सकता है। आज की इस वार्ता में हम समझेंगे कि डिजिटल युग में कौन कौन से नए कैरियर विकल्प सामने आए हैं, उनमें क्या संभावनाएं हैं और युवाओं को किस प्रकार स्वयं को तैयार करना चाहिए। श्रोताओं, डिजिटल क्रांति ने कार्य करने के स्वरूप को बदल दिया है। खास तौर पर कोविड महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल ने इंटरनेट और तकनीक को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया। आज छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी डिजिटल माध्यम से नए रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में AI, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में लाखों नई नौकरियां उत्पन्न होंगी। कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मीडिया आज का बड़ा करियर विकल्प के रूप में हमारे सामने है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और पॉडकास्ट जैसे माध्यमों ने अभिव्यक्ति को पेशे के रूप में बदल दिया है। आज लाखों युवा वीडियो बनाकर, ब्लॉग लिखकर, ऑनलाइन शिक्षण देकर और पॉडकास्ट तैयार करके आय अर्जित कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति में बोलने, लिखने, अभिनय, संगीत, शिक्षा या कला की प्रतिभा है, तो वह डिजिटल मंचों पर अपनी पहचान बना सकता है। आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक बड़ा उद्योग बन चुका है। कंपनियां अपने उत्पादों के प्रचार के लिए डिजिटल क्रिएटर्स को नियुक्त करती हैं। यह विशेष रूप से उन युवाओं के लिए उपयोगी है जो रचनात्मकता और स्वतंत्र कार्यशैली को पसंद करते हैं। अब दूसरी के बारे में बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। श्रोताओं, पहले व्यवसाय केवल अखबार, रेडियो या टेलीविजन पर विज्ञापन देते थे, लेकिन आज अधिकांश प्रचार ऑनलाइन हो चुका

है। इसी कारण डिजिटल मार्केटिंग सबसे तेजी से बढ़ते कैरियर क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में निम्न कार्य शामिल हो सकते हैं: सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन विज्ञापन, ब्रांड प्रबंधन। आज छोटे व्यापार से लेकर बड़ी कंपनियों तक सभी को डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञों की आवश्यकता है। विशेष बात यह है कि इस क्षेत्र में डिग्री से अधिक कौशल का महत्व है। कई युवा ऑनलाइन कोर्स करके ही इस क्षेत्र में सफल हो रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, आज डेटा को नया तेल कहा जाता है। कंपनियां ग्राहकों की पसंद, व्यवहार और जरूरतों को समझने के लिए डेटा का इस्तेमाल करती हैं। इसी कारण डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मांग तेजी से बढ़ रही है। AI अब केवल विज्ञान तथा कथा का वस्तु विषय नहीं रहा है। आज इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग, शिक्षा, कृषि, परिवहन, मीडिया सभी क्षेत्रों में हो रहा है। चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, भाषा अनुवाद और स्वचालित प्रणालियां AI के उदाहरण हैं। जो युवा गणित, कंप्यूटर और तार्किक विश्लेषण में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह क्षेत्र अत्यंत संभावनाशील है। दोस्तों, जैसे जैसे डिजिटल गतिविधियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये विशेषज्ञ कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को हैकिंग तथा साइबर हमलों से सुरक्षित रखते हैं। आज सरकारी संस्थाएं, बैंक, निजी कंपनियां और यहां तक कि शैक्षणिक संस्थान भी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की नियुक्ति कर रहे हैं। श्रोताओं, डिजिटल युग ने रोजगार की पारंपरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। अब व्यक्ति किसी कंपनी के कार्यालय में जाए बिना भी घर से काम कर सकता है। इसे रिमोट वर्क कहा जाता है। इसी प्रकार फ्रीलांसिंग में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विभिन्न ग्राहकों के लिए कार्य करता है। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट निर्माण और ऑनलाइन शिक्षण जैसे कार्यों में फ्रीलांसिंग के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। इससे युवाओं को समय की स्वतंत्रता और वैश्विक स्तर पर काम करने का अवसर मिलता है। आज लोग कपड़े, किताबें, भोजन और घरेलू वस्तुएं तक ऑनलाइन खरीद रहे हैं। इससे ई कॉमर्स उद्योग तेजी से विकसित हुआ है। युवा आज ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हैं, हस्तशिल्प बेच सकते हैं, डिजिटल उत्पाद तैयार कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यवसाय चला सकते हैं। छोटे स्तर पर शुरू हुआ ऑनलाइन व्यवसाय भी बड़े उद्यम में बदल सकता है। कोविड काल के बाद ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार अत्यधिक बढ़ा है। आज शिक्षक, प्रशिक्षक और विषय विशेषज्ञ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाकर आय अर्जित कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार और शैक्षणिक ऐप्स ने शिक्षा को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। जो लोग अध्यापन में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह क्षेत्र अत्यंत उपयोगी है। डिजिटल कैरियर के लिए आवश्यक कौशल। प्रिय श्रोताओं, डिजिटल युग में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, निरंतर सीखना और स्वयं को अपडेट रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके कुछ प्रमुख कौशल निम्नवत है: डिजिटल साक्षरता, संचार कौशल, अंग्रेजी एवं तकनीकी भाषा का ज्ञान, रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता, टीम वर्क और समय प्रबंधन। इसके साथ ही ऑनलाइन कोर्स और प्रमाण पत्र भी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। हालांकि डिजिटल कैरियर के अवसर व्यापक हैं, लेकिन चुनौतियां भी मौजूद हैं। इसमें अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, तकनीक का तेजी से बदलना, नौकरी की अस्थिरता, मानसिक दबाव, डिजिटल लत, इन सबके बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तकनीक का उपयोग साधन के रूप में होना चाहिए, जीवन का नियंत्रण करता नहीं। जैसे कि क्रिश्चियन लुईस लेंज ने कहा था, टेक्नोलॉजी इज ए यूजफुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। युवाओं के लिए मेरा सुझाव यह होगा कि केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी बनाने वाले बने। नई तकनीकों से डरे नहीं, उन्हें सीखें। इंटरनेट का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और कौशल विकास के लिए करें। अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार क्षेत्र का चयन करें। निरंतर अभ्यास और अनुशासन बनाए रखें। अंत में
मैं आपसे यही कहना

0: चाहूंगा कि आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि डिजिटल युग केवल तकनीकी परिवर्तन का दौर नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संरचना में एक व्यापक परिवर्तन का समय है। आज कैरियर की दुनिया पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक स्तर पर विस्तृत हो चुकी है। इंटरनेट और तकनीक ने अवसरों के ऐसे द्वार खोल दिए हैं जिनकी कल्पना कुछ दशक पहले तक संभव नहीं थी। अब सफलता केवल महानगरों या बड़े संस्थानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की युवा भी डिजिटल माध्यमों से अपनी प्रतिभा को विश्व मंच तक पहुंचा रहे हैं। डिजिटल युग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब ज्ञान और कौशल ही वास्तविक पूंजी है। जिस युवा के भीतर सीखने की जिज्ञासा, स्वयं को निरंतर विकसित करने की इच्छा और बदलते समय के साथ चलने का साहस है, उसके लिए संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। आज एक साधारण मोबाइल फोन भी शिक्षा, व्यवसाय और रोजगार का माध्यम बन चुका है। कोई युवा YouTube पर शिक्षक बन सकता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ, कोई डेटा विश्लेषक, तो कोई ऑनलाइन उद्यमी। अर्थात आज का समय अवसरों का समय है। जो व्यक्ति तकनीक को समझकर उसका सही उपयोग करना सीख लेता है, वह अपने भविष्य को नई दिशा दे सकता है। किंतु इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम तकनीक को केवल साधन के रूप में देखें, साध्य के रूप में नहीं। डिजिटल माध्यम हमें सुविधा देते हैं, लेकिन यदि उनका संतुलित उपयोग न किया जाए, तो वह तकनीक मानसिक तनाव, सामाजिक दूरी और डिजिटल निर्भरता का कारण भी बन सकती है। इसलिए युवाओं को केवल तकनीकी दक्षता ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी साथ लेकर चलना होगा। सफल वही होगा जो तकनीक और मानवीयता दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर सके। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं को निरंतर सीखने की प्रक्रिया से जोड़ें, नई तकनीकों से भयभीत होने के बजाय उन्हें समझें, उनका प्रशिक्षण लें और उन्हें अपनी क्षमता का विस्तार बनाने का प्रयास करें। आने वाला समय उसी का होगा जो परिवर्तन को स्वीकार करेगा और स्वयं को समयानुकूल ढालेगा, क्योंकि डिजिटल युग में स्थिर रहना संभव नहीं। यहाँ निरंतर सीखना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। प्रिय श्रोताओं, भारत जैसे युवा देश के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, डिजिटल कौशल विकसित करें और नवाचार की ओर अग्रसर हों, तो वे केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। डिजिटल इंडिया और तकनीकी प्रगति के इस दौर में युवाओं के सामने असीम संभावनाएं हैं। आवश्यकता केवल आत्मविश्वास, अनुशासन और सतत प्रयास की है। अंततः मैं यही कहता हूं कि कैरियर केवल जीविका का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति की पहचान और उसके सपनों को साकार करने का मार्ग भी है। इसलिए अपने कैरियर का चुनाव केवल भीड़ को देखकर न करें, बल्कि अपनी रुचि, क्षमता और उद्देश्य को समझकर करें। यदि मेहनत, धैर्य और सही दिशा हो, तो डिजिटल युग का प्रत्येक मंच सफलता का माध्यम बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, डिजिटल दुनिया चुनौतियों पर चुनौतियां जरूर लाती है, लेकिन सही कौशल और सकारात्मक सोच के साथ सही दुनिया अनगिनत अवसरों के दरवाजे भी खोलती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है दिमाग का असली गेम, जहां आपका सही जवाब दिलाएगा आपको खास पहचान। और नाम है
2: बिल्कुल क्वेश्चन ऑफ द डे। लेकिन आज के सवाल पर आने से पहले जरा जोरदार तालियां हो जाए उन शानदार साथियों के लिए जिन्होंने कल अपने बेहतरीन जवाब को पीछे बेहतरीन जवाब से सबको पीछे छोड़ दिया।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अब वक्त है हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर्स को बताने का। तो
2: उससे पहले जान लेते हैं कल के सवाल को और उसके सही जवाब को। तो हमारा कल का सवाल आपसे ये था कि आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र की स्थापना किस

0: वर्ष में हुई थी, और इसका सही उत्तर है 1962।
1: जी हाँ साथियों, और सही जवाब देने वाले हमारे साथियों के नाम हैं ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश निकेश, धर्मेंद्र मेघा नंदिनी हर्षिता और ममता बाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज शिवम धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान।
0: तो आप सभी विजेताओं को ढेर सारी बधाइयां, ऐसे ही आगे भी जुड़े रहिए और विनर्स बनते रहिए। और अब दोस्तों वक्त आ गया है आज के नए सवाल का, तो ध्यान से सुनिए। हमारा आज का प्रश्न आपसे ये है कि भारत में FM की शुरुआत कब हुई थी। हमारा प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, भारत में FM की शुरुआत कब हुई थी।
1: तो दोस्तों जवाब तो आपको पता ही होगा कि कहाँ भेजना है। जी हाँ, आप अपना जवाब हमें Instagram youth AIR या हमारे ईमेल youth AIR पर भेज सकते हैं।
0: तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जवाब भेजिए और बन जाइए हमारे अगले क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर। और दोस्तों कहते हैं ना कि जीत सिर्फ नाम की नहीं होती, मेहनत की पहचान भी होती है।
1: तो दिव्या, अब अपना और अपने दोस्तों का कुछ जनरल नॉलेज भी बढ़ाया जाए।
0: बिल्कुल सौरभ, और इसकी शुरुआत अपनी यू डायरी से ही करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिसमें आज का हिंदी शब्द है आवंटन, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु, धन, भूमि, पद या फिर संसाधन को निर्धारित रूप से बांटना या किसी को देना।
1: इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि वितरण, बंटवारा, प्रदान, नियोजन, अविभाजन। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि विद्यालय में छात्रों को छात्रवृत्ति का आवंटन किया गया।
0: और आज का इंग्लिश वर्ड है रेवेनस, जिसकी स्पेलिंग होती है RAVENOUS, और इसका मतलब होता है बहुत भूखा। इट मीन्स एक्सट्रीमली हंग्री और वेरी ईगर और ग्रीडी फॉर समथिंग। सम सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड कुड बी स्टार्विंग, फेमिश्ड, वोरेशियस, हंग्री, ग्रीडी एटसेट्रा।
1: फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, आई वॉज रेवेनस।
0: तो सौरभ, जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो इतिहास की ओर देखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज और कल की नींव, जो हर आज होता है वो हमारे कल की नींव पर खड़ा होता है।
1: बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या कुछ खास हुआ था। आपको बता दें कि आज ही के दिन सन 1848 में जर्मनी में पहली नेशनल असेंबली का उद्घाटन हुआ था,
0: और साथ ही साथ 1912 में पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पांडुलिक रिलीज हुई थी।
1: और दोस्तों आज ही के दिन सन 1974 में राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु बम परीक्षण करके भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में शामिल हो गया। दोस्तों अब बारी रोजगार सूचना की, जो रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB की तरफ से आई है, जिसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सहायक लोको पायलट यानी कि ALP पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती 11,127 पदों के लिए की जा रही है। RRB आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 14 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। और बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: दोस्तों आप सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, कुछ आवाज़ें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वे याद बनकर नहीं बल्कि एहसास बनकर हमारे साथ चलती हैं। एक ऐसा ही एहसास जो कभी गांव की चौपाल में गूंजा, कभी शहरों की बालकनी में, तो कभी देर रात पढ़ाई करते किसी छात्र का साथी बना।
1: वो दौर याद है जब घर में एक रेडियो होना किसी खजाने से कम नहीं होता था। सुबह की शुरुआत भक्ति संगीत से, दोपहर में समाचार, शाम को हवा महल और रात में छाया गीत। पूरा परिवार रेडियो के इर्द गिर्द बैठ जाता था। किसी को गीत सुनना होता था तो किसी को क्रिकेट कमेंट्री का इंतजार होता था।
0: बिल्कुल, आइए अब एक झलक आकाशवाणी के गरिमामयी सफर की। दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से मानी जाती है। इसी के साथ 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी कि IBC ने बंबई और कलकत्ता से नियमित प्रसारण शुरू किया था। आर्थिक कठिनाइयों के कारण 1930 में IBC बंद हो गई, जिसके बाद भारत सरकार ने प्रसारण सेवा अपने हाथ में ले ली।
1: 1930 में इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी ISBS रखा गया। 8 जून 1936 को ISBS का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR रख दिया गया।
0: दोस्तों, विविध भारती पर प्रसारित होने वाला हवा महल और जयमाला जैसे कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय हुए। जयमाला कार्यक्रम में कई बार भारतीय सैनिकों के लिए फिल्मी कलाकार संदेश और गीत प्रस्तुत करते थे। आपको बता दूं कि प्रसिद्ध उद्घोषक अमीन सयानी का कार्यक्रम बिना का गीतमाला रेडियो इतिहास का बेहतर लोकप्रिय शो माना जाता है।
1: आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और साहित्य को संरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। कई बड़े कलाकारों जैसे भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर और बिस्मिल्ला खान की आवाज़ें आकाशवाणी से घर घर पहुंची। समाचार पढ़ने की गंभीर और स्पष्ट शैली ने AIR उद्घोषकों को एक अलग पहचान दी।
0: दोस्तों, आकाशवाणी की प्रसिद्ध सिग्नेचर ट्यून भारतीय रेडियो की पहचान बन चुकी है। इसे संगीतकार वॉल्टर कॉफमन ने तैयार किया था। आज आकाशवाणी अनेक भाषाओं और बोलियों में प्रसारण करती है तथा रेडियो के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय है। और जरा सोचिए, मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, लेकिन फिर भी खबरें हर घर पहुंचती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक

0: रेडियो बज रहा होता था।
1: आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें नहीं दी, इसने संस्कृति को संजोया, लोकगीतों को पहचान दी, नए कलाकारों को मंच दिया और भाषा के मिठास को घर घर पहुंचाया। कितने ही महान स्वर पहली बार इसी मंच से गूंजे और वो नॉस्टैल्जिया आज भी बरकरार है। बारिश की शाम, खिड़की पर गिरती बूंदे, टेबल पर चाय का कप और पीछे धीमी स्वर में बजता रेडियो, यकीन मानिए दोस्तों, ये एहसास की बराबरी आज की कोई प्लेलिस्ट नहीं कर सकती।
0: दोस्तों, 90 साल का ये सफर तकनीक के बदलते दौर का गवाह भी रहा है। रेडियो सेट से लेकर डिजिटल स्ट्रीमिंग तक, माध्यम बदले, समय बदला, लेकिन आवाज का अपनापन नहीं बदला। आज भी जब सुनाई देता है तो मन अपने आप बीते दिनों की गलियों में लौट जाता है। ये आकाशवाणी है। तो आइए इस खास अवसर पर सलाम करें उन सभी आवाजों को जो कभी हमारे सुबह की शुरुआत बनी तो कभी रातों की तन्हाई का साथी, उन उद्घोषकों को, उन तकनीशियनों को, उन कलाकारों को जिन्होंने आकाशवाणी को सिर्फ संस्था नहीं एक भावना बनाया।
1: 90 वर्षों की इस गौरव गाथा को हमारा नमन, हमारा प्रणाम। आकाशवाणी आवाज जो पीढ़ियों से दिलों में बसती आई है।
0: जी हाँ दोस्तों, अब चूंकि घड़ी ने हमें, तो दिव्या, आजकल धूम्रपान को कुछ लोग फैशन स्टाइल या तनाव दूर करने का तरीका समझने लगे हैं।
1: फिल्मों, सोशल मीडिया और दोस्तों के बीच कई बार इसे कूल भी दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है सौरभ कि सिगरेट का धुआं धीरे धीरे इंसान की सेहत को अंदर से खोखला कर देता है। कुछ मिनटों की आदत कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, धूम्रपान सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हृदय रोग, कैंसर, स्ट्रोक और सांस से जुड़ी कई समस्याओं का खतरा भी बढ़ा देता है।
1: और इसका असर सिर्फ धूम्रपान करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसके आसपास मौजूद लोगों को भी इस धुएं से प्रभावित होते हैं।
0: दोस्तों याद रखिए, जिंदगी अनमोल है, इसे धुएं में नहीं, खुशियों और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीना चाहिए।
1: तो अब आपको पता ही है कि हमें भी समय का कद्र करना चाहिए और यह हमारी जिम्मेदारी भी है। तो आज के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही। अब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हर रोज इसी तरह ये वाणी सुनते रहिए।
0: कार्यक्रम में आज आपके साथ था मैं यानी कि सौरभ,
1: और मैं दिव्या।
0: दीजिए हमें इजाजत।
1: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में भयल कैबिनेट की बैठक में लखनऊ मेट्रो के विस्तार के साथ ही 12 गो महत्वपूर्ण प्रस्तावन के मंजूरी दिया गई हो। एगो रिपोर्ट।
2: आज की कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1 बी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चार बाग से वसंत कुंज परियोजना के लिए एमओयू को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा मेट्रो रेल कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। बैठक में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल शिक्षण ब्लॉक तथा नए ओपीडी ब्लॉक के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एक निजी मीडिया संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल भेल। यह मौका पर वहां के कहने की आज उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करौले में सफल भेल हो। प्रदेश में मजबूत नेटवर्क आधार तैयार कल गई बा।

0: और आज रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में यूपी नया पहचान बनौले बा।
1: देश के अंदर अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप टू राज्यों को चयन करना होगा उसमें से यूपी एक होगा। एक्सप्रेस वे देश के अंदर जितने भी बन रहे हैं उन एक्सप्रेस वे में 60% एक्सप्रेस वे यूपी के अंदर बने हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की।
0: स्वीडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल ही अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित कैलस। ए मौका पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी कहने कि स्वीडन के सर्वोच्च पुरस्कार मिलल खाली उनकर सम्मान नहीं बा बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान हो।
2: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: स्वीडन में मिलल सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले मिलल 31वां वैश्विक सम्मान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीना के 31 तारीख के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपन विचार साझा करी हैं। मासिक रेडियो कार्यक्रम को 134वीं कड़ी हुई। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर इस कार्यक्रम बदे अपन विचार और सुझाव भेज सके। प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला के ईसानगर थाना क्षेत्र में आज सवेरे एगो ट्रक आ एगो वैन के टक्कर में 10 जने की मौत हो गई। ये दुर्घटना जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर लंबे पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के लगे भयल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सड़क दुर्घटना में भयल जान माल के हान पर दुख जतौले हमे। प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हर मृतक के परिजन के 2-2 लाख रुपया आघाही लोगिन के 50-50 हजार रुपया का अनुग्रह राशि देहले को घोषणा कैले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सज्जो मृतकन के परिजनन बदे 4-4 लाख रुपया का मुआवजा देहले का घोषणा कैले हमें। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज वाराणसी में कहने कि देश में पेट्रोल और गैस के कोनो कमी नहीं बा। केंद्र सरकार इस समय के परिस्थिति के देखत हर संभव कदम उठा रही हो। वाराणसी के जिला विकास समन्वय आ अनुश्रवण समिति दिशा की बैठकी की अध्यक्षता के बाद पत्रकार लोगों से बतियावर श्री पुरी देशवासियों के ईंधन के उपलब्धता बदे फिर से भरोसा दिया उन्हें। दिशा के बैठकी के दौरान वहां के वाराणसी के कई गो विभागन का बिंदुवार समीक्षा करत अधिकारियों के योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश देने।
3: उसका एक स्टेटस रिपोर्ट दिया। ये स्टेटस रिपोर्ट जो है 120 पेज की है जिसमें सारी योजनाएं में इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, जहां कुछ कमी है उस पर चर्चा हुई।
0: मौसम विभाग अगला 4 दिन के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का वहीं न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक के क्रमिक बढ़ोतरी का संभावना जतौले हो। विभाग प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकन में बिहने से लेके 21 मई ले दिन के समय कुछ जगहों पर तेज घाम चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर देगा। इस बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के साथ ही एक लगे के करीब सज्जो जिले में आज दिन में तेज घाम, भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित रहा। समाचार पूरा भाई, नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हो रहे हैं। सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनिएगा डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी का गायन। रात्रि 10 आप सुनेंगे भारतीय भाषाओं का भविष्य, इस विषय पर परिचर्चा। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 9:30 पर। और सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 सुनिएगा आशा भोसले और गुलाम अली के गाये गजल।

का बेबी कॉर्न यानी शिशु मक्का की खेती, इस विषय पर डॉक्टर देव नारायण सिंह से सतीश कुमार यादव की बातचीत। अलावा इसके सुनिएगा अर्जुन यादव और साथियों का गाया लोकगीत भी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल यानी 19 मई 2026 दिन मंगलवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन, और शास्त्रीय संगीत के अन्य कार्यक्रमों में सुबह 7:31 पर और दिन 12:45 पर सुनेगा कमल कुमार का बांसुरी वादन। खेल दर्पण आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया जाएगा।

0: गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में। रात्रि 8:00 सुनिएगा उषा टंडन और राहत अली के गाए गजल और सुगम संगीत के अन्य कार्यक्रम में। दिन 12:30 पर आप सुनेंगे मोनिका मिश्रा के गाए भजन। किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। इस कार्यक्रम में एग्रो टूरिज्म और ग्रामीण विकास इस विषय पर डॉक्टर निखिल कुमार सिंह की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। अन्य बातों के अलावा सुनेगा राधेश्याम सोटा वाले और साथियों का गायल लोकगीत भी। श्रोताओं, इन्हीं के गायल लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर भी। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:15 पर। धरती के गीत इस कार्यक्रम में सुरेश गुप्ता और कुमारी रत्ना भौनिक के गाए ब्रज गीत आप सुनेंगे शाम 5:00। ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगनैया लेकर हम हाजिर होंगे दिन में 1:15 पर। अन्य बातों के अलावा फेफड़े का संक्रमण, कारण, लक्षण और उपचार इस विषय पर डॉक्टर गोविंद नारायण श्रीवास्तव से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ बहनें आनंद लेंगी गीत संगीत का भी। व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन 11:00 और सुबह 7:00 सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर और सुबह 6:10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:05 पर सुनिएगा धान की उन्नत प्रजातियां इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। और सुबह 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर। कीजिए इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन-स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें।

0: 054-222-7658।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है और आप सुनने जा रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक की युगल आवाजों में जोश फिल्म का ये गीत।

जवे मेट फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमन्त्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबन्धित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। कांग्रेस नेता वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य, महिला विरुद्धम अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषणायोगौ निर्मितौ। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेदादि विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारकोपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमन्त्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबन्धित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वक्षोर्जायाः, नील अर्थव्यवस्थायाः, हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नॉर्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुं उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनी ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: वार्तालापावधौ उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्णक्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्।

0: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि, येन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेष् नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीय पटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु पञ्चवर्षेष् द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादभावान् प्रायच्छत्। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इण्डिया, मेड विद स्वीडन इत्येतयोश्च उपक्रमयोः विशेषतः हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस दलस्य वीडी सदीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालः राजेन्द्रन विश्वनाथ आर्लेकरः श्री सतीशनं पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारितवान्। मुख्यमन्त्रिणा सह एकविंशतिः सदस्याः मन्त्रिपरिषदः कार्यभारं स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी, कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया, तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमन्त्री रेवन्त रेड्डी, हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुखु, केरलस्य भाजपा पक्षस्य राज्याध्यक्षः राजीव चन्द्रशेखरादयः नेतारः उपस्थिताः आसन्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमबंगसर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य, महिलाविरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य राज्यमन्त्रिमण्डलस्य अनुमोदनानन्तरम् अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्। केन्द्रीय गृहसहकारिता च मन्त्री अमितशाह अद्य रायपुरे राज्यस्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रियावाहनानाम्, आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल यानानाञ्च ध्वज प्रदर्शनपूर्वकं शुभारम्भं विहितवान्। राज्यस्य विभिन्नेषु मण्डलेषु नियोजनार्थम् अद्य आहत्य 400 नूतनोन्नतापत्कालिक वाहनानि लोकार्पितम्। अस्मिन्नवसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभाध्यक्ष रमण सिंहश्च उपस्थिताः आसन्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन्धन शोधनागाराणि सामान्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिम एशिया संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधित तैलेन्धन भण्डाराणि सन्ति इति। पश्चिम एशियायाः साम्प्रतिक स्थितिविषये अद्य नवदिल्ली नगरे अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं प्रायच्छन् पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, प्राकृतिक गैस इत्येतेषां पर्याप्त भण्डारम् अस्ति इति।
2: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: आयुष मन्त्रालयः अद्य वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्यधिक उष्णतायाः सह उष्णतरङ्गस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्राकाशयत्। परामर्शत्वेन मन्त्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं

0: व्यस्ततायाम् अपि सूर्यप्रकाशस्य प्रत्यक्ष संसर्गात् निवारणं विद्युद्श्लेष्यै समृद्धानां ऋतुकालिकफलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयमिति प्राकाशयन्। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरङ्गस्य स्थितिं निवारयितुम् आयुर्वेद सिद्ध योग यूनानी होमियोपैथी इत्यादीनां विविध आयुष प्रणाल्याः पारम्परिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् वैश्विक समस्याभिः सह अनिश्चिततासु अपि भारतं द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वदस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत व्यापार महोत्सवस्य अन्तर्जालीय पटलस्य उद्घाटने श्रीगोयलः अग्रे गन्तुम् उत्साहः कदापि न न्यूनीभवति तथा च सर्वे अविरामं कार्यं कुर्वन्तु इति उक्तवान्।
1: भारत का बना हुआ सामान, भारत से देवी सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो। और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्विट्जरलैंड देशस्य जिनोवा नगरे आयोजिते 79वें विश्व स्वास्थ्य सभायाः अनन्तरं विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकेन सह मिलितवान्। सामाजिक पटले स्वास्थ्य मंत्रालयेन उक्तं यत् श्री नड्डाः पुनः दृढीकृतवान् यत् वैश्विक स्वास्थ्य समता परिवर्तयितुं भारतस्य प्रतिबद्धता अस्ति इति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्य वियतनाम दक्षिण कोरिया देशयोः यात्रायामस्ति। सः वियतनाम देशस्य हनोई इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। वियतनाम देशस्य प्रवासावधौ राजनाथ सिंह वियतनाम देशस्य राष्ट्रिय रक्षामन्त्रिणा जनरल फॉन वॉन जियांग इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले मन्त्री अवदत् यत् सः द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयितुम् उभयोः देशयोः भ्रमणार्थम् उत्सुकः अस्ति इति। सः अवदत् यत् सामरिक सैन्य सहयोगस्य गहनता, रक्षा औद्योगिक सहभागित्वस्य सुदृढीकरणं, समुद्रीय सहयोगस्य संवर्धनार्थं भारत प्रशान्त क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रोत्साहनम् अस्य केन्द्रबिन्दुः भविष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स दलं एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति इति वार्ताः।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो रहे हैं। किसान भाई सुने अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम। और हो जितन भैया।
1: हाँ बिरजू भैया,
0: देखा हो भैया दऊ इतना प्रचंड धूप करत हो न हो कि जनात थे एकदम शरीर जल जाए। तो यही से भैया कहल जाला कि बहुत जरूरी काम रहे तब निकला बाहर आ देखता के या खास करके जौन बूढ़ पुराना भी बाड़ा उन्हों के बहुत सजो के रखले काम है। आ देखा हो अब बेहन डाले के भी समय नियरागिल है, किसान भाई लोग अपने खेत उत के तैयारी भी बड़ा जोर शोर से करत हों। तो देखा भैया कहल जाला कि गांव घर में आपस में भाईचारा बनाए के मिलजुल के कोनो काम सलाह मशवरा से होला तो बड़ा अच्छा होला। वही पर देखा भैया आज हम विषय कौम भारत सरकार हमारे एक कौमी एकता साप्ताहिक मतलब सप्ताह मनावाला 19 से 25 नवंबर के बीच में भारत सरकार हमार कौमी एकता सप्ताह मनावाला।
1: बिरजू भैया देखा जौन कहल कौमी एकता ना, देखा हो ई एकता ये नाम से ही स्पष्ट हो जात हो कि हम लोगन के एक हो जाए के चाहिए। और सुना आपन जौन देश में देखा विविध प्रकार के लोग रहल, कई प्रकार का भाषा बोलन, कई प्रकार का धर्म बा, मतलब कई तरह तरीके से रहन, लेकिन फिर भी हम लोग अपन देश के कहेला।
0: हाँ भैया ओके स्पष्ट रूप से कहला कि

0: विविधता में एकता, सर्वधर्म संभाव के भावना से हमन के काम कैले की जरूरत है भैया। आ देखा तब हमार देश विकास के रास्ता पर चली। ऐसे मिलजुल के रहले से देखा पहले रहे हो भैया गांव में जाड़ा के दिन में गौड़ बराय जितन भैया, तो देखा हो सब जात धर्म के लोग एक जगह बैठ के आग तापें आ तरह तरह का अपन बात करें। वो में देखा अच्छा से अच्छा बात पर अपन आदमी काम के बारे में बातचीत करें, उससे बहुत बढ़िया से हल होख कह जला कि संघे शक्ति में बहुत जान होला,
1: बहुत जान होला। अच्छा भैया यो रहा ना, जन कौड़ा के बात कैले है, जब कौड़ा भरन है तो वहाँ ई ना देखा लोग कि वो दूसरे बिरादरी के हुअन, वो कौन चीज़ हुअन, का हुअन, वो उनके मानलन, उसे मतलब न रहे, बड़ा प्रेम रहे हो कि देखा भैया उन भैया आ गिन, वो फला आ गिन, ई हाल रहल।
0: देखा भैया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ले के चलने में आदमी के समला जीवन बहुत सफल हो जितन भैया। ऐसे कह जला कि हमारे देश के बहुत तरक्की होले। आ ऐसे देखा कह जला कि विश्व स्तर पर यही से भारत देखा बहुत बड़ी अच्छी ख्याति हुए। आ आदमी के कौनो काम करे आपस में प्रेम भाईचारा बनाए के ही कैले की जरूरत है।
1: देखा प्रेम भाव के बात कैले ना, तो देखा यहाँ पे जौन है ना आज जरूरत बा हमने के, न नफरत न प्रेम, सब जगह प्रेम बांटल जा, एक होकर के जरूरत हो। कहे से भाई कहल गला ना एकता में बड़ा शक्ति होला, जैसे ई हाथ का पंजा होला तो अगर खोले रही हैं तो आपके कोई भी परेशान कर सकला, लेकिन जब ये मुक्का बन जाला ना तब समझ लो ओकर एक
0: कौनो काम आसान आसान हो जाला। ओकर कह के मतलब ये है भैया कि दोनों थबोरी बजीबा तो ताली बजी, तो वही कहल जाला कि एकता जब रही तब कौनो काम हमन आसानी से कह सकेले जा।
1: तो भैया देखा हो यही से ना देखा और देश दुनिया में सम्मान पावल अगर एकता बनल रहला तो हमने के संविधान भी सभी नागरिक के बराबरी के अधिकार देले बा। ऐसे कौनो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव न करे के चाही। और देखा कहल गल ना कि आवल जा हमने के संकल्प लिवल जाओ, न लड़ाई न झगड़ा, सबसे ऊपर देश हमार।
0: देखा कहल जाला कि लड़ाई कौनो काम करवा भैया अगर प्रेम रही ना तो बहुत अच्छे से होई, आ नफरत से कौनो काम आसान ना होला
1: ना।
0: तो यही से कहा जाला भैया कि भाईचारा बहुत जरूरी है। देखा हमारे देश में जितना राज्य बाणा अलग अलग भाषा बोलल जाले, अलग अलग खान पान है, फिर भी हमन कौनो काम एकजुट हो ले तो हमन भारतीय कहा ले जा। तो यही से कहा जाला कि भैया बहुत कौमी एकता में बहुत दम है।
1: देखा आप कौमी एकता के बात के लिए तो कौमी एकता नाम से ही स्पष्ट, जैसे कि हम शुरुआत में ही कहे हैं कि एकता जैसे देखा वही नहीं घर परिवार हो गल, अपने आस पास हो गल, अपने देश के मतलब कि इकट्ठा रह के जरूरत हो। कैसे इकट्ठा रहले से भैया परिवार कभी टूटला नहीं,
0: कब्बो ना टूटला भैया परिवार। आ कह जला कि संयुक्त परिवार हो चाहे संयुक्त समाज रहे मान का, तो उनमें समझला कि बाणी में मिठास रही तो कुल काम अच्छा हुई। आ आदमी के कौनो काम करे तो सबसे सलाह ले ले,
1: बिना सलाह के तो न करे।
0: हाँ
1: तो उसे राय मशवरा लेवे के चाहिए। और देखा कौमी एकता एक ऐसा चीज है ना, कौमी एकता ही अपन देश का शान बा, और यह शान के बचा के रखल हम सभी के जिम्मेदारी बा, तो एक एक बचावल बहुत जरूरी बा। तो भैया हो देखा ये तो कौमी एकता के बारे में बात हो गल, देखा बात बत कही तो आगे होते रही, तो है जौन संदेश है ना तो एक सुनवा लो।
0: एकदम सुनवा लो भैया।
2: बदलो बदलो आदत बदलो,
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: जितन भैया।
2: हाँ बिरजू भैया।
1: देखा भैया सनेस्त हो गल तो अपने पंचायती में कौन बातचीत करवाओ थोड़ा।
2: देखा आज के हमने के पंचायती में बड़ा नीमन के बतकही हो, बेबी कान की खेती। बेबी कान समझत हुआ ना, मक्का जोन होला।
1: शिशु मक्का।
2: हाँ शिशु मक्का। तो ए पर नीमन के बतकही हो, देखा डॉक्टर देव नारायण सिंह से बतीले हुआ अपन सतीश कुमार यादव भैया, आप भी सुना पंचलोक भी सुना।
1: सुनवा यादव भैया।
3: आज हमने उनके बीच में आयल हैं डॉक्टर देव नारायण सिंह, जे की सहायक प्राध्यापक हुए सस्य विज्ञान विभाग उदय प्रताप स्वायत्त शासी महाविद्यालय वाराणसी में। आज इनसे हमने लोग जानल जाए कि बेबी कार्न का खेती कैसे करें लोग। तो सबसे पहले हमने के कार्यक्रम कृषि जगत में डॉक्टर साहब आपको स्वागत है।
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
3: तो डॉक्टर साहब हमारी भैया उनके ये बताएं कि ये बेबी कार्न है क्या चीज।
4: देखिए बेबी कार्न जो सामान्य मक्का जिसकी हम रोटी भी खाते हैं या भुट्टा खाते हैं उसी का एक शिशु रूप है। उसको अगर हम जैसे बाली बनती है, बाली पनने के अगर हम 2 से 3 दिन के अंदर ही उसको अगर हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, माने उसके दाने में निषेचन होने से पहले हार्वेस्ट कर लें और भुट्टे में और दाना बनने से पहले उसका अगर हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसको हम बेबी कार्न या शिशु मक्का बोलते हैं। और ये आजकल सब्जियों के रूप में बहुत प्रयोग किया जाता है, इसका सूप भी बनता है और शादी ब्याह पे होटलों में इसकी बड़ी मांग है इस समय।
3: तो एक हमारे भैया लोग खेती काहे करें, काहे से कि उन्होंने इसे का लाभ हुई, तो एक बारे में बताएं।
4: देखिए सामान्य मक्का जो कि 120 से 135 दिन की क्रॉप है अलग अलग प्रजातियों के आधार पर, और वहीं पर बेबी कार्न की अगर किसान भाई खेती करते हैं तो ये 75 दिन में फसल की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 50 दिन से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और अलग अलग तोड़ाई 4-5 बार में 7 बार में किसान भाई 75 से 80 दिन में खेत खाली कर सकते हैं, मतलब 80 दिन में एक फसल ले सकते हैं। पहला तो ये कि कम अवधि की फसल है। दूसरा बेबी कार्न में भुट्टा तोड़ने के बाद जो हरा पौधा बचता है उसका चारे के रूप में भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, तो जो किसान भाई अपने जानवर रखे हुए हैं उनके लिए चारा भी साथ में मिल जाता है। तीसरी चीज ये है कि ये हरी सब्जी के रूप में और बाजार में इसकी मांग बहुत है, तो सामान्य मक्का से ज्यादा दाम पर इसकी बिक्री हो जाती है और ये सब्जी के रूप में बिकता है और प्रीमियम सब्जी के रूप में बिकता है, तो सामान्य मक्का की तुलना में इसमें लाभ भी ज्यादा मिलता है किसान भाइयों को।
3: डॉक्टर साहब आप तो बहुत बढ़िया हमारे किसान भाइयों के बतेनी कि एक तमाम लाभ है, तो ये बताएं एक बदे कह लो कि उपयुक्त जलवायु का रहे के चाहे।
4: देखिए मक्का की खेती जहाँ कहीं भी तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो वहाँ की जा सकती है, और अगर हम अपने उत्तर भारत की बात करें तो दिसंबर जनवरी का महीना अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे साल भर मक्के की खेती की जा सकती है।
3: अच्छा।
4: और हमारे किसान भाई तीनों सीजन में खरीफ रबी जायद तीनों सीजन में मक्के की खेती कर सकते हैं और बेबी कार्न की खेती कर सकते हैं।
3: अच्छा, अगर हमारे भैया लोग एकर खेती करे जात हो खेत कैसे तैयार करें।
4: देखिए इसकी खेती बलुई दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, हमारे यहाँ की जो गंगा के किनारे की मिट्टी है वो ज्यादातर बलुई दोमट मिट्टी ही है। तो इस मिट्टी में खेत की तैयारी के लिए किसान भाई एक बार मिट्टी पलट हल से जुताई कर दें, उसके बाद 2 बार हैरो चलाकर या कल्टीवेटर चला के पाटा लगा लें तो खेत समतल हो जाएगा, और उसके बाद या अगर वो मेड़ बनाकर बुआई करना चाहते हैं तो रिज मेकर आता है उससे मेड़ बना लें, क्योंकि इसकी बुआई किसान भाई कतारों में ही करें तो ही फायदा रहता है, क्योंकि इसमें निराई गुड़ाई भी करनी पड़ती है, मिट्टी भी चढ़ानी पड़ती है और पानी भी बार बार लगाना पड़ता है। तो अगर मेड़ बना के करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, समतल जमीन में भी कतारों में बुआई कर सकते हैं और बाद में मेड़ चढ़ा सकते हैं।
3: तो जिसमें डॉक्टर साहब आप बताओ तो नहीं है कि एक तीनों मौसम में खेती कर जा सकेला, तो भाई अब तो जायद का फसल कटत है और आवे वाले समय में भाई खरीफ का लोग तैयारी करत हुआ, तो खरीफ में अगर लोग एकर बुआई करत हुआ तो उन्होंने के अगर बीज उपचार करे के है तो उकरी बारे में बताएं कि कैसे लोग बीज उपचार करें।
4: देखिए बीज उपचार करने के पीछे जो उद्देश्य रहता है वो 2 रहते हैं, एक तो फफूंदी जनित बीमारियों से सुरक्षा के लिए हम बीज उपचारित करते हैं जिसमें फफूंदी नाशक से हम बीज उपचारित करते हैं, बाविस्टिन थीरम

0: ये फफूंदी नाशक आते हैं जिनमें से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से जो है बीज को उपचारित किया जाता है। 3 ग्राम का घोल बना लेते हैं प्रति किलोग्राम बीज में और उसको उपचारित करते हैं। अगर जैविक फफूंदी नाशक प्रयोग करना चाहें तो ट्राइकोडर्मा आता है, तो उससे भी किसान भाई रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं वो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो उद्देश्य होता है बीज उपचारित करने के पीछे, उसका यह है कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़े जिससे पोषक तत्व तो प्रबंधन हो सके, तो उसके लिए एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम और PSB फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का घोल आता है, वो उसका पाउडर आता है, घोल भी आता है, तो उससे किसान भाई जो है क्या कहते हैं उपचारित करेंगे तो उससे क्या है कि मृदा में नत्रजन की मात्रा भी बढ़ेगी, फास्फोरस की मात्रा बढ़ेगी और उनको उर्वरक कम प्रयोग करना पड़ेगा।
1: ज्यादा उत्पादन बदे कुछ किस्म है तो उन्हीं बता।
0: हाँ, ज्यादा उत्पादन अगर किसान भाई लेना चाहते हैं तो वैसे तो कोई भी मक्का की किस्म लगा सकते हैं और उसको सामान्य मतलब निषेचन से पहले तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर किसान भाई स्पेशली बेबी कॉर्न की खेती करना चाहते हैं तो उसकी वैज्ञानिकों ने किस्में विकसित की हैं। माधुरी स्वीट कॉर्न के नाम से एक प्रजाति है, बहुत पॉपुलर प्रजाति है। इसी तरह प्रिया स्वीट कॉर्न है, अंबर पॉपकॉर्न है, BL42 है, VL45 है, MTH14 है और गोल्डन बेबी, इन नामों से प्रजातियां हैं। किसान भाई इनको ले सकते हैं, बाजार में उपलब्ध हैं, इनकी खेती कर सकते हैं।
1: मान ली हमारे किसान भाई लोग खेती कर दिया ना, तो उनमें खाद का क्या प्रबंधन रखें या उनमें कोनो विशेष खाद डाले के है तो एक बारे में बताएं। और सबसे जरूरी ये कि जैविक विधि से अगर वो लोग करत हुए कर खेती तो उन्होंने उनके क्या लाभ हुई ये बताएं।
0: जी देखिए, मक्का जो है वो गेहूं वर्ग की फसल है, तो इसमें क्या है कि पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए किसान भाई अगर समेकित पोषण प्रबंधन करेंगे, समेकित पोषण प्रबंधन का मतलब कि जितने भी साधन उनके पास उपलब्ध हैं सबसे थोड़ा थोड़ा पोषक तत्व तो देने की कोशिश करें, माने किसान भाइयों के पास गोबर की खाद है तो वो भी डाल दें, बर्मी कंपोस्ट है तो वो भी डाल दें और उसके बाद बची मात्रा जो है यूरिया से DAP और पोटास दे दें। अब अगर किसान भाई सबसे मिला के करना चाहते हैं तो लगभग 5 टन गोबर की खाद 1 हेक्टेयर यानी 4 बीघे में दें और 1 टन बर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं अगर है, और अगर यूरिया DAP और MOP देना है तो यूरिया कई बार में दें, एक बार में पूरी यूरिया ना दें क्योंकि इसकी समय समय पर जरूरत पड़ती है और अगर एक बार में दे देंगे तो पौधे की बढ़वार ज्यादा हो जाएगी और उसमें बालियां कम लगेंगी। तो बुआई के समय 25 किलो यूरिया, 125 किलो DAP और 100 किलो म्यूरिएट ऑफ पोटास लाल वाली खाद और 25 किलो जिंक, इतना बुआई के समय खेत में मिला दें। उसके बाद जब 4 पत्ती की अवस्था आती है तो 75 किलो यूरिया, 8 पत्ती की अवस्था में 75 किलो यूरिया और इसमें नर मंजरी हटाने की अवस्था एक आती है उसमें 75 किलो यूरिया और लास्ट में जब नर मंजरी हटाने के 2 से 3 दिन बाद लास्ट में 50 किलो यूरिया 1 हेक्टेयर यानी ये जो मात्रा हमने बताई 4 बीघे के लिए है, इसमें इस प्रकार से अगर देते हैं तो अच्छी पैदावार मिलती है।
1: और सिंचाई का प्रबंधन रहे उन लोगों को।
0: सिंचाई मक्के की खेती में दोनों चीजें हैं, पानी की भी जरूरत पड़ती है और अगर ज्यादा पानी खेत में ज्यादा दिन तक रुक गया तो वो नुकसान भी करता है, तो सिंचाई के साथ साथ जल निकास का भी किसान भाई ध्यान दें। सिंचाई के लिए इसमें एक तो अंकुरण के समय खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए, दूसरा जब पौधे घुटने की अवस्था के हो जाएं ठीक तब उस समय पौधे में जो है सिंचाई करनी चाहिए, और तीसरा जब पौधों में बालियां आने लगें, जब फूल आने लगते हैं उस समय सिंचाई करनी चाहिए। 3 सिंचाई बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर जैसे किसान भाई देखते हैं कि बारिश नहीं हो रही है खरीफ के मौसम में, लंबे समय तक अंतराल हो गया है, खेत सूख रहा है, तो बीच में भी सिंचाई कर सकते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, जब उन लोगों को पौधा बड़ा बड़ा हो जाता है तो उस समय कोनो रोग व्याधि में अलग अलग।
0: हाँ, उसमें फफूंदी जनित रोग हैं और कीड़े भी लगते हैं, तो रोगों के से बचाव के लिए तो हमने जो बीज उपचार किसान भाइयों को सुझाया है, अगर किसान भाई फफूंदी जनित बीमारियों से बचाने के लिए बीज उपचार कर लेंगे तो रोग लगने की संभावना कम रहती है। उसके बाद भी अगर रोग लगते हैं तो बाविस्टिन का 2% का घोल बनाकर वो छिड़काव कर सकते हैं, तो रोगों से जो है उनका निजात मिल जाती है। और कीड़ों में क्या है कि आर्मी फॉल वर्म है और पत्ती बेधक तना बेधक कीट लगते हैं, तो इनके लिए जो दवाइयां आती हैं उसमें लेमडा साइलोहेथ्रिन है और इसको जो है और थाई मेथॉक्साम है, ये दोनों दवाइयां जो है मिलाकर 0.25% का सॉल्यूशन बनाकर इनका छिड़काव करें, अगर जरूरत पड़े तो।

0: 15 दिन के अंतराल पर दूसरी बार भी कर सकते हैं, कीटों से भी निमंत्रण मिल जाता है।
1: जैसे कि हमने कीट से पहले खर पतवार का बात करते नहीं जाए, तो अगर मान लो लोगों के खेत में या जो खेती कैले है एक बेबी कॉर्न का, तो इनमें कुछ खर पतवार लग जाते हो, तो ओकरे बदे वो लोग का प्रबंधन करें।
0: चूंकि मक्का दूरी दूरी पर लगाया जाता है तो खेत में खाली जगह रहती है काफी, तो इसमें खरपतवार आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो उसके लिए किसान भाई या तो अगर उनके पास लेबर उपलब्ध है तो दो बार हाथ से निराई गुड़ाई कर दें, एक बार 15 दिन पर और दूसरी बार 30 दिन पर। और अगर किसान भाइयों के पास में लेबर की समस्या है और रसायन से खरपतवार प्रबंधन करना चाहते हैं तो बुआई के 2 दिन के अंदर एट्राजिन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दवा का छिड़काव कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: अगर किसान भाई उस समय भी दवा डालना भूल गए हैं, बाद में कोई उनको खरपतवार खेत में नजर आता है, तो दो दवाइयां आती हैं, एक है टोप्रामेजोन और दूसरी है टेम्बोट्रियान। टोप्रामेजोन 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और टेम्बोट्रियान 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 20 से 25 दिन बाद, अंकुरण के 20 से 25 दिन बाद ये घोल बनाकर इनका छिड़काव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि जब ये खेती का बात होला तो उसमें वो डी टैसलिंग शब्द आवेला, ये क्या चीज है, एकरी बारे में तनी भैया लोगों को बताएं।
0: जैसे हमने शुरू में बताया कि जो बेबी कॉर्न है ये अनिसेचित मक्का है, मतलब इसका निषेचन से पहले ही हमको इसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है। तो मक्के में नर और मादा पुष्प अलग अलग आते हैं। जो मादा पुष्प है वो जो बाली होती है मादा पुष्प होती है, और नर पुष्प जो है वो शीर्ष पे जो झाड़ू की तरह वो निकलता है वो होता है। तो अब इस तो निषेचन से बचाने के लिए जो नर पुष्प है उसको निकलते ही जो है वो तोड़ के अलग कर दिया जाता है।
1: निषेचन का है,
0: निषेचन मतलब नर और मादा पुष्प का मिलन जो है, जो है
1: अच्छा।
0: परागण जिसको बोलते हैं, तो परागण से के बाद निषेचन होता है। तो नर और मादा जो क्या कहते हैं पुष्प हैं उनके मिलने से पहले ही जो है हमको नर पुष्प को निकाल देना है, क्योंकि मादा पुष्प की ही हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो नर पुष्प को निकाल देते हैं, उसी को डीटेसलिंग बोलते हैं। ये लगभग 45 दिन बाद जो है ये किया जाता है, और ये करना बहुत जरूरी है। ये अगर हम नहीं करेंगे तो पौधे निषेचित हो जाएंगे जब वो बालियां, तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है।
1: और कटाई के समय किसान भाइयों का ध्यान रखना,
0: तो इसमें कटाई का समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसान भाई जैसे ही बाली में सिल्क दिखना शुरू होती है, जो भुट्टा है उसमें जैसे ही वो रेशे दिखने शुरू होते हैं, उसके 2 दिन के अंदर कटाई कर लें किसान भाई। अगर कटाई करने में विलंब करेंगे तो जो बालियां हैं वो हार्ड हो जाती हैं, और वो जो मुलायम कोमलता है जो शिशु मक्का या बेबी कॉर्न की वो कम हो जाती है, और उससे फिर बाजार भाव उसका गिरने लगता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, पैदावार हमारे किसान भैया लोग मान ली कर लेना, तो पैदावार के बाद ओके अगर लोग के पैकेजिंग करे के है, मैंने मार्केट में भेजे के है, बाजार में अपनी नजदीकी या कह जाओ कि देश की मार्केट में भेजे के है, तो उस समय वो लोग ओकर पैकेजिंग कैसे करें और उस समय उसमें का का ध्यान रख।
0: दो चीजें हैं, एक तो कटाई के बाद उसके छिलके को अलग करना होता है जिसको डीहस्किंग बोलते हैं। छिलका निकालने के बाद जो भुट्टा अंदर का बचता है वो उंगली के साइज का छोटा छोटा भुट्टा होता है, तो वो निकाल लें और उसकी फिर ग्रेडिंग कर लें अलग अलग आकार का। छोटे आकार का मतलब 5 से 7 सेंटीमीटर का जो है वो अलग कर लें, और बड़े आकार का जो 10-12 सेंटीमीटर का है वो अलग कर लें, क्योंकि दोनों के अलग अलग दाम है। जो जितना छोटा और मुलायम बेबी कॉर्न होगा उतना ही अच्छा प्राइस मिलता है उसका।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह से ग्रेडिंग कर लें, और फिर उसके बाद उसकी प्लास्टिक में या जो है क्या कहते हैं टिन के डिब्बों में उसकी पैकेजिंग कर लें, और पैकेजिंग करेंगे तो उसको लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है और ट्रांसपोर्ट करने में भी आसानी होती है। उसके बाद वो आसपास की होटल इंडस्ट्री में या सब्जी मंडी में उसको बेच सकते हैं।
1: चलो चलो, हमारे किसान भाइयों के आपका सुझाव दिया चाहिए खेती के बारे में।
0: किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि कम समय में अधिक आमदनी अगर किसान भाई लेना चाहते हैं, उनके पास अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, तो किसान भाई बेबी कॉर्न की खेती करें। और जो किसान भाई जानवर रखे हुए हैं उनके लिए तो ये एक पंथ दो काज वाली स्थिति है कि आप खेती से आर्थिक लाभ भी ले रहे हैं और अपने जानवरों के लिए चारा भी उगा सकते हैं।
1: डॉक्टर देव नारायण सिंह, आप हम लोगों के कार्यक्रम कृषि जगत में आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जितन भैया।
3: हाँ बिरजू भैया।
2: देखा भैया, बेबी कॉर्न की खेती पर डॉक्टर देवनारायण सिंह और सतीश भैया बहुत बढ़िया बत कही भैले, पंच लोग सुनना। देखा कहल गल कि आदमी समय से एकर खेती करें तो इनमें बहुत लाभ बा हो। आई ऐसन भैया मक्का की खेती है ना, खाली समला दिसंबर जनवरी छोड़ा के।

0: बारहो महीना एकर खेती कैल जा सकल है। आ
1: सही
0: एकरे
1: बात।
0: एकरे बदे देखा बतौला हाँ कि बलुई दोमट माटी सबसे उपयुक्त मानल जाले। तो देखा पंच भैया लोग सुन ले हुई हैं एके आ अमल करें। आ देखा एक चीज़ और बतौला हाँ कि भैया देख जेकरे पशु बाणा तो एक पंथ दू काच वाली बात में बतौला हैं कि भैया आमदनी भी हो जाए आदमी के या साथे साथे चारा के भी काम चल जाए। देखला तो देखा भैया बात बत कही होत बा पंच भैया लोग सुनत हुए देखा भैया मन कुछ गीत गौनाई लोग ना सुनवाई हैं का। तो देखा भैया आज के हमन के पंचायती में गौनाई हुए अर्जुन यादव और साथी का आ पंच भैया लोग सुना है
1: सुनवा दे भैया।

0: जी
1: जीतन
0: भैया,
1: भैया
0: देखा
1: देखा।
0: हो बहुत नगद का गवन ही रहा है कि जीवन संकट में हो जाई अगर हम लोग पेड़ काटल जाई तो।
1: देखा भैया, कहल जाला कि पेड़ पौधा के काटे से बचावे के चाहिए या जितना अधिक से अधिक लगावे के चाहिए। काहे से कि देखा, पेड़ पौधा रही है तब हमारे पर्यावरण संतुलित रही, हमन के जीवन संकट से उबर जा सकला, ऑक्सीजन बढ़िया मिलला। ये भैया
0: हाँ
1: देखा हो, अब तो हमन के बिहानी कार्यक्रम में भी बता दे चाहता।
0: हाँ देखा काली के बिहाने के जो कार्यक्रम होला खेती के बारे में, तो इमन देखा विषय रही मिट्टी की जांच का महत्व, और ये विषय पर जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
1: हाँ भैया, तो 6:05 पर नहीं
0: हाँ
1: रही।
0: हाँ हाँ 6:05 पे तो सांझी के देखा भैया का सुनवा हुआ।
1: देखा भैया, शाम के 6:30 पर अपने कृषि जगत में बातचीत में गर्मी में जुताई के महत्व, ए पर भैया बातचीत हुई निखिल कुमार सिंह का। आ देखा भैया, पंच लोग के सुनी हैं। आ ये भैया देखा, कहल गल कि धूप या गर्मी तो बहुत पड़त है, आ हमन के देखा बच बचाए के रहे के जरूरत है। आ खास करके जो गदेला छोट बच्चा बाणा हो, आ बूढ़ पुरान आदमी बाणा, उनके भैया एकदम आड़ धरूले रहा। आ उनके समय समय पर पानी गगरी में भर के आ बूढ़ पुरान आदमी के देत रहा।
0: देखा अगर खाना की बात नहीं देखा
1: आ
0: भैया।
1: देखा भैया, बेला भी हो गिल हो जितन भैया बोलत बतियाओ, तो मन ध्यान आना जदे थे जा। तो देखा भैया, जैसे मन समय से आई ले जा, वैसे चलने की जरूरत है। तो पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल आवाजों में आइए सुने कयामत से कयामत तक इस फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल आवाजों में कयामत से कयामत तक इस फिल्म का गीत, और अब आइए सुने यस बॉस फिल्म का गीत, आवाज एक बार फिर अलका याग्निक साथ में कुमार सानू।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अनु मलिक और कुमार सानू की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली वाराणसी से प्राप्त सूचना अनुसार कृष्ण कुमार पुत्र स्वर्गीय दिलीप कुमार 15 मार्च 2026 दिन रविवार को दिन 12 बजे बिना किसी को कुछ बताए घर से कहीं चले गए। काफी प्रयास के बाद भी इनका कुछ पता नहीं लगाया जा सका। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 20 वर्ष, कद लगभग 5 फीट 6 इंच और ये नीले रंग का टी शर्ट और काला पैंट पहने हुए हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 9696840312 इस नंबर पर सूचित करें। सुनिए एक और सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना अनुसार ज्योति उर्फ किरण, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, 3 साल की एक छोटी बच्ची जिसका नाम पीहू है, उसको लेकर 9 अप्रैल 2026 की शाम को मंगोलेपुर चोलापुर वाराणसी से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 26 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, दोहरा बदन, चेहरा गोल और इनका रंग गोरा है। इनके दाएं हाथ पर IJK ऐसा टैटू अंकित है। ये नीले रंग की साड़ी पहनी हुई हैं और इनके साथ 3 साल का एक बच्चा है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 8286465533 इस नंबर पर सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:18 होने।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बोल बोल के थक गया।
7: क्या हुआ?
6: नया किट बैग चाहिए।
7: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
7: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
8: RBI कहता है
9: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
10: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
11: बेटा
12: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
11: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
13: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
11: चलो
10: कहाँ?
11: एडमिशन कराने।
13: खाता हुआ एक्टिव।
5: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
14: ओह लवली, वेल डन।
15: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
14: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
16: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
14: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
16: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
14: आप कौन?
8: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में UP SSSC 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
17: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है, उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये के अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृत।
18: परिषद के दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ

0: योजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रुपए पर सहमति प्रदान की गई। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
1: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रुपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
2: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
1: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है, वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग सौंपा गया है। 4 नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, PNG और LPG की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक PNG सुविधा पहुंचाना है।
3: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना LPG की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो LPG कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
4: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज हैं। पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के

0: अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
5: को
6: प्लीज तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर रखना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा?
6: पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
6: फ्री वाईफाई है ना?
5: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
6: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
10: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
9: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
10: कहाँ से पता चलेगा?
9: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
11: आज ही सर्च करूंगा।
9: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
13: ओह लवली, वेल डन।
8: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
13: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
14: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
13: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
14: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
13: आप कौन?
12: RBI कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
15: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। हेमलता की आवाज में सुनिए अखियों के झरोखों से इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

और अब सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक की युगल आवाजों में जीत फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा समीर ने और धुन तैयार किया नदीम शमन ने।

और अब आइए सुने हरिहरन और अलका याग्निक की युगल आवाजों में एक खामोशी फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार किया जतिन ललित ने।

खामोशी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आशा भोसले और गुलाम अली की के गाए गजल।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, और सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं आशा भोसले और गुलाम अली की युगल आवाजों में गजल।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है रस माधुरी। लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाजों में सुनिए सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत।

मुकेश और लता मंगेशकर युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे सरस्वती चंद्र का फिल्म का ये गीत। और अब आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज में नूरी फिल्म का ये गीत।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं रस माधुरी कार्यक्रम। और अब आइए सुने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की युगल आवाजों में नया दौर फिल्म का ये गीत।

रसमाधुरी कार्यक्रम में आप सुनिए गीत आर्य और लता मंगेशकर और सखियों की मिली जुली आवाजों में गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये गीत।

भाभी फिल्म के इस गीत के साथ ही रसमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

0: गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता
2: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
3: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं, उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
4: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000

0: 70,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India.

0: Sunlight during peak hours, use of light cotton clothing, and consumption of seasonal fruits and fluids rich in electrolytes. And in IPL cricket, Chennai Super Kings were 159 for 5 in 18 overs against Sunrisers Hyderabad in Chennai when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties to green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हममनसब जॉन्स घार स्टोर के साथ मुज़ाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवानाई और नीलगू मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को किंग हैराल्ड द फिफ्थ ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदात का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमरीका के एक सनती वफद से मुजाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं और गर्मी की इंतहाई शिद्दत के दौरान आयुष की वजारत ने गर्मी से मुतालिक बीमारियों की रोकथाम की गरज से एडवाइजरी जारी की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के अव्वलीन दौरे के नुमाया नताइज सामने आए हैं, जिसमें दोनों मुल्कों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर सब्ज जामे शराकत दारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है। ओस्लो में अपने हम मनसब जॉन्स घार स्टोर के साथ वफद की सतह की बातचीत के बाद आज एक मुश्तरका बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया कि दोनों लीडरों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को बेहतर करके उसे सब्ज जामे शराकत दारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है, जो कि साफ तवानाई, नीलगू मईशत, ग्रीन कायापलट के शोबों में तआवुन को बेहतर बनाने में एक अहम संग मील है।
2: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनी ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने भारत EFTA तिजारती और इक्तिसादी शराकत दारी के मुआहदे से हासिल होने वाले वसी मौके को भी वाजह किया है। इसमें शराकत दारी को हाईटेक AI स्टार्टअप्स के शोबों में मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाने की गरज से तवानाई पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है।
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: इस बाहमी मीटिंग में सेहत से मुताल्लिक हाईटेक हल, डिजिटल सेहत, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के शोबों में बहुत से मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। भारत के इसरो और नॉर्वे की खलाई एजेंसी के दरमियान एक मुफाहमत नामा, दिफाई शोबे में ताल्लुकात बेहतर बनाने

सकता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम और जनूबी कोरिया के दो मुल्कों के दौरे पर आज से पहर वियतनाम के शहर हनोई पहुंच गए हैं। वियतनाम में वज़ीर दिफा अपने हम मनसब जनरल फॉन वॉन ग्यांग के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। जनाब सिंह का यह दौरा वियतनाम के साबिक सदर हू ची मिन के कल 136वें यौम पैदाइश के मौके पर हो रहा है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल सरकार ने मुबैना इदारा जाति बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादती की तहकीकात करने की गरज से दो तहकीकाती कमीशन तश्कील दिए हैं। ये कमीशन भारतीय जनता पार्टी के जरिए किए गए इंतखाबी वादों के मुताबिक बनाए गए हैं। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीना की मंजूरी के बाद आज इस फैसले का ऐलान किया। इदारा जाति बदउनवानी की तफ्तीश करने वाले कमीशन की सरबराही कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बिस्वजीत बसु करेंगे। दूसरा कमीशन ममता बनर्जी की क्यादत वाली सबका सरकार के दौरान ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादती की तहकीकात करेगा। इसकी सरबराही कलकत्ता हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज संपति चैटर्जी करेंगी। मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि दोनों कमीशन अगले महीने की पहली तारीख से काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि तहकीकात में बदउनवानी के माजी के मामलात और ख्वातीन के खिलाफ जराइम का अहाता किया जाएगा और अवाम में से लोग इन कमीशनों के सामने अपनी शहादतें पेश कर सकेंगे। बदउनवानी की इंक्वायरी में तमाम सरकारी महकमों का मुआयना किया जाएगा जिनमें पंचायतें और जिला परिषद शामिल हैं। आयुष की वजारत ने इस साल गर्मी के मौसम के लिए इंतहाई शदीद गर्मी और गर्म लहर के सिलसिले में अवामी सेहत से मुतालिक एक जामे एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में जोर देकर कहा गया है कि जिस्म में पानी की कमी न होने दें, इंतहाई धूप के औकात में धूप में बराह रास्त आने से गुरेज करें, हल्के सूती कपड़े इस्तेमाल करें और मौसमी फल भरपूर मिकदार में लें और ऐसे मशरूबात वगैरह लें जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता हो। इसमें शहरियों को खबरदार किया गया है कि वो गर्मी से मुतालिक बीमारियों जैसे चक्कर आना, सर में दर्द होना, जी मतलाना, जहनी थकावट महसूस करना, बुखार होना, पानी की कमी, अचानक बीमार महसूस करना और बेहोशी की सूरत हाल का सामना करने से मुहतात रहें। एडवाइजरी में सिफारिश की गई है कि खराब सूरत हाल में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 108 या 102 पर कॉल करें। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन गर्म लू की सूरत हाल रहने के बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले दो दिनों के दौरान गर्म लहर की सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के दौरान बस्तर जिले में नितनार गांव में अवामी खिदमात के एक मरकज का इफ्तिताह किया। इस मरकज का नाम कबायली लीडर और शहीद मुजाहिद आजादी वीर गुंडाधुर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अगले डेढ़ बरस में बस्तर में कायम तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 को इसी तरह के खिदमात से मुतालिक मरकज बना दिया जाएगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस से स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में मुनक्किदा 79वीं आलमी सेहत असेंबली से अलग मुलाकात की। जनाब नड्डा ने आलमी सेहत इक्विटी की पेशरफ के तहत भारत के अज़्म को दोहराया और कुछ अहम स्कीमों को उजागर किया, जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, रिवायती अदवियात, मसनूई जहानत से चलने वाले अवामी सेहत की इख्तिराआत और टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए की जाने वाली पायदार कोशिशें। डॉक्टर टेड्रोस ने सेहत के शोबे में भारत की इस्लाहात और आलमी सेहत शराकत दारी में उसकी क्यादत की तहसीन की और मुश्तरक तरजीहात के ताल्लुक से आलमी सेहत तंजीम के साथ शराकत दारी को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की रिफाइनरीज में मामूल के मुताबिक काम हो रहा है और मगरबी एशिया के जारी बहरान के बावजूद भारत में खातिरखा खाम तेल मौजूद है। नई दिल्ली में आज बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और कुदरती गैस का खातिरखा जखीरा मौजूद है। इसके बावजूद अफवाहों की वजह से कुछ इलाकों से एलपीजी की घबराहट में खरीदारी की खबरें मिल रही हैं। केमिकल और कीमियावी खादों की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी अपर्णा शर्मा ने बताया कि मुल्क भर में 200 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर दस्तियाब है और खरीफ की फसल के लिए कीमियावी खादों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। महाराष्ट्र के पलघर जिले में

0: महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाके धनीवरी में एक बारात को ले जा रहे ट्रक और एक कंटेनर के दरमियान टक्कर से हुए सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक हुए हैं और 20 दीगर जख्मी हैं। मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी का अंदेशा है। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हम मनसब जॉनस घर स्टोर के साथ मुजाकरात की है। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवनाई और नीलगू मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वजीर आजम मोदी को किंग हराल्ड द फिफ्थ ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदात का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमरीका के एक सनती वफ से मुजाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। जगजीत सिंह की आवाज में सुनिए ये गजल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। और अब इस कार्यक्रम में सुनिए गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। भारतीय भाषाओं का भविष्य, आइए सुने इस विषय पर परिचर्चा।
2: श्रोता नमस्कार, आकाशवाणी वाराणसी से मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज की हमारी परिचर्चा जो है उसका विषय है भारतीय भाषाओं का भविष्य। और अगर हम भारतीय भाषाओं की बात करें तो हमारे देश भारत में भाषाओं का अद्भुत संगम है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं और यही भाषाएं हमारी संस्कृति की पहचान भी हैं। लेकिन बदलते समय के साथ, बदलते तकनीक और वैश्वीकरण के इस दौर में एक बड़ा प्रश्न यह सामने आया है कि क्या हमारी भाषाएं सुरक्षित हैं, उनका भविष्य कैसा है। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं तीन विशिष्ट अतिथि। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं उनसे। हमारे साथ उपस्थित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रख्यात आचार्य डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल जी। हमारे साथ हैं विदेशी भाषा विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य डॉक्टर उपेंद्र कुमार जी। साथ ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सारनाथ वाराणसी के प्राचार्य उमेश कुमार शुक्ला जी। सबसे पहले आप तीनों विशिष्ट अतिथियों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा हमारे हिंदी विभाग के जो प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल जी से कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो जहन में आती है बात सर वो हिंदी भाषा की आती है। तो आज के समय में जब अंग्रेजी का प्रभाव इतना बढ़ गया है तो ऐसी स्थिति में हिंदी और जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं इनके भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: सर्वप्रथम तो सर नमस्ते। एक बहुत ही कहा जाए कि बहुत समीचीन विषय पर चर्चा परिचर्चा के लिए आकाशवाणी ने बहुत ही अच्छी पहल की है और चंदन सर आपका भी मैं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं ऐसे विषय पर बात रखने के लिए। और सभी श्रोताओं को नमस्ते
2: जी।
3: बहुत मौजूद सवाल है आपका और आज के समय में हमारी भाषा कैसे सुरक्षित रहेगी।

0: अंग्रेजियत का दबाव है, नई पीढ़ी का एक संस्कृति का जो कल्चर है, रहन सहन है पाश्चात्य, हाँ भी हो रहा है। लेकिन
1: जी
0: उसके बाद भी चंदन सर, मैं आपको आगाह कर दूं, सभी श्रोताओं से मैं कहूंगा, कोई भी भाषा सशक्त तब बनती है जब वो लोग से जुड़ती है। हिंदी भाषा सशक्त इसलिए आज भी है और आगे भी रहेगी क्योंकि यह लोक में इसकी गहरी पकड़ है। लोक का अभिप्राय ही यही है कि वहाँ पर्व है, संस्कृति है, बोली है, सौहार्द है, संचार है, कथा है, आदि सबका एक समन्वय है। और आज के दौर में यह चिंता आपकी जायज है, लेकिन हम गहराई से देखें तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का भविष्य असुरक्षित नहीं है,
1: जी
0: बल्कि एक नए रूप में वह विकसित हो रहा है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं जो आपने भी कहा, उसमें पहला है कि जो डिजिटल क्रांति है, लोकल का जोर, जहां इंटरनेट अब केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी पकड़ गांव में, जहां गूगल, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफार्म सारे लोग जानते हैं,
1: जी
0: और उनका एक बहुत बड़ा जो यूजर है, बेस है, वो ग्रामीण समुदाय है। और कहा भी जाता है कि भारत गांव में बसता है। और जब मैं बात अपनी कह रहा हूं तो ख्याल करिएगा कि वहां भी लोग जो कंटेंट देखते हैं वह अब एक तरह से क्षेत्रीय भाषाओं में, जो पॉडकास्ट आ गए, जो वेब सीरीज आ गए, जो न्यूज है उसका बोलबाला है, तो उसको देखना पसंद करते हैं। दूसरा है कि जो एनईपी, नई शिक्षा नीति को लेकर बात करें, सरकार अब प्राथमिक और यहाँ तक कि जो तकनीकी शिक्षा है, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल,
1: जी
0: को भी अब मातृभाषा में उन्होंने उपलब्ध करा दिया। एमपी के एक विश्वविद्यालय ने बकायदे मेडिकल का पाठ्यक्रम हिंदी में वहां चलता है।
1: जी
0: अगर आप देखें तो हमारे सामने वो संकट नहीं रह गया कि भाषा को लेकर हम कोई कोर्स न कर पाए। अगर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं बनती हैं तो उनका भविष्य और मजबूत होगा। तीसरा प्रश्न है कि जो आर्थिक शक्ति है, जैसे भारत के छोटे जो शहर हैं आर्थिक केंद्र बन रहे हैं, विज्ञापन मार्केटिंग की दुनिया पूरी तरह से हावी हो रही है, ऐसे में हिंदी और जो क्षेत्रीय भाषाओं पर निर्भरता है उसको आप बखूबी देख सकते हैं। हमारे यहाँ ब्रांड्स आप वही भाषा बोल रहे हैं जो आम आदमी बोलता है। यह
1: जी
0: मैं बात कर रहा हूँ तो फिर जोर दे के कह रहा हूँ कि जो ब्रांड्स हमारे मार्केट या विज्ञापन में आते हैं, वह ब्रांड्स और उनको लाता है जो गाँव में एक आम आदमी भी बोलचाल में लाता है, अर्थात वो हमारी मातृभाषा,
1: जी
0: उसको विज्ञापनों में ला रहा है। चौथी और अंतिम बात इस प्रश्न के संदर्भ में कि अब जो इंग्लिश है, जो कोड स्विचिंग है, यह सच है कि शुद्ध भाषा का स्वरूप बदल रहा है।
1: जी
0: लोग हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसको हम इंग्लिश कहते हैं। इस भाषा का यह पतन नहीं है बल्कि एक अनुकूलन है जिसको हम एडाप्टेशन कह सकते हैं।
1: जी
0: यह कहना बेहतर होगा, भाषाएं तभी जीवित रहती हैं जब वे समय के साथ बदलती हैं। अर्थात हमारे जहन में, और आपने हिंदी कि मैं बात न करूं तो बेमानी होगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस बात को कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नत को मूल। विद्यापति ने कहा, देसिल बैना सब जन मिठा। उन्होंने यह अनायास नहीं कहा था, बल्कि इसके पीछे जो मातृभाषा का उत्कर्ष था, जो एक अंग्रेजी में जो काम का जो वैश्विक संदर्भ की भाषा बन रही थी, उसमें कैसे अपनी भारतीय भाषाओं का एक बोल चाल, मनोरंजन, पहचान, भावना जुड़ रहा था, उससे भी उन्होंने जोड़ के देखा। और चलते चलते अब ख्याल करिएगा कि जब गांव में कजरी, सोहर, शुभ विवाह या कोई तिलकोत्सव होता है, तो भारत की संस्कृति तो इतनी रिच है, वो शायद भारत में ही होता होगा, कि हमारे यहाँ गाली गाने पे पैसा दिया जाता है, और गाली अगर नहीं गाई जाती तो लोग कहते हैं वहां सेवा सत्कार नहीं हुआ। अर्थात वह गाली किस भाषा में है? वह गाली वहां के मातृभाषा में है। इसलिए भाषाओं पर हमारे कोई संकट और ग्रहण नहीं है।
1: जी। जब हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तो अक्सर हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के इस दौर में आज के जो युवा पीढ़ी है या फिर जो भी अपना करियर या अपना भविष्य संवारना चाहते हैं वो कोई ना कोई विदेशी भाषा को वो पढ़ने की या जानने की कोशिश करते हैं, खास जिसमें मूलतः हम बात करते हैं कि कोई भी विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी की बात करता है। यहाँ पे मैं मंतव्य चाहूँगा हमारे जो विदेशी भाषा विभाग के जो आचार्य हैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार जी, मैं यहाँ सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो विदेशी भाषाओं के जो महत्व आजकल जो भारतीय हैं उनके बीच में जो बढ़ रहे हैं या फिर जो तमाम विदेशी भाषाएं हैं उसके बीच में जो भारतीय भाषाएं हैं वो अपना संतुलन कैसे बना सकती हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
2: जी, सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: जी
2: मैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, विदेशी भाषा विभाग से, सबहार ऑल इंडिया रेडियो का और चंदन जी का, जिन्होंने एक बेहतरीन टॉपिक के साथ अपने मुझे बुलाया।

0: तो आपका जो प्रश्न था कि आज के युग में विदेशी भाषाओं के बढ़ते हुए प्रभाव पर हम भारतीय भाषाओं का संतुलन कैसे बरकरार रखें।
1: जी
0: आज देखिए, आज का वैश्वीकरण का युग है और इस वैश्वीकरण में हम जानते हैं कि जितनी विदेशी भाषाएं हैं, जिसमें जैसे अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, रशियन हो गया, कोरियन हो गया, चाइनीज हो गया, या तमाम अन्य भाषाएं जिनका दिनों दिन, चूंकि भारत में बहुत सारे बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां काम करती हैं और वहां से उनकी जो आवश्यकताएं हैं वहां से पूर्ति होती है, तो चूंकि विदेश के लोग भारत में आ नहीं सकते हैं, तो इसी कारण से भारतीय लोगों को ही उन भाषाओं में ट्रेन करके उनको उस जगह पर पहुंचाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि वहाँ भारतीय भाषाओं को भी अपना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण जो है वो रोल प्ले होता है। जैसे ये कहा जाता है कि क्या इस बढ़ते प्रभाव के कारण हमें अपनी भारतीय भाषाओं को पीछे छोड़ देना चाहिए?
1: जी
0: अगर ऐसा सवाल होता है तो मेरा उत्तर एकदम से है कि ना, बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारतीय भाषाएं, अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा, सत्यप्रकाश पाल साहब ने, कि भारतीय भाषाएं अपने आप में एक संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी ज्ञान और अपने विचारों को लेकर के चलती हैं, और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से हमारे पास भारतीय भाषाओं का प्रभाव पड़ा हुआ है, जिसमें हमारे जो लोकल हैं वो भाषाएं और राष्ट्रीय स्तर की जो भाषाएं हैं वो, और साथ में कई अन्य भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। तो भारतीय भाषाएं केवल संचार का एक माध्यम नहीं है, यह जो है जैसे हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान की आधारशिला भी इसको हम मानते हैं।
1: जी
0: इसको संतुलन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी शिक्षा प्रणाली पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि कैसे हम विदेशी भाषाओं को और देसी भाषा के साथ में हम संतुलन बना करके रखें। दूसरा, यदि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हम मातृभाषा में ही दें तो कि समझ और सोचने की क्षमता जो है बच्चों की शुरू से ही बेहतर होती है,
1: जी
0: क्योंकि हम विदेशी भाषाओं को आज के दिन में देखते हैं कि क्लास 1 से 2 से 3 से ही बच्चों को सिखाने की परंपरा स्कूलों में शुरू हो गई है, जैसे जर्मन है, रशियन है, फ्रेंच है, इसकी डिमांड ज़्यादा हमारे स्कूलों में बढ़ने लगी है।
1: जी
0: इनफैक्ट जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक विदेशी भाषा जरूर सीखें। और दूसरा, कि हमें तकनीकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अधिक से अधिक इसका उपयोग करके हमें और लोगों के बीच में ये जागृत करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं को और विदेशी भाषाओं के साथ साथ भारतीय भाषाओं का भी एक संतुलन हम बरकरार रखें। तीसरा ये है कि जैसे हम, चूंकि भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं का भी प्रयोग सरकारी कार्यालयों में होता है, जैसे आप दिल्ली कैबिनेट सेक्रेटरीट में जाएंगे तो वहाँ कई विदेशी भाषाओं के जानकार जो अनुवादक के रूप में काम करते हैं, वहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट आता है विदेश से तो उसको वो अनुवाद करते हैं और फर्दर उसको प्रशासनिक कार्यों में लाया जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी भाषाओं को जिस तरीके से रोजगार से जोड़ते हैं, विदेशी भाषा का माध्यम यहाँ पर है कि रोजगार से जोड़ना, साथ ही साथ अगर हम उनको अपने देशीकरण से उनको हम एक साथ जागृत करते हैं तो उसका फायदा जो है उस कंपनी को और साथ साथ जो विदेशी भाषा को बोल रहा है या सीख रहा है उसको भी काफी स्तर पर मिलता चला जाता है।
1: बात करें, नई पीढ़ी की बात करें या फिर हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं अगर उनकी भी हम बात करें, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी अभिभावक है वो तब खुश होते हैं जब उनका बच्चा अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषा में लोगों के सामने अपनी बातों को
0: जी
1: रखता है।
0: जी बिल्कुल
1: तो एक ये मानसिकता बन गई है, और जिस कारण जो है अभिभावक भी जो है या फिर छोटे बच्चे भी जो है उनका भी लगाव अंग्रेजी भाषा या अन्य विदेशी भाषाओं की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मान है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि जो हमारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से जो प्रचार महोदय हैं, हमारे अन्य अतिथि, वो अपना मंतव्य दें। उमेश कुमार शुक्ला जी, मैं चाहूँगा सर कि आप अपना मंतव्य दें कि स्कूल स्तर पर जो बच्चे आजकल अंग्रेजी भाषा की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो मातृभाषा के प्रति रुचि कैसे उनमें विकसित की जा सके।
2: धन्यवाद। ये जो भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार और उनके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हमें पहले तो यह ध्यान देना होगा कि समाज में जो एक सोच बनी है कि जो व्यक्ति अंग्रेजी में बोल रहा है वही ज़्यादा विद्वान है, वही ज़्यादा समझदार है, इस सोच को हमें बदलना होगा। और खासकर पूर्व प्राथमिक स्तर पे या प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए NAP 2020 भी कहता है कि उनको शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। मातृभाषा में इसलिए दिया जाए कि जब बच्चा जन्म लेता है और घर में जो भाषा बोली जा रही हो उसी को समझता है, उसी के हिसाब से फिर सोचने लगता है और फिर उसी के हिसाब से बोलता है। जब उसी बोलने वाली भाषा में जब वो विद्यालय में जाए और उसी भाषा में बात हो रहा हो, तो पहले तो उसको शिक्षा के प्रति

0: जुड़ाव बढ़ेगा, वह सीखने में उसकी रुचि बढ़ेगी, उसको कुछ अटपटा सा नहीं लगेगा। जब हम कुछ विद्यालयों में जब अंग्रेजी बोलने की बाध्यता के साथ हम शिक्षण कराते हैं तो बच्चा कुछ शब्दों को रटने की प्रवृत्ति विकसित करता है,
1: जी
0: और जब रटने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो उसी के साथ उसके सोचने समझने की क्षमता समाप्त होने लगती है। वो बच्चा बोलता हुआ दिखाई तो दे

0: जो भी घर में बोला जाता है उस भाषा में शिक्षक बात कर रहा हो तो बच्चा धीरे धीरे सामान्य मानक भाषा से भी जुड़ता है। उसको अचानक हिंदी की भी बात कक्षा में नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो घर में यदि बच्चा भोजपुरी बोल रहा है तो उससे शुरुआत में भोजपुरी में बात करते हुए और धीरे धीरे मानक शब्दों का प्रयोग करते हुए हम मानक भाषा हिंदी के स्तर पर ले आए। मातृभाषा का मतलब यह है कि जो घर में भाषा बोली जा रही है वहां से शुरुआत हो और धीरे धीरे हम एक मानक भाषा की तरफ बढ़ें, और फिर जब हम मिडिल लेवल पे जाएं तो एक द्वितीय भाषा सीखने की बात आती है। तो ये अन्य भाषाएं भी सीखी जानी चाहिए, लेकिन मौलिक चिंतन हो, मौलिक सृजन हो, इसके लिए पहली आवश्यकता है कि बच्चे को मातृभाषा में सीखने का अवसर प्रदान किया जाए जिससे उसके सोचने, समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता में मौलिकता आए और वो रटने की प्रवृत्ति, अनुवाद की प्रवृत्तियों से बचा रहे और केवल एक अनुवादक बन करके जीवन न जिए, केवल रट करके दोहराने वाली बातों के साथ वो पूरा जीवन न जिए, बल्कि मौलिक रूप से चिंतन कर सके, कुछ नया सृजन कर सके और अपनी बातों को सही ढंग से अभिव्यक्त कर सके। तो हम जब हिंदी या मातृभाषा में भी बात करते हुए और मौलिकता को महत्व देते हुए हम व्यक्ति के बौद्धिक और उनके गुणवत्ता को ध्यान देंगे तो जो विदेशी भाषाओं के प्रति एक झूठा सम्मान दिखने वाली बात होती है वो मिट जाएगी।
1: जी, निसंदेही जो सर आपने जो बात कही कि हमें जो है अपनी मातृभाषा की ओर ध्यान देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का जो शिक्षण हो वो शुरुआती दौर से ही जो है उसकी मातृभाषा में हो, और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ही नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा को महत्व दिया गया है। जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी उसमें ये कहा गया है। तो मैं सर यहाँ पे डॉक्टर सत्य प्रकाश पाल जी से चाहूँगा कि वो इसके बारे में बताएं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है सर, इसमें मातृभाषा को महत्व दिया गया है, तो इसका भारतीय भाषाओं के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बता दें सर।
2: सर, NEP 2020 2020 में मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया, विशेषकर कक्षा 5 तक,
1: जी
2: और भारतीय भाषाओं के भविष्य के लिए एक युगांतकारी कदम यह माना जा सकता है कि उठाया गया। इसका भारतीय भाषाओं पर बहुआयामी प्रभाव अवश्य पड़ेगा और पड़ भी रहा है। भारतीय भाषाओं के भविष्य पर जो एक सकारात्मक प्रभाव, उसका संरक्षण, पुनरुद्धार और प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई मातृभाषा में जब होगी, तो जो मातृभाषा लुप्त प्राय, जैसा कि सर कह रहे थे बहुत अच्छी बात, कि उस पर फिर हमारी क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियों को एक नया जीवन मिलेगा, चाहे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, कोई भी हो, जो एक तरह से सर बच्चा उसे कट रहा था, तो एक उस बोली को भी एक संजीवनी मिलेगी।
1: जी
2: और दूसरी बात सर, बच्चा जब, कहा जाता है कि एक बेहतर समझ और एक अधिगम जब बच्चा ग्रहण करता है तो बच्चा अपनी भाषा में अवधारणाओं को जल्दी समझता है, जिसमें रटने की प्रवृत्ति कम होती है, मौलिक एक सोच उसकी विकसित होती है, और जो एक सांस्कृतिक विरासत है वह भी आप देख सकते हैं कि बच्चा अपने भाषा बोली के साथ समाज से भी जुड़ता है। और अंत में मैं कहूँ तो मातृभाषा के साथ साथ एक जो उसका लगाव होता है वह घर में भी पनपता है, जैसे माँ कुछ बात कहती है मातृभाषा में तो उसके दिल से जुड़ता है। आज जो एक संकट आया था कि माँ अगर भोजपुरी में बोल रही है, ब्रज में, अवधी में बोले, तो बच्चा कहीं पढ़ता होगा तो हमको तो समझ में नहीं आ रही माँ तुम क्या बोल रही हो, तो एक जो लगाव था उसका वो भी दूर हो रहा था। लेकिन ऐसे एक लगाव पनपेगा, पुनर्जीवन मिलेगा, संबंधों को मिलेगा, उस बोली भाषा को मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि NEP 2020 2020 जो मातृभाषा को शिक्षा की बुनियाद बनाकर भारतीय भाषाओं को आत्मविश्वास और सांस्कृतिक पहचान वापस दे रही है, यह भाषा की विविधता को एक कमजोरी के बजाय देश की मजबूती के रूप में स्थापित करने की एक पहल है।
1: जी, निसंदेही जो नई शिक्षा नीति है उनका जो प्रायोजन है मातृभाषाओं को लेकर के, ताकि जो है एक मातृभाषाओं के प्रति जो भी जो आने वाली पीढ़ी है उनका जुड़ाव अपने मातृभाषा के साथ रहे। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हमारे विदेशी भाषा विभाग के जो प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार जी, सर आजकल के युवाओं में जो एक बात आ गई है कि वो एक साथ कई भाषाएं सीखते हैं, जिसको हम बहुभाषिकता कह सकते हैं, मल्टी लिंगुअलिज्म एक कल्चर आ गया है सर, तो आज के युवाओं के लिए ये अवसर है या चुनौती है और इसको आप सर कैसे देखते हैं?
3: देखिए, भारत एक बहुभाषिक देश है
1: जी
3: जहाँ पर सिर्फ भारतीय भाषाएं ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं का भी अच्छा खासा चलन है। और मुझे लगता है कि कई साल हो गए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में विदेशी भाषाओं की

0: पढ़ाई की जाती है। अगर पढ़ाई की जाती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका एक रोजगार का अच्छा उत्तम व्यवस्था है भारत में। भारत में चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है भारत में कार्य करती हैं और वहां पर लोकल में उनको एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, तो वो उन भाषाओं के जानकारों को अच्छे खासे, मतलब कहें कि आप एक बेहतरीन सैलरी पर उनको वो रिक्रूट करते हैं, भर्ती करते हैं और उनसे काम लेते हैं। और वो इतना हैंडसम होता है कि वो जो भी ये विदेशी भाषा सीख रहा है, चाहे डिप्लोमा किया है, बीए किया है या मास्टर्स किया है, उनको ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही आकर्षक लगती है और उसको वो बड़े चाव से उसको जो है सीखते हैं। तो चूंकि हमारा देश बहुभाषिक है, हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ सैकड़ों भाषाएं हैं, बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। ऐसे में एक युवा के सामने एक स्थिति हो जाती है कि वो एक से अधिक भाषाओं से जुड़ा रहता है, तो उसके लिए एक आप कह सकते हैं कि एक अवसर भी है, एक चुनौती भी है। अवसर इस क्षेत्र में है कि वो कई भाषाओं को जानता है। अब वो मान लीजिए किसी भी लिटरेचर को, किसी सांस्कृतिक लिखावट को जो है वो अनुवाद करना चाहता है, तो अनुवाद करके सीधे सामने जो भी हमारे पाठक हैं उनको सामने वो प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, ये उनके सामने चुनौती इसलिए बन जाती है क्योंकि एक से अधिक भाषाएं सीखने का एक जो प्रेशर जो दिमाग पे पड़ता है या उनके कैरियर पे पड़ता है, उससे कहीं कहीं छात्र विचलित हो जाते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि चलो रशियन में बड़ा अच्छा स्कोप है तो रशियन ले लेते हैं, कभी उसको लगता है कि नहीं फ्रेंच बेहतर है तो फ्रेंच में भी कुछ वो ले लेता है, कभी उसको लगता है कि नहीं चाइनीज इससे बेहतर है। तो वो मार्केट के हिसाब से वो विषयों का चयन करता है, जिसके कारण से उसके ऊपर में एक वो प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वो थोड़ा वो किसी भी भाषा को पूरी तरीके से ना सीख पाता है, ना लिख पाता है, ना बोल पाता है। तो वहाँ पर एक चुनौती बड़ी होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों को समझने और समझाने के लिए भी विदेशी भाषाओं का जानकार हमारे भारत में आजकल बहुत मांग है, क्योंकि आप देखेंगे कि रशिया में रशियन लिटरेचर की मांग जबरदस्त है। रशियन लिटरेचर पूरे विश्व भर में अपना एक अच्छा खासा छाप छोड़े हुए, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद होकर लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। हमारे हिंदी में भी कई ऐसे उनके लिटरेचर्स हैं जिनका अनुवाद हुआ है और बड़े बड़े अनुवादकों ने अनुवाद किया है, और आज उन पर भी हिंदी में भी, हिंदी कई हिंदी विभागों में भी एक कंपेरेटिव एनालिसिस जो शोध होता है वो भी हो रहा है। तो ये जैसे आपने कहा कि बहुभाषिक किसी भी आदमी को होना, ये एक अवसर भी है, एक चुनौती भी है, दोनों है, एक साथ ही है। अवसर इस क्षेत्र में है कि अगर वह उस पर दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ता है तो उसके पास अवसर ही अवसर है। अगर वो एक साथ कई नावों में पैर रखता है तो आप समझेंगे कि वहाँ बैलेंस कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि विदेशी भाषाएं इतनी आसान नहीं होती हैं जितना हम समझते हैं। हालांकि भारतीय भाषाएं भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जैसा सर ने कहा कि हम उसी परिवेश में रहते हैं, तो बहुत जगह से सुनते सुनते सुनते सुनते चीज़ों को हम कंठस्थ कर लेते हैं। लेकिन विदेशी भाषा, उसके लिए आपको एक प्रॉपर टीचर चाहिए, शिक्षक चाहिए जो आपको ट्रेन करे, सिखाए। अगर वही नहीं कर पाएंगे आप, तो वहाँ पर एक मुश्किल खड़ा होता है।
1: अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है हमारा एक बहुत बड़ा भाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का भी आता है।
0: जी
1: उमेश सर से मैं चाहूँगा कि सर आप जिस विभाग में कार्यरत हैं सर, वहाँ पे आपको ये अवसर मिलता है कि आप विभिन्न परिवेश से आए जो शिक्षक हैं उनको आप सर ट्रेन करते हैं, आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको आप सिखाते हैं। तो सर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जो ग्रामीण और जो शहरी शिक्षा में जो भाषा का स्तर है सर, उसमें आपको सर क्या अंतर देखने को मिलता है?
2: ये जो ग्रामीण परिवेश के विद्यालय हैं उनमें जो छात्र उसका घर का जो वातावरण होता है वहाँ पढ़ने लिखने का माहौल अधिकांश घरों में कम दिखता है। अंग्रेजी विषय की या अन्य भाषाओं के साहित्य तो वहाँ दुर्लभ ही मिलते होंगे।
1: जी
2: सामान्य हिंदी की भी जो साहित्य है वो भी उनके घर में शायद कम पढ़ी जाती है,
1: जी
2: और वो जो बोलते भी हैं वो प्रायः हिंदी नहीं बोल रहे होते हैं। वो इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्रायः भोजपुरी बोली जा रही होती है, यानी क्षेत्रों में अलग अलग तरह की बोलियों का उपयोग किया जाता है। जब वह विद्यालय में आए और उसके साथ आने के साथ ही यदि हम मानक हिंदी का भी उपयोग करते हैं तो बच्चे के लिए वो ग्राह्य नहीं होता है। तो पहली तो आवश्यकता होती है जब विद्यालय के शुरुआती 1-2 साल में उसके साथ उसके घर की भाषा में बात की जाए। जरूर यदि वो क्षेत्र भोजपुरी क्षेत्र का है तो शिक्षक को भी उसके अपने बातचीत में भोजपुरी कुछ शब्दों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। जरूरी हो तो भोजपुरी में उससे शुरुआती दौर में बात करनी चाहिए। बच्चे को भोजपुरी में बोलने पर उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए, उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए।

0: कि मैं सही नहीं बोल पा रहा हूँ,
1: जी
0: उसका आत्मविश्वास उसी स्तर से बढ़ाना चाहिए जैसे कि कोई मानक हिंदी बोल रहा है, वैसे ही वो भोजपुरी में बोलने वाले बच्चे को भी उसी तरह से प्रशंसा मिलनी चाहिए। धीरे धीरे उसको उसकी बोली को मानकीकृत भाषा की तरफ हम ले जाएं, लेकिन बच्चे को यह अनुभव कराए बिना कि पहले वो भाषा कम अच्छी जानता था।
1: जी
0: जो भाषा केवल संवाद का क्षेत्र है कि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सके, यदि भोजपुरी भी बोल करके बच्चा अपनी बात को समझा ले रहा है तो ये अच्छी बात है।
1: जी
0: शिक्षक को शहरी क्षेत्र में, चूंकि बच्चे थोड़ा सा कम्युनिकेशन की सुविधाएं ज़्यादा होती हैं आसपास में, आजकल संचार माध्यम और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अन्य तकनीकी शब्द बढ़ जाते हैं, बच्चा यदि कम आर्थिक परिवेश का भी है तब भी उसके पास पड़ोस में कुछ ऐसे शब्द उपयोग हो रहे होते हैं जिनसे वो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक फैमिलियर होता है, तो उस स्थिति में उसे शहरी क्षेत्र में थोड़ा हम सामान्य रूप से शिक्षण कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम शिक्षण कर रहे हैं तो हमें क्षेत्रीय बोली और जो उसके गांव घर में बोली जाती है उस भाषा के उपयोग शुरुआती दौर में बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे मानकीकृत की तरफ ले जाना चाहिए।
1: जी, यहाँ पे मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल सर से जानना चाहूँगा सर मैं, कि जो भारतीय भाषाएं हैं वो वैश्विक मंच पर वो स्थापित हों, इसके लिए सर क्या प्रयास किए जाने चाहिए, जल्दी जल्दी में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: सर, भारतीय भाषाओं को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए जो आज तकनीक और डिजिटल विस्तार, जिसको हम अनुवाद और एआई बहुत चर्चा में है,
1: जी
2: उसका हम उपयोग करें, और जो डिजिटल सामग्री जो कंटेंट हैं जो इंटरनेट पे और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में है, जो ज्ञान विज्ञान रोजगार संबंधित चीज़ें हैं, वो कैसे आएं, और सोशल मीडिया भारतीय भाषाओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए हम अभियान चलाएं। दूसरा कि शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैसे अनेक हमारे यहाँ भी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं, और जो हमारे यहाँ दिल्ली में एनसीईआरटी है, उससे नियामक कुछ कार्यक्रम चलाए जाएं जो भाषाई विस्तार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी करते हैं। अंत में मैं कहूँ तो जो पॉलिसी इनिशिएटिव है, जो नीतिगत प्रयास है, उसमें भी जो भारतीय भाषा संवर्धन अनुदान जिसको हम GPIL कहते हैं, उसके प्रचार प्रसार को मजबूत करें, तो मैं समझता हूँ कि जो विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय हैं वह भी भाषाओं के वहाँ दूत बन के उस भाषा को पढ़ा सकते हैं।
1: जी, यहाँ पे मैं उपेंद्र सर से चाहूँगा, आप विदेशी भाषाओं के जानकार हैं, तो सर आप ये बताएं कि क्या भारतीय भाषाएं भी विदेशी छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती
3: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा कि वैश्वीकरण का युग है, और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो भारत में आकर पढ़ना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं कि भारत में वो सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परम्परा है, ज्ञान है, भारत के जो वेद हैं, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, योग हैं, इनको वो बहुत करीब से जानने के लिए, भारतीय भाषाओं का ज्ञान अध्ययन करने के लिए वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में आज प्रवेश ले रहे हैं। आप मानिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कई ऐसे विदेशी छात्र हैं जो पाली, संस्कृत, हिंदी और विभिन्न भाषाओं के रूप में उन्होंने अपने प्रवेश लिया हुआ, और दूसरे जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, और भी दूसरे कई विश्वविद्यालय भारत में है जहाँ पर संस्कृत, पाली और भी अन्य भारतीय भाषाओं की पढ़ाई होती है, वहाँ पर विदेशी छात्र आकर के प्रवेश ले रहे हैं और बड़े ध्यान से, बड़े मन से इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उनको हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके बारे में विशेष रुचि है, और वो उसको बड़े ध्यान से पढ़ना और समझना चाहते हैं, और उसको समझने के लिए आप किसी भी अनुवाद को अनुवाद से नहीं समझ सकते, उसको आपको मूल में आना पड़ेगा, और इसी मूल को समझने के लिए वो छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों में ले रहे हैं और भारतीय भाषाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं।
1: जी, यहाँ पे मैं सर उमेश शुक्ला सर से मैं जानना चाहूँगा, सर जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उसके संरक्षण और उसके विकास के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, शॉर्ट में बता दें।
0: शिक्षक का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पहले तो यह है कि वह छात्रों को शिक्षण के दौरान रोचक कहानियों को रोज नया सुनाए, और सुनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि छात्रों से सुने। जब छात्र खुद कहानी सुनाएगा तो वो अपने शब्दों का उपयोग निश्चित रूप से करेगा, और जब अपने शब्दों से का उपयोग करते हुए वो अपने को अभिव्यक्त कर रहा होगा तो उसका उत्साह बढ़ेगा, और फिर जब नई कहानी उसको सुनाई जाएगी तो उसे ध्यान से समझेगा और फिर बार बार सुनाएगा। हर बच्चा जब अलग अलग कहानी सुना रहा होगा तो अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग कर रहा होगा। बच्चों के बीच में शब्द अंताक्षरी कराई जा सकती है, उससे उनका जो जिन शब्दों से वो परिचित होगा उन शब्दों को उपयोग करेगा और नए नए शब्दों से भी परिचय होगा। तो इस तरह से रोचक ढंग से यदि हम भाषा का शिक्षण करें तो निश्चित रूप से भाषा के विकास में शिक्षक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
1: जी, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय भाषाओं का भविष्य

0: केवल चुनौतियों भरा नहीं है, बल्कि उसमें कई संभावनाएं भी हैं। बस आवश्यकता है सही नीतियों की, शिक्षा में संतुलन की, और साथ ही साथ सबसे बढ़कर जो है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो हमारी सोच की, कि अपनी भाषाओं को भी आगे रखना, उनको भी उतना ही मान देना जितनी कि आप अन्य विदेशी भाषाओं के बारे में सोचते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो मैं आप सभी जो अतिथि हैं, आए हुए हैं हमारे इस परिचर्चा में, डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल जी, डॉक्टर उपेंद्र कुमार जी और उमेश कुमार शुक्ला जी, आप सभी हमारे इस परिचर्चा में उपस्थित हुए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: बहुत बहुत
1: आपका।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: सर।
2: अभी आप सुन रहे थे भारतीय भाषाओं का भविष्य इस विषय पर परिचर्चा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आइए सुने डॉक्टर चितरंजन ज्योतिषी का राग जोग में गायन। आपके साथ तबले पर संगति की है तपन बनर्जी ने।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर चितरंजन ज्योतिषी का गायन राग था जोग। आपके साथ तबले पर संगति की थी तपन बनर्जी ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: against host Chennai Super Kings when reports last came in. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडिया वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।